FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 5 सितंबर सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:58 हो रहे हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षकों से अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने और पढ़ाने के नए तरीकों का इस्तेमाल करने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने और उनके चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने शिक्षकों से विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच और जिज्ञासा की भावना विकसित करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने सभी समर्पित शिक्षकों के योगदान के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि वो ऐसी पीढ़ियों का निर्माण करते रहे जो देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें महान शिक्षक बताया। शिक्षक दिवस पर हर वर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति आज नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये शिक्षक 27 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश और 6 केंद्रीय संस्थानों से चुने गए हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और प्राध्यापकों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज

0: ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। कॉलेज की स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। पिछले 100 वर्ष में इस संस्थान ने कई विद्वान, पेशेवर और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को तैयार किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज चेन्नई के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो इंडिया वॉल्स में शामिल होंगे। ये हृदय से जुड़ी बीमारियों के इलाज को बेहतर बनाने पर केंद्रित एक राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन है। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ग्रस्त त्रिशूली बाजार इलाके से 3 और भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। इनमें 5 साल का एक बच्चा भी शामिल है। सुरक्षित निकाले गए भारतीयों की संख्या 169 हो गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 275 भारतीय अब भी लापता हैं। वहीं चीन से 1907 भारतीय सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि भारत ने नेपाल में बाढ़ के बाद अब तक लगभग 95 टन राहत सामग्री भेजी है। भारत आगे भी नेपाल की जरूरत के अनुसार मदद जारी रखेगा।
2: We have extended our solidarity and support to the government and people of Nepal.
3: हमने नेपाल सरकार और वहाँ की जनता के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है। एक करीबी मित्र और साझेदार के रूप में भारत ने तुरंत सहायता पहुँचाई और हम नेपाल के पुनर्निर्माण और राहत के प्रयासों में लगातार सहयोग करते रहेंगे।
2: And recovery efforts in the country.
0: महिला क्रिकेट में T20 एशिया कप के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये मैच दुबई में रात 8 बजे से शुरू होगा। भारत ने थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उधर विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू होगा। इसमें 19 देशों के 105 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय पुरुष डबल्स की जोड़ी आज चाइना मास्टर्स के सेमीफाइनल में मलेशिया की जोड़ी के साथ खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आराध्य को निवेदित भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कोकुल बजो बधाई।

0: वंदना कार्यक्रम में अभी आपने सुना अनूप चलोटा, बलवंत, नितिन मुकेश, किशोरी अमोनकर और साथियों को। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं चिंतन बिंदु कार्यक्रम।
1: कार्यक्रम में प्रस्तुत है भारतीय शिक्षा, संस्कृति और दर्शन के महान व्याख्याता सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के विचार। एशियाई कॉन्फ्रेंस के दिनों की बात है, दिल्ली के पुराने किले में हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रही थी। एशियाई देशों के अनेक गणमान्य प्रतिनिधि और अन्वेषक उपस्थित थे, और भारत का तो शायद ही ऐसा कोई भाग छूटा हो जहां के लोग न आए हों। अध्यक्ष के स्थान पर भारत कोकिला श्रीमती सरोजनी नायडू आसीन थी। अचानक अध्यक्ष खड़ी हुई और बोली, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं विश्व के महान दार्शनिकों में गिने जाने वाले अपने तत्ववेता से अनुरोध करती हूं कि वे यहां आकर मेरा स्थान ग्रहण करें। विश्व के महान दार्शनिकों में गिने जाने वाले भारतीय तत्ववेता। हजारों की निगाहें मंच पर केंद्रित हो गईं और वे थे उत्कृष्ट विद्वान शिक्षा शास्त्री सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। यूरोपियन लोग भारतीय दर्शन की ये कहकर खिल्ली उड़ाया करते थे कि वह तो आत्मा और कर्म के विषय में मूर्खतापूर्ण और भ्रांतिमूलक धारणाओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस पर डॉक्टर राधाकृष्णन ने लिखा है कि आलोचकों की इस चुनौती ने मुझे हिंदू धर्म के अध्ययन और ये खोज निकालने के लिए बाध्य किया कि हिंदू धर्म में क्या तो जीवित बचा है और क्या मृत है। महान ऋषि ने

0: धर्म ग्रंथों, दर्शन शास्त्रों आदि का सूक्ष्म अध्ययन कर उनके जीवन के अभिन्न अंग बनकर गांधी अभिनंदन ग्रंथ में लिखा था, समय महान वीरों को अन्य वस्तुओं की भांति बड़ी सुगमता से भूल जाता है, परंतु संतों की स्मृति आज भी सुरक्षित है। गांधी जी की महत्ता का कारण उनके वीरतापूर्वक संघर्ष इतने नहीं जितना कि उनका पवित्र जीवन है, और ये भी ऐसे समय में जबकि विनाश की शक्तियां प्रबल होती दिख रही हैं, वो आत्मा का सर्जन करने तथा जीवन देने की शक्ति पर जोर देते हैं। केवल शुद्ध हृदय वाला ही ईश्वर से और मनुष्य से प्रेम कर सकता है। सहनशीलता युक्त प्रेम आध्यात्मिकता का एक चमत्कार है। इसमें यद्यपि दूसरों के अन्याय हमें कंधों पर झेलने पड़ते हैं, तथापि उससे एक ऐसे आनंद का अनुभव होता है जो शुद्ध स्वार्थमय सुख की अपेक्षा अधिक वास्तविक और गहरा होता है। ऐसे अवसरों पर ही ज्ञात होता है कि संसार में इस ज्ञान से बढ़कर मधुर अन्य कुछ नहीं कि हम किसी दूसरे को क्षण भर सुख दे सकें। इस भावना से बढ़कर मूल्यवान अन्य कुछ नहीं कि हमने किसी दूसरे के दुख में हाथ बटाया। अहंकार रहित गर्व शून्य भलाई करने के भी गर्व से शून्य पूर्ण दयालुता ही धर्म का सर्वोच्च रूप है। इस संबंध में राधा कृष्णन जी की एक छोटी सी पर शिक्षाप्रद कहानी देना अप्रासंगिक न होगा। एक संत स्वर्ग को गया, वहां वो देखता क्या है कि अन्य संतों को तो हीरे जवाहरात के मुकुट पहनने को मिले हैं, लेकिन उसे सोने का ही मुकुट मिला है। उसने देवदूत से पूछा, मेरे इस मुकुट में हीरे जवाहरात क्यों नहीं है? देवदूत ने उत्तर दिया, क्योंकि तुमने हीरे जवाहरात दिए कहां? ये हीरे जवाहरात वे आंसू हैं जो इन संतों ने मृत्यु लोक में बहाए थे, तुमने तो एक भी आंसू नहीं गिराया। संत बोला, गिराता कैसे, मैं तो भगवान का प्रेम पाकर बहुत ही सुखी था। देवदूत ने कहा, ठीक है, इसी से तो तुम्हें सोने का मुकुट मिला है। हीरे जवाहरात तो उन्हीं के लिए सुरक्षित हैं जिनकी आंखों से आंसू बहते हैं। हृदय की ये स्पंदनशीलता पर दुखकारिता ही है जो मानव को ऊंचा बनाती है।
1: चिंतन बिंदु कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन के विचार। आलेख और वाचन विजया भामरी का था। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।

इधर राम के राज्याभिषेक की धूमधाम है और उधर मंथरा विषाद की मुद्रा में उनके सामने उपस्थित है। ये देखकर रानी कैकेयी को आश्चर्य हो रहा है। वो इस विषाद का कारण जानने को आकुल हो रही हैं। रानी कैकेयी तथा उनके पुत्र भरत के लिए अपने हृदय में जो सद्भाव और कल्याण की भावना है, उसका विश्वास दिलाते हुए मंथरा कहती है, कोई भी राजा बने, उसके लिए क्या अंतर पड़ता है? वो तो दासी से रानी नहीं बन सकती। किंतु हे रानी, मुझसे तुम्हारा अहित नहीं देखा जाता। यदि मेरी इस भावना में तुम्हें खोट दिखाई देती है तो मैं क्षमा मांग लेती हूँ, अब कुछ नहीं कहूंगी। रानी पर मंथरा के वचन का ऐसा सम्मोहन छा जाता है जैसे शिकारी की पत्नी का गान सुनकर हिरनी मोहित हो जाती है। जिस प्रकार सरस्वती की माया से मंथरा की बुद्धि फिर गई थी, कुछ वैसा ही प्रभाव कैके

ही पर हुआ। वो दासी की इस बात पर विश्वास कर लेती हैं कि वे दिन अब लद गए जब वे राम और सीता को अत्यधिक प्रिय थीं। उनकी ये धारणा दृढ़ हो जाती है कि भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल भेजना राजा की एक चाल थी और ये सब राम की माता कौशल्या की सलाह से किया गया है। सोचती है, सौत तो आखिर सौत ही है।

अभी आप सुन रहे थे सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में तैयार श्री रामचरित मानस गान का आज का संगीतबद्ध प्रसंग, जिसे स्वरों में पिरोया था उत्तरा केलकर, मिताली बी सिंह और साथियों ने FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

देर बाद यानी 6:50 पर कार्यक्रम खेती की बातें में जानकारी प्राप्त करेंगे हमारे श्रोता। आज का विषय रहेगा मिट्टी की जांच और वार्ताकार होंगे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। तो जी हमारे श्रोता आनंद लेंगे पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत का। तत्काल 18 मिनट पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी लखनऊ से।

मिनट पर हमारे श्रोता आनंद लेंगे कार्यक्रम ब्रज माधुरी का। ब्रज माधुरी कार्यक्रम में हमारे श्रोता सुनेंगे ब्रजभाषा जल की चशोदा हरी पारने झुलावे। डॉक्टर ब्रजबल्लभ मिश्र लेखक और प्रस्तुति होगी यतीन्द्र चतुर्वेदी की।

30 मिनट पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में कुछ फिल्मी नगमे। 9 बजे आप सुनेंगे विकास पथ, विषय रहेगा ब्रज विरासत, संरक्षण एवं संवर्धन।

अर्थकार होंगे लक्ष्मी नारायण तिवारी और आपसे भेंट करेंगे ओपी सिंह। नमस्कार 25 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आबो हवा। नमस्कार 30 मिनट पर आप सुनेंगे ब्रज दर्पण कार्यक्रम में मंदिर से द्वारकाधीश में नंदोत्सव और इस कार्यक्रम में होंगे विशेषज्ञ राकेश तिवारी। साथ ही आप सुनेंगे इसी कार्यक्रम में शिक्षक दिवस के संदर्भ में जानकारी और विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर अखिलेश यादव। साथ ही कार्यक्रम में आप सुनेंगे और भी कुछ खास चर्चा। आप सुनेंगे रूपा कृष्ण लीलाओं पर आधारित विशेष कार्यक्रम। लेखक और प्रस्तुति होगी डॉक्टर सत्यदेव आजाद और हरिबाबू कौशिक की। इस मिनट पर आप सुन सकेंगे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा शिक्षक पुरस्कार समारोह का नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन से सीधा प्रसारण, जो कि आप सुनेंगे कार्यक्रम समाप्ति तक। सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम। कृष्णा पर आप सुन सकेंगे प्रतियोगिता कार्यक्रम में आज कलाकार होंगे शालिनी शर्मा।

0: सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बातें में ये जानकारी।
1: इस समय आप सभी किसान भाई रबी की खेती की बुवाई के लिए खेत की तैयारी के कार्यों में लगे हुए हैं और आवश्यकता इस बात की है कि मिट्टी की पहले जांच करा ली जाए और उसके बाद फसल की आवश्यकता के अनुसार, खेत की आवश्यकता के अनुसार उसमें खाद और उर्वरक का इस्तेमाल किया जाए। अपने फार्म के प्रत्येक खेत की मिट्टी की अलग अलग और कम से कम 3 वर्ष में एक जाँच अवश्य कराए। जाँच के लिए मिट्टी का नमूना बुवाई से कम 1 महीना पहले निकटतम मिट्टी जांच प्रयोगशाला को भिजवा दें ताकि परीक्षण की रिपोर्ट आप तक बुवाई से पहले पहुंच जाए और आप सिफारिश के अनुसार खादों आदि का इस्तेमाल उस खेत में कर सकें। जहां तक हो सके मिट्टी का नमूना खाली खेत से फसल की कटाई के बाद ही लेना चाहिए, अन्यथा खड़ी फसल वाले खेत से नमूना लेना हो तो कतारों के बीच से नमूना लिया जाए। आप अपने किसी खेत की मिट्टी का प्रतिनिधि नमूना प्राप्त करने के लिए अपने फार्म को खेत की मिट्टी की बनावट, रंग और उत्पादकता के आधार पर बांट लें। जिस खेत या फार्म के एक समान भाग का नमूना लेना हो तो उसके 8 से 10 स्थानों पर निशान लगा लें। नमूना लेने के लिए निशानदेह प्रत्येक स्थान की ऊपरी सतह से घास फूस, कंकड़, पत्थर, कूड़ा आदि को साफ कर लें। निर्धारित स्थान पर खुरपी से अंग्रेजी के वी के आकार का 15 सेंटीमीटर यानी के 6 इंच गहरा गड्ढा खोदें। गड्ढे से फालतू मिट्टी निकाल करके खुरपी की सहायता से उसकी एक दीवार से लगभग 1 उंगली मोटी यानी के 2 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की परत निकाल लें। इस मिट्टी को एक साफ सूखे हुए तसले या ट्रे में किसी साफ कपड़े या बोरी पर रख दें। इस प्रकार अन्य निर्धारित स्थानों के गड्ढों से भी मिट्टी लेकर के सभी 8 से 10 स्थानों से ली गई मिट्टी को एक ऐसी जगह इकट्ठा करके आपस में अच्छी तरह से मिला लें। इसमें

0: से घास, पौधों की जड़ें, कंकड़ पत्थर आदि निकाल दें। साफ मिट्टी को तसले या कपड़े आदि पर मोटी तह में फैला दें। इस मिट्टी को चार बराबर भागों में आप बांट लें और इनमें से आमने सामने के दो भागों की मिट्टी रख कर के शेष दो भागों को फेंक दें। रखे हुए दो भागों की मिट्टी को अच्छी तरह मिला लें और पहले की तरह ही उसको चार हिस्सों में फिर फैला लें। पहले की तरह ही दो भाग की मिट्टी आप इसमें से भी फेंक दें और दो भाग की को रख लें। यह क्रिया तब तक आप जारी रखें जब तक कि मिट्टी का कुल नमूना लगभग 500 ग्राम तक न रह जाए। वास्तव में इस तरह इकट्ठा किया गया मिट्टी का नमूना ही प्रतिनिधि नमूना कहलाता है। खेत की मेड़ या सिंचाई की नाली के नजदीक से नमूना न लें। खेत में उगे किसी पेड़ के जड़ वाले क्षेत्र से नमूना न लें। उस स्थान से नमूना न लें जहां पर खाद, चूना या कोई अन्य भूमि सुधारक रसायन तत्काल इस्तेमाल किया गया हो। ऊसर आदि की समस्या से ग्रस्त खेत या उसके किसी भाग का नमूना अलग से न लें और उसे अलग से प्रयोगशाला को भेजें। जहां तक संभव हो सके गीली मिट्टी का नमूना न लें, अन्यथा उसे छाया में सुखा करके ही प्रयोगशाला में भेजें। नमूनों को खाद के बोरों, ट्रैक्टर की बैटरी या अन्य किसी रसायन आदि से दूर रखें। मिट्टी के नमूने पर ये सूचनाएं अवश्य लिखें कि किसान का नाम, खेत का खसरा नंबर या उसकी कोई पहचान, सिंचित या बरानी क्षेत्र है, पिछली फसल उसमें क्या ली गई है और कौन सी फसल आप बोना चाहते हैं। तो इस तरह आप अपना पूरा विवरण लिख करके प्रयोगशाला में अपनी मिट्टी को भेज करके और उसके परीक्षण कराएं और उसके आधार पर उस खेत में बुवाई करें।
1: कार्यक्रम खेती की बातें में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। विषय था मिट्टी की जांच और वार्ताकार थे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अभी आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत समाचार कुछ ही पलों में।

सकते हैं पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत का ये पहला नगमा, जिसे हमने लिया है फिल्म गंगा जमुना से। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और साथियों की।

और आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मन्ना डे और साथियों को। फिल्म का नाम है पहाड़ों के सपने।

गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

0: हौसले के गाए फिल्म मेरा साया के इस गीत के साथ ही पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम फूले बिस्तरे गीत अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी लखनऊ से रिले करेंगे।
1: रविंद्रनाथ ठाकुर। अपनी जान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान वह भी कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम। जैसे सूर्य सबको एक साथ प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या दृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी। आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़ वादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी। मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और न ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का हुआ सफल प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है ये सफलता। प्रदेश भर में आज मनाया जा रहा है शिक्षक दिवस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न जिलों से चयनित 81 शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार से करेंगे सम्मानित। आस्था और उल्लास के साथ राज्य भर में मनाया गया भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। और भारी बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश के 26 जिले बाढ़ से प्रभावित। राहत और बचाव कार्य जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कल श्रीहरिकोटा से जीएसएलवी F-17 रॉकेट के माध्यम से देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर कहा कि यह राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है और यह सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफलता पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि EOS-05 भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती आधुनिकता को भी दर्शाता है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
3: आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट जीएसएलवी मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि जीएसएलवी F-17 वाहन में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
2: प्रदेश भर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। हर साल 5 सितंबर को देश के दूसरे राष्ट्रपति और महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन

0: कृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के गुरु गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में प्रदेश के विभिन्न जिलों से चयनित 81 शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार और मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। राज्य स्तरीय इन पुरस्कारों के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के 61 और माध्यमिक शिक्षा विभाग के 20 शिक्षकों का चयन किया गया है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव कल प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में भव्य उत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें लाखों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु शामिल हुए। मध्यरात्रि में भगवान कृष्ण का अभिषेक हुआ। जन्माष्टमी पर पहली बार 500 ड्रोन के जरिए आसमान में भगवान श्री कृष्ण के जन्म और उनकी विभिन्न लीलाओं को जीवंत किया गया। वहीं काशी विश्वनाथ धाम सहित विभिन्न शहरों के कई मंदिरों में धूमधाम से जन्माष्टमी का आयोजन किया गया। जन्माष्टमी के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन और पूजन किया। इस मौके पर श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि हजारों साल पहले भगवान श्री कृष्ण का जन्म इस पावन धरती पर हुआ था। उनकी शिक्षाएं और संदेश आज भी मानवता के लिए प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है। श्री योगी ने धार्मिक महत्व की जगहों को पुनर्स्थापित और विकसित करने के सरकार के प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा कि ब्रजतीर्थ विकास परिषद ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करने के क्रम में मथुरा और वृंदावन के विकास पर लगातार काम कर रही है।
1: ब्रजतीर्थ विकास परिषद इस ब्रजभूमि के आध्यात्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए, यहाँ के सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इसे भव्य स्वरूप यहाँ के मन के जनप्रतिनिधि मिलकर के देने का कार्य कर रही है। और हमारा प्रयास है कि मथुरा वृंदावन में भी वही भव्य परिषद तैयार हो, जैसे अयोध्या में और जैसे काशी में हुआ। ये पर्व और त्योहार केवल एक आस्था ही नहीं,
2: मुख्यमंत्री शाम को लखनऊ के रिजर्व पुलिस लाइंस में पुलिस की ओर से आयोजित सांस्कृतिक गुहार के उत्सव में भी शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के संदेश का जिक्र करते हुए सभी से कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने और विकसित भारत बनाने की दिशा में योगदान करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जीवन अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करते हुए धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना और कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन की प्रेरणा देता है। देर रात मुख्यमंत्री गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में आयोजित श्री कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम में भी शामिल हुए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज पर भी उपलब्ध है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नए मुख्य कार्यपालक अधिकारी सेवानिवृत्त मिश्रा ने कल ट्रस्ट के पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि मंदिर का निरीक्षण और व्यवस्थाओं को समझने के बाद जल्दी ही रणनीति तैयार की जाएगी और उसके क्रियान्वयन का असर जल्दी दिखाई देने लगेगा। सिद्धार्थनगर जिले की डुमरियागंज तहसील में कल स्थानीय जगदम्बिका पाल ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के सात परिवारों को सहायता राशि का चेक दिया। इस अवसर पर श्री पाल ने केंद्र राज्य की सरकार किसानों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और उनके हित के लिए कई योजनाएं चला रही है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल में आई बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं बताया कि 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल में पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है।
3: We have extended our solidarity and support to the government and people of Nepal. हमने नेपाल सरकार और वहां की जनता के प्रति अपनी एकता और समर्थन व्यक्त किया है। एक करीबी मित्र और साझेदार के रूप में भारत ने तुरंत सहायता पहुंचाई और हम नेपाल के पुनर्निर्माण और राहत के प्रयासों में लगातार सहयोग करते रहेंगे।
2: श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय बचाए गए भारतीयों के नाम नियमित रूप से जारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि 1907 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और चीन से नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि चीन के तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र में कोई भी भारतीय नागरिक नहीं फंसा है। श्री जायसवाल ने कहा कि

0: हिमालयों में भारत नेपाल सरकार के अनुरोध पर और अधिक फोरेंसिक बेली ब्रिज और अन्य सामग्री भेजने की योजना बना रहा है। भारी बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश के 26 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: राज्य में अयोध्या, वाराणसी, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, चित्रकूट और बाराबंकी सहित 26 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बाढ़ ग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। बाढ़ राहत आयुक्त के मुताबिक लगभग 3.5 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित होने के बावजूद राहत और बचाव तंत्र की सक्रियता से लगभग 72,000 बाढ़ राहत किट और 3.5 लाख से अधिक प्रभावितों को लंच पैकेट वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 17,000 से ज्यादा लोगों को बाढ़ शरणालयों सहित सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। राहत से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने कल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रदेश में होमगार्ड के 41,420 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया के तहत आयोजित होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा अब 14 सितंबर से आयोजित की जाएगी। पहले ये परीक्षा 5 सितंबर से प्रस्तावित थी। प्रदेश में हो रही बारिश के कारण अभ्यर्थियों की सुविधा और सुरक्षा के मद्देनजर ये बदलाव किया गया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का हुआ सफल प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है ये सफलता। प्रदेश भर में आज मनाया जा रहा है शिक्षक दिवस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न जिलों से चयनित 81 शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार से करेंगे सम्मानित। आस्था और उल्लास के साथ राज्य भर में मनाया गया भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। और भारी बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश के 26 जिले बाढ़ से प्रभावित, राहत और बचाव कार्य जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से कुछ देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: यही अद्वितीय तुम। जिंदगी में एक लक्ष्य, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। संतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वभाव। स्वामी विवेकानंद। एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्श होना और उन पर चलना, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

माधुरी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोतान को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ब्रज में तो आनंद छा रहो है, आज नंदजू के द्वारे भीर कावत मंगल गीत सवे मिल प्रगटे हैं हमारे कृष्ण वीर। ब्रज में आनंद है रहो है, आज आपको सुनमा में ब्रजभाषा झलकी यशोदा हरि पालने झुलावे। लेखक डॉक्टर ब्रजवल्लभ मिश्र और प्रस्तुति है यतीन्द्र चतुर्वेदी की। तो भैया लियो आनंद या झलकी को।

0: नंद बाबा, ओ नंद बाबा।
1: आयो रे,
2: कहा बात है?
1: अरे अरे अरे, कहा भे हो? अरे चो हंस रहे हो? कछु बोले गऊ?
2: क्यों हंस रहे हो?
1: हाँ हाँ बताए, चो हंस रहे हो? कछु बताओ तो सही।
2: बाबा क्यों हंस रहे हो? कछु बात है ये।
1: बात है ये? अरे पर बात कहा है बू तो बताए कछु।
2: अरे तुम देखोगे तो तुम ही हंसोगे बाबा।
1: कहा देखोगे?
2: तुम्हें देख के हंस रहे, तुम्हें देख के।
1: मुई देख के? मुई देख के हंस रहे हो?
2: हाँ हाँ हाँ तुम्हें देख के, तुम्हें देख के।
1: मुई लगे तू बोरा गयो है। हम बे तो कहिए बाबरो है गए, बाबरो।
2: बाबा मैं ना बोरा गयो, बाबरी है गयो तुम।
1: चल चल लठ कहूं को, मुझे बाबरो बताए रहे हो?
2: तुम्हारी सगन बाबा झूठ नहीं को ना बोल रहो। वो आ रहो देखो, वो कुंजी आ रहा है ना, बात पूछ लो। ओ कुंजी भैया ये नेक सुनियो।
1: हाँ आ रही कुंजी।
3: राम राम बाबा, राम राम
1: राम राम।
3: अरे
1: अरे अरे अरे, कहा देख रहे हो मेरे मोहड़े माऊ? बताए तो सही। अरे अरे अरे, तू तो हंस तो ही चलो जा रहे हो। कहा बात है?
3: सुरामा दादा तू बताए दे बात।
2: बताऊं कुछ भैया? अरे ना भैया, बाबा रिस रह जाएगा, तू ही बता दे।
1: अरे बतावे क्यों ना है?
2: बता,
1: कहा बात है? क्यों रे?
3: मैं ना, तू बता दे।
2: ना ना ना भैया, मेरी बस की ना।
1: अरे क्यों हंस रहे हो? मुझे देख देख के बताओ क्यों ना है, बता रे।
3: मैं
1: ओफो, मैं कर तो रहेगो, कछु बोलेगा मोहड़े थे, कछु बोल बकार तो सही। कुंजी कहा बात है?
3: बताऊं बाबा, बात ये है कि मुकते मनख बसनते नारी।
2: ओ दादा ते बन गए महतारी।
0: अरे मुकते मनख बसनते नारी, दादा ते बन गए महतारी, दादा ते बन गए।

कुंजी ले वो तेरी मेहतारी चली आ रही है, बस गाती मटकती आ रही है, सिगरे दिना आंगन में नाचती गाती डोलेगी, ले सुनने बाकी बात।

0: भादों के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की आधी रात भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में देवकी की कोख से जन्म लिया। देवकी कंस के चाचा देवक की पुत्री हती और वसुदेव कंस के पिता उग्रसेन के मंत्री। दोनों उनके ब्याह के बाद कंस स्वयं सारथी बन के जैसे ही अपनी बहन बहनोई की रथ लेके चलो कि आकाशवाणी भई। कंस जा आकाशवाणी सुन के चकित रह गयो। देवकी को आठवां पुत्र कंस को वध करेगो। कंस ने देवकी और वसुदेव कारागृह में डाल दियो। वो एक एक करके देवकी के पुत्र ने मारतो रहो। आठवें पुत्र के रूप में भगवान विष्णु ने स्वयं श्री कृष्ण के रूप में अवतार लियो। भगवान ने ऐसी माया रची कि जन्म होती कारागृह के द्वार स्वयं खुल गए।
1: वसुदेव गोकुल में यशोदा के महल में पहुंचे। यशोदा ने कन्या को जन्म दियो। वसुदेव ने देखो यशोदा अचेत पड़ी। वाने चुपके से कन्या को उठा लियो और अपने पुत्र को वहां सुला दियो और मथुरा लौट आए। जे भगवान की अनोखी लीला। श्री कृष्ण ने जन्म लियो देवकी के गर्भते और गोद में खेले यशोदा की। जन्म लियो मथुरा में राजा कंस के बंदी गृह में और जन्म के उत्सव मनाए गए गोकुल के गांव में।

0: राम राम बुआ।
1: राम राम बेटी, राम राम।
0: बुआ कहाँ थी आ रही है?
1: मैं मथुरा गई लाली, हवाल तेरे सामने ही तो नाव में तो उतरी।
0: सो तो मैंने देखी, पर तुम गई कहाँ ही?
1: मैं बेटी जमाइन ते मिलवे गई मथुरा।
0: सुना है कि जसोदा रानी के लाला भयो।
1: हाँ लाली, जसोदा रानी के लाला भय और बहुत माल दे रहे सब। मैं तो इतना माल लेके निहाल ले गई, बड़े बड़े देखे पर भगवान झूठ ने बोला जसोदा रानी ने तुमको इतना दो के जन्म जन्म के दरिद्र ही दूर है गए।
0: अच्छो, नंद बाबा और जसोदा रानी इतने प्रसन्न है कि मैं नित्य जसोदा रानी के तेल मलबे जाऊं। बुआ 23 हो, नित एक मोहर दे दे जसोदा रानी मोए।
1: हैं का कही के हर पोत तेल लगाए को एक मोहर देते?
0: हाँ बुआ।
1: हरी लाली, तब तो भगवान झूठ ने बोला तेरे भाग खुल गए।
0: अरे बुआ, वो तो दे सो दे, घर में घुसते ही एक मोर नित नंद बाबा उ दे जो शोदा की नेक चोखी तरिया मालिश करियो, कहूं बच्चा में कच्चाई ना रह जाए, हमारो लाला दुख पावे।
1: धन्य वीर, नित दो दो मोहर। भगवान झूठ न बुलवा नंद भवन में लाला का भयो, हमारे तो बहना भाग खुल गए। नंद बाबा ने जब मोर नेक दीनो तो पेटी खोल के सामने

0: दे कि तो पर जितने गहने उठाए जा सके उठा ले। 2300 बुआ अपने हाथन ते? हाँ लाली अपने हाथन ते। मैं तो लाली शर्म के मारे हाथ ना लगाऊं और वो कहे उठा उठा। और भगवान झूठ न बुलवाए लाली, मुँह पे तो शर्म के मारे उठाए ही न गए।
1: अच्छो
0: पर का करूं, नंद बाबा ने मेरी शर्म देख के मुझे खुद ही बोले कि ला पल्लव पसार। मैंने पल्लव पसारो तो नंद बाबा ने पशु भर भर के मेरी झोली में ऊपर तक गहने भर दे। भगवान झूठ न बुलवाए लाली, मैंने तो इतना देखो कि मेरी तो छाती फट भी लगी।
1: अच्छो
0: कैसे कैसे जड़ाऊ गहना मैंने तो कभी सपने में ना देखे।
1: बुआ भले ये तो बता, तैने इतने गहने को का कियो?
0: लाली चार चार छोरी चार ब्याई है मथुरा में, सो बहना आधो माल तो बांटियाई बिनकू। और भगवान झूठ न बुलवावे, कछु छोरान की बहनन को दे दीनो और कछु अपने अड़े भेड़े बखत के काज रख लीनो, गाड़ के रखो। छोरी ने तो मैं क्या आई कि इतने माल दे चली हूँ कि अब भात छोछक सब जई में समझ लियो।
1: तो मथुरा ते बेटी जमाइन को माल बांटवे की आई रही है?
0: और का, पर तू तो जे बता के जे हार हमेल झमकाए के जा कहाँ रही है?
1: जसदा की पौर बिनको उबटनो कर ले।
0: ले ले वो एक और टोल आ रहा है, ऐसा लग रहा बधाई गाय रही है। आगे आगे देखियो वो मालिन कैसे मटक रही है, नेक देख तो।

श्री कृष्ण के गोकुल में जन्म लेवे के बाद सिगरी वातावरण में जैसे आनंद को महासागर लहराएबे लगे हो। जिद देखो आनंद ही आनंद, मनुष्य तो मनुष्य, प्रकृति जा खुशी में शामिल है गई, पक्षियों के झुंड की झुंड, पेड़न के

पंचम स्वर में कूदते रहते। बागन में जहां भी देखो मोर पंख फैलाए के नाचते रहते। खिरक में गाय और बछड़े थिरकते रहते। लगे गोकुल में कन्हैया जी ने जन्म नाए लियो, अपितु कोई अवतार भयो।

0: ये दिन तो बड़े भागन से आयो है नंद राय जी, और साची बात ये है कि मैं हूं तो गोकुल बड़ी कठिनता से आयो हूं नंद राय जी।
1: सो तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो महाराज।
0: कछु
1: अब तो आपको शरीर बहुत थक गए हो।
0: पूछो ना नंद राय जी, 107 साल मेरी उम्र है गई है,
1: हाँ, सो तो
0: अब
1: है।
0: तो सिगरी जजमानी को छोरा छाप रही ही देखे हैं नंद राय जी। पर जब मैंने सुनी कि नंद राय जी के लाला भयो है ना, तो मेरो मन ना मानो और मैं खुद ही बिरदावली बाँचवे आपके यहाँ पहुंच गया हूँ।
1: बड़े कृपा कीनी जगह महाराज आपने।
0: तुम्हारे पिता चित्रसेन जी की आत्मा आज स्वर्ग में बहुत प्रसन्न होएगी नंद राय जी, उनके कुल में नाती को जन्म भयो है ना। तुम्हारे पूर्वज भाबू गोप ने ब्रज में आए के अपनो घर बसायो नंद राय जी।
1: अच्छा,
0: हाँ, तब से तुम्हारे वंश या क्षेत्र में विकसित होते जा रहे हैं।
1: अच्छो,
0: भाबू गोप के पुत्र भय चंद्र सुरभि,
1: हाँ,
0: नंद राय जी जानो आप, और चंद्र सुरभ के सुषबस नाम के पुत्र भय, ता पीछे उनके पुत्र भय काल मेदु, और काल मेदु के पुत्र भय चित्रसेन, और चित्रसेन जी के पुत्र भय नंद राय जी। आपके कुल में या लाला को नाम हो जुड़ जाएगो।
1: सो तो है।
0: आज ही अपने कुल पुरोहित गर्ग जी को बुलाए के और लाला के नामकरण को मुहूर्त निकलवाओ नंद राय जी, और
1: भैया
0: धूमधाम मचवाओ।
1: ठीक कह रहे हो। कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी को संदेशों भिजवाए दियो है महाराज। वो बस यज्ञ पूरा करके यहीं आवेंगे।
0: नंद राय जी, हम तो कल ब्रह्म मुहूर्त पे ही प्रस्थान कर जाएंगे।
1: अच्छा, तो फिर मैं आज ही मुखिया जी ते से व्यवस्था कराए दूंगो। आपके आगमन ते मैं 5 नाए 500 गौवन को संकल्प आपके निमित्त करना चाहूं। सो आप कब कराओगे?
0: वो जब चाहो तब कर दीजो, मोए तो लाला के दर्शन कराए दियो। गाम और गऊ जो मेरे छोरा छापरे आमे ना,
1: हाँ,
0: उन्ने देते रह जो नंद राय जी, मोकू तो लाला के दर्शन कराओ महाराज। नंद राय
1: आओ
0: जी
1: आओ,
0: जरूर कराओ
1: मेरे
0: मोकू।
1: संग आओ, मैं आपको लाला के
0: चलो
1: दर्शन
0: नंद राय
1: कराऊं।
0: जी।
1: चलो मेलन में पधारो।

गोकुल में कोऊ नाए जाने हो कि देवकी के गर्भ ते जन्म लेके ऊ भगवान ने जसोदा के आंचल को दूध चौंपियो। भगवान यशोदा और नंद को पूर्व जन्म में वरदान दे चुके हैं कि वो अगले जन्म में माँ जशोदा के पुत्र बन के बिनकी गोद में खेलेंगे। जसोदा बिनकू स्नेह ते दुग्ध पान करावेई और पालने में डाल के सारे दिना झुलायो करेई। वो स्वयं उनाए जानते ही कि वो कन्हैया को नाए स्वयं भगवान हरि को पालनो झुलाए रही है और नंद की पौर पे हर समय बधाई पाजे करे।

0: तो समझ में आई बाबा?
1: कहा
0: जेई के मुखते मनक बसनते नारी दादा ते बन गए मैं तारी।
1: बाबा बात ये है,
2: तुम्हारा रूप स्वरूप देखे बाबा।
1: अरे अरे अरे अरे
2: बाबा, तुम्हारा रूप स्वरूप देख के बाबा छन तो आप ही बन गो। नेक अपनो रूप तो देखो, मुख पे दाढ़ी और मोच और पैर राके लहंगा ओढ़नी।
1: कहा जे को लहंगा ओढ़नी? अरे अरे अरे हद हैगी भाई, हद हैगी भैया। मैं लहंगा ओढ़नी बिना उतारी कुछ समझ में ना रही, मेहलन ते भारा है क्यों?
2: तुम्हारे लहंगा ओढ़नी को देख के ही तो मुझे हंसी आ रही है। तभी छंद बन गए बाबा। मैं लाला भयो इगरे गोकुल में खुशी फैल गई, आनंद आ गयो। कहा मर्द कहा भैया, अब तोली गली गली में नाचते गाते भर रहे हैं। पर जे जे तुम क्या रहे
3: हैं? तुम्हारी तरिया लहंगा ओढ़ी काउने ना पहरी बाबा।
1: अरे उतार तो रहे हूँ दारी की, हसे ही जा रहे हो, हसे ही जा रहे हो।

0: चल लेके नए सुन जी, मैंने लहंगा फरिया चौं पहरी, तुम जानो
1: चौपहरी बाबा, चौपहरी क्यों पहरे?
0: मेरी लाला ने पहराई दिए।
1: लाला ने पहराई दिए? क्यों हमें पट्टी पढ़ा रहे हो बाबा जी? बिचारो पालने में परो परो झूठ रो है, कहा लहंगा फरिया पहरा देगो तुमको?
0: अरे ये बात ना है।
1: तो कहा बात है?
0: बात जाहिर तो कहू से नाय करोगे?
2: नाय कहेंगे, नाय करेंगे।
0: बाहर का ही तो मत कहियो। सुनो, हम जो है ना लाला को एक पलू पालने में अकेलो ना छोड़े। अच्छा? जसोदा हर घड़ी लाला को पालने में झलाती रहे, और जब वो नहावे धोवे जाए ना तो मुए अपनी थोर पे बैठाए जाए।
2: अच्छा।
0: हाँ, मैं कल जब बैठवे लगे ना तो जसोदा बोली त्यारी लंबी लंबी दाढ़ी और मोछन को देख के लाला डरप जाएगो। ऐसा करो तुम मेरे लत्ताने लहंगा और फरियाए पहन लियो, घूंघट मार लियो, वो समझेगो मैया जसोदा पालनो झुलाए रही है, सही देसी ना मैंने जी लत्ता पहली।
1: तो बाबा बात ये है के लाला को तुम पालने में झुला रहे, जसोदा रानी बन गई तुम।
0: बिल्कुल,
1: लाला तुम्हें यशोदा समझे।
0: बिल्कुल भैया, जसोदा हर पालने झुलावे।
2: ये तो चौकी बात बनी के जसोदा हर पालने झुलावे। पर बाबा तुम घूंघट मार के लगते कैसे हो गए हैं? अरे
3: बल्लभ मिश्र की लिखी ब्रजभाषा झलकी जसोदा हरि पालने झुलावे प्रस्तुत करता है यतीन्द्र चतुर्वेदी। कोकुल बाजत आज बधाई, नंद महर घर नौबत बाजत, जसोदा नव निध पाई। यह सुख देख मगन भय सुर नर, तुंदवी देव बजाई, श्री विट्ठल गिरधर को प्रागट्य आज गोवर्धन की निध पाई। याही के संग आज को ब्रजमाधुरी कार्यक्रम अब संपन्न हुए है। सबन को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सुन रहे थे कार्यक्रम
4: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया। 48 शिक्षकों को आज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। सरकार ने ISO टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल की अनुमति तथा कड़े सुरक्षा नियमों का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा भारत संघर्ष समाप्त करने में यूक्रेन और रूस के साथ निरंतर संपर्क में है। संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका का सटीक आकार दर्शाने वाले नए विश्व मानचित्र को अपनाने के पक्ष में मतदान किया। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण अहमदाबाद में आज से शुरू, और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिभा निखारने और चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज 48 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
5: हर वर्ष 5 सितंबर को पूरे भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश के पूर्व राष्ट्रपति, प्रसिद्ध शिक्षाविद, लेखक और दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष में मनाया जाता है। यह अवसर राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों और शिक्षाविदों की महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करता है। शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन को बदलते हैं, पीढ़ियों को दिशा देते हैं और समाज की नींव को मजबूत करते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह नई दिल्ली में में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। चयनित 48 शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संगठनों से हैं। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी।

0: पुष्पा मिश्र, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल शाम राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं से बातचीत की। श्री जोशी ने कहा कि शिक्षकों को बच्चों को 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और उन्हें हर क्षेत्र में सक्षम बनाने की दिशा में काम किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। पिछले 100 वर्ष में इस संस्थान ने कई विद्वान, पेशेवर और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को तैयार किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज चेन्नई इंडिया वॉल्व सम्मेलन में शामिल होंगे। यह हृदय से जुड़ी बीमारियों का उपचार बेहतर बनाने पर केंद्रित एक राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन है। उपराष्ट्रपति गिंडी में इंडिया वॉल्व पंजिका का विमोचन भी करेंगे। सरकार ने आईएसओ टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल तक की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पेट्रोलियम संशोधन नियम 2026 का मसौदा जारी किया है। इसमें आवेदन प्राप्त होने पर 7 कार्य दिवस में मंजूरी देने का प्रस्ताव है। इसके अनुसार पेट्रोलियम से भरे या पेट्रोलियम के लिए इस्तेमाल होने वाले आईएसओ टैंक कंटेनरों को बिना अनुमति आयात नहीं किया जा सकेगा। आवेदन पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करना होगा और इसके साथ जरूरी तकनीकी और सुरक्षा दस्तावेज जमा कराने होंगे। मंत्रालय ने मसौदे पर 30 दिन के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद नियमों में बदलाव किया जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल शुरू हो गया। सम्मेलन के लिए व्यापक स्तर पर सुरक्षा और तैयारियां की जा रही हैं। आज मोटर कारकेड का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास सवेरे 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक सड़कों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। यातायात पुलिस ने रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत संघर्ष समाप्त करने के लिए रूस और यूक्रेन के लगातार संपर्क में है। वॉर्सो में पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिरोस्की के साथ बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि युद्ध का कोई विजेता नहीं होता।
5: इंडिया बिलीव्स दैट एंडलेस वॉर,
6: भारत का मानना है कि अंतहीन युद्ध समाप्त होना चाहिए और युद्ध का कोई विजेता नहीं होता। हर अतिरिक्त दिन का अर्थ है अधिक मौतें, अधिक तबाही, दोनों देशों के लिए अधिक नुकसान और बाकी दुनिया के लिए अधिक लागत। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस चिंता को सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया था, इसलिए हमारे प्रयास बातचीत और कूटनीति को बढ़ावा देने पर केंद्रित होने चाहिए।
1: विदेश मंत्री ने कहा कि भारत संघर्ष समाप्त करने में हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड

0: डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर रूस और यूक्रेन का दौरा करेंगे। दोनों का उद्देश्य रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए शांति समझौते की कोशिश करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अफ्रीका का वास्तविक आकार बेहतर ढंग से दिखाने वाले नए विश्व मानचित्र के पक्ष में मतदान किया है। 164 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि अमरीका ने इसके विरुद्ध मतदान किया। 6 देश मतदान से अलग रहे। मर्केटर मानचित्र में अफ्रीका का आकार वास्तविकता से बहुत छोटा दिखाई देता है, जबकि अफ्रीका ग्रीनलैंड से लगभग 14 गुना बड़ा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन तक पूर्वोत्तर राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की आशंका है। लखनऊ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भी कई जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं।
2: राज्य में अयोध्या, वाराणसी, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, चित्रकूट और बाराबंकी सहित 26 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। बाढ़ राहत आयुक्त के मुताबिक लगभग 3.5 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित होने के बावजूद राहत और बचाव तंत्र की सक्रियता से लगभग 72,000 बाढ़ राहत किट और 3.5 लाख से अधिक प्रभावितों को लंच पैकेट वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 17,000 से ज्यादा लोगों को शरणालयों सहित सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है।
3: आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 8,50,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। पशुपालन विभाग के अनुसार करीब 70,000 पशु भी प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की सुविधा के लिए 700 नावों का परिचालन किया जा रहा है। वहीं बाढ़ राहत शिविर और सामुदायिक रसोई घर भी संचालित किए जा रहे हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में गंगा और सोन नदियों के जलस्तर में कुछ कमी आने की संभावना है। हालांकि पटना में पुनपुन नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण गया पटना रेलखंड पर रेल परिचालन प्रभावित हुआ है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व कल पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ा दही हांडी उत्सव आज महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
4: मुंबई और आसपास के जिलों में दही हांडी भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ा एक पारंपरिक उत्सव है। इसमें गोविंदा मानव पिरामिड बनाकर मिट्टी के हांडी फोड़ते हैं। इस उत्सव के दौरान कुछ गोविंदा कभी कभी चोटिल हो जाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए BMC ने अस्पतालों को पूरी तरह तैयार रहने और घायल गोविंदाओं को मुफ्त उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने 1,60,000 गोविंदाओं के लिए बीमा कवरेज की घोषणा की है। अस्पताल में भर्ती होने, स्थायी पूर्ण या आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में 1,00,000 से 10,00,000 रुपए तक का बीमा लाभ दिया जाएगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू होगा। इसमें 19 देशों के 105 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल शाम प्रतियोगिता का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत आने वाले वर्षों में खेलों का प्रमुख केंद्र बनेगा।
5: 19 देशों से 108 से ज्यादा पैरा एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं उस वक्त कि अहमदाबाद, गुजरात और भारत आने वाले दिनों में खेल जगत के, चाहे वो ओलंपिक्स से जुड़े हुए खेल हो, सभी प्रकार के खेल का ये बहुत बड़ा सेंटर बनने वाला है।
0: एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच दुबई में रात 8 बजे से शुरू होगा। भारत ने थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना ली है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
6: धन्यवाद मुकेश। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन US उपग्रह के सफल प्रक्षेपण की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने लिखा है, इसरो ने अंतरिक्ष में स्थापित किया तीसरा नेत्र। जनसत्ता की सुर्खी है, देश के पहले उपग्रह का प्रक्षेपण, इसरो की एक और

और कामयाबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो और उद्योग जगत की साझेदारी को अंतरिक्ष क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया, कहा हमारे देश के लिए गर्व का पल। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री जिस प्रोजेक्ट का करेंगे लोकार्पण उसकी 6 महीने तक होगी निगरानी। कुछ घटनाओं से सीख लेकर NHAI ने कार्यक्रमों की SOP में जोड़े नए दिशा निर्देश। दैनिक भास्कर ने शिक्षक दिवस पर विशेष सुर्खी से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विशेष लेख साझा करते हुए लिखा है विजेता होते हैं शिक्षक लेकिन शिष्य से पराजित होने की शिक्षा उन्हें महान बनाती है। पंजाब केसरी ने शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के लेख पर विकसित भारत के सफर में शिक्षकों की भूमिका देते हुए लिखा है यह दिन सिर्फ सराहना करने के दिन से कहीं ज्यादा मायने रखता है। पंजाब केसरी की सुर्खी है नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।

0: दिवस पर विशेष सुर्खी से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विशेष लेख साझा करते हुए लिखा है, विजेता होते हैं शिक्षक, लेकिन शिष्य से पराजित होने की शिक्षा उन्हें महान बनाती है। पंजाब केसरी ने शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के लेख पर विकसित भारत के सफर में शिक्षकों की भूमिका देते हुए लिखा है, यह दिन सिर्फ सराहना करने के एक दिन से कहीं ज्यादा मायने रखता है। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। मथुरा में रात 12 बजते ही हर तरफ उल्लास और हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की का उत्साह देखने को मिला। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, ब्रज में बाजे बधाई नंद घर आई कन्हाई। नवभारत टाइम्स ने चमत्कार शीर्षक से दिया है, नेपाल में सुरंग से 9 दिन बाद 2 को जिंदा बचाया, जन्माष्टमी पर सुरक्षित निकाले गए। फोरमैन संजय शाह ने कहा, हरे कृष्ण महामंत्र जपता रहा। अमर उजाला की सुर्खी है, सुरंग में गूंजा जिंदगी का मंत्र। राजस्थान पत्रिका ने बदलेगी गैजेट की दुनिया देते हुए लिखा है, बेकार जाने वाली गर्मी से भी बनेगी काम की बिजली।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया। 48 शिक्षकों को आज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। सरकार ने ISO टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल की अनुमति तथा कड़े नियमों का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत संघर्ष समाप्त करने में यूक्रेन और रूस के साथ निरंतर संपर्क में है। संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका का सटीक आकार दर्शाने वाले नए विश्व मानचित्र को अपनाने के पक्ष में मतदान किया। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: तपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि में आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म दिल से में। आवाजें हैं सुखवंदर सिंह, सपना अवस्थी और साथियों की।

अनु निगम, अलका याग्निक को अभी आपने सुना फिल्म दिल परदेसी हो गया मैं, और आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत।

अलका याग्निक, उदित नारायण और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म हमारा दिल आपके पास है। और आइए सुनते हैं मनप्रीत अख्तर, अलका याग्निक, उदित नारायण को। फिल्म का नाम है कुछ कुछ होता है।

उदित नारायण, अलका याग्निक, मनप्रीत अख्तर और साथियों के गाए फिल्म कुछ कुछ होता है के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विकास पथ में। विषय है ब्रज विरासत संरक्षण एवं संवर्धन। वार्ताकार है लक्ष्मी नारायण तिवारी और आपसे भेंट कर रहे हैं ओपी सिंह।
1: ब्रज धर्म की भूमि, आध्यात्म की भूमि, योग की भूमि, भक्ति की भूमि। ब्रज के जितने आयाम हम लेके चले वो कम है। जब भी ब्रज शब्द हमारे जहन में आता है तो बहुत सारी ऐसी कल्पनाएं स्वयमेव साकार हो उठती हैं। व्यक्ति के अपने अनुभव और अपनी चेतना के स्तर से वो ब्रज को देखता है, समझता है और जानने की कोशिश करता है, लेकिन हर वो स्थिति और आयाम छोटा पड़ जाता है जो ब्रज का अपना मूल स्वरूप है। ब्रज क्या है, ब्रज की उस विरासत को संरक्षण की कहाँ कहाँ आवश्यकता है, कैसे उसका संरक्षण और संवर्धन हम कर सकते हैं। निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम में बहुत सारे ऐसे लोग और संस्थाएं और कलाकार लगे हुए हैं जो अपने अपने कार्य से, अपनी अपनी समझ से और अपने अपने दायरे में रह करके इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन क्या कुछ और किया जाना आवश्यक है और एक आम व्यक्ति इसको कैसे उसमें जुड़ सकता है और कैसे अपनी सहभागिता निभा सकता है, ये आज हमारी चर्चा का विषय है। हमारे साथ हैं लक्ष्मीनारायण तिवारी जी जो ब्रज संस्कृति शोध संस्थान के सचिव हैं और एक बड़े नेक कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। तो लक्ष्मीनारायण जी, मैं आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं। और आपकी नज़र से जो ब्रज हो सकता है, आप जिस रूप में देखते हैं, समझते हैं और उस कार्य के संरक्षण और संवर्धन में लगे हुए हैं, तो मैं जानना चाहता हूं अपने श्रोताओं के लिए कि ब्रज वास्तव में है क्या।
2: दरअसल ब्रज तो इस पूरे भारत का जी, अगर कोई ललित भाव है तो वो ब्रज ही तो है। आप ये देखिए कि पूरे भारत के लोकवार्ताओं में, कथा गीतों में, कहानियों में और धार्मिक साहित्य में जहां लालित्य की बात होगी, जहां लालित्य है वहां ब्रज ही है। चाहे हम तेलुगु या तमिल के लोकगीतों को भी देख लें, वहां पे भी राधा और माधव के गीतों की आपको एक पूरी परंपरा मिलेगी। यानी इस भारत का जो पूरा ललित भाव है

0: वो ब्रज है, परंतु समय जैसे कि बदला है और समय ने सारी चीजों को और पुरानी अवधारणाओं को बदल दिया है, आज बहुत गंभीर संकट हमारे सामने ये है कि ये जो सुगंध जिसने पूरे भारत और भारत से बाहर भी जो फैल रही है, अब मूल जगह पे कमजोर पड़ने लगी। आज इसके संरक्षण की और संवर्धन की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जन सहभागिता इसमें कैसे हम कर सकते हैं या हो सकती है? बिना कोई भी संस्कृति है, बिना जनमानस का जो रुझान है उसके तो हो ही नहीं सकती। और ब्रज फैला ही जनमानस की वजह से है। ब्रज तो नाथद्वारा तक फैल गया, ब्रज तो जगन्नाथ तक गया, ब्रज नवद्वीप बंगाल तक फैला। ये जो भौगोलिक परिधि के अलावा इसका एक सांस्कृतिक विस्तार भी है जो दक्षिण तक फैल गया।
1: तो निश्चित तौर पर संरक्षण की बात तो बनती है, तो फिर प्रयास कहाँ से शुरू होने
0: चाहिए? देखिए, ब्रज जो है मूलतः वन्य संस्कृति है
1: जी।
0: स्वयं श्री कृष्ण ने भागवत में श्लोक भी आता है, उन्होंने नंद बाबा से ये कहा कि बाबा ये जो वन पर्वत है ये ही हमारे घर है। ये बात श्री कृष्ण के मुख से भागवतकार ने कहलवाई है एक श्लोक के रूप में
1: जी।
0: तो ब्रज था तो मूल रूप से वन संस्कृति
1: जी,
0: किंतु आपकी बात यह है कि देखिए अब बहुत कुछ यमुना में पानी बह चुका है, हम पीछे तो अब लौट नहीं सकते। नगरीकरण जिस तरह से हुआ और तीर्थ जो है जिस तरह से नगरों में बने, दरअसल ब्रज यात्रा मूलतः वन यात्रा थी, पर वन और उपवन जो थे अब पूरी तरह से नगर में बदल चुके हैं
1: जी, जी।
0: अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसे समय में हम क्या करें, हम कहां जाएं, कैसे इसका संरक्षण करें? तो मैं एक आपको इस चीज के बारे में कहना चाह रहा था कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकारों की तो है ही, पर उससे भी बड़ी जिम्मेदारी लोगों की है। और अब मैं ये देख रहा हूं कि ये जो युवा पीढ़ी है, शिक्षित युवा पीढ़ी है, वो संरक्षण के प्रति संजीदा है और वो इस बात को समझती है कि पर्यावरण का संरक्षण बहुत जरूरी है। मैं देख रहा हूं कि हम लोगों के धीरे धीरे धीरे धीरे प्लास्टिक का हम लोगों ने ब्रज में से हटाने की बात कही थी, तो शुरुआत में तो नहीं मिल रहा था और अभी भी जो आम आदमी है उसका उतना संरक्षण सहयोग नहीं मिल रहा है, परंतु हम देखते हैं कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं या विदेशी जो लोग आ रहे हैं वो इस चीज के प्रति काफी संजीदा है कि वृंदावन में से, ब्रज में से अगर हम प्लास्टिक को भी हटा दें व्यवहार से, और हम लोग काफी इसका प्रयास भी कर रहे हैं और बहुत हद तक हुआ है। सरकार भी ये चाहती है, हम लोग भी ये चाहते हैं कि ये हो, पर थोड़ी सी जन जागरण की आवश्यकता है। जब वृंदावन और मथुरा का मूल व्यक्ति जो है, मूल निवासी जग जाएगा और उसके दिमाग में जिस दिन ये आ जाए कि भाई ब्रज का संरक्षण हमें करना है, तो जहां स्थिति है और बेहतर स्थिति हो जाएगी, इससे कोई दूसरी राय नहीं है। हमें आज ये बहुत जरूरी है कि हमें अपने लोगों को जन जागरण करने की ज्यादा जरूरत है। धीरे धीरे देख देखिए कई संस्थाओं ने काम किया है और लगातार कुंडों का, वनों का संरक्षण का काम हो रहा है और लोग उसको देख करके, बाहर से आने वाले लोग जो हैं, तीर्थयात्री जो हैं, उसे देख करके आनंदित हो रहे हैं और काफी काम हुआ भी है। एकदम तस्वीर तो अभी नहीं बदल
1: जी जी जी,
0: परंतु उस दिशा में काम हुआ है और मैं ये कह रहा हूं कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, आशा की किरणें अभी भी जगमगा रही हैं।
1: अब थोड़ा सा जैसे वर्तमान को अगर हम ले, लोगों को रोजी रोटी भी कमानी है, रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है, हर आदमी को जीविका भी चाहिए, विकास की बात होती है, साधन सुविधाएं भी व्यक्ति को चाहिए जिस हिसाब से वो रहना चाहता है, तो विकास भी हो लेकिन ब्रज का मूल स्वरूप भी बना रहे, जैसे बात कई बार पर्यटन से जुड़ने की चलती है, तो जो तीर्थ नगरी अगर हम कहें, ब्रज भी एक धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नगरी है, ये तीर्थ नगरी पहले है, पर्यटन थोड़ा बाद में आता है, क्योंकि पर्यटन जुड़ते ही थोड़ा सा रोजगार की बात आती है, साधन सुविधाओं की बात आती है, तो क्या जो एक जो आपने शुरुआत में लालित्य की बात की, ब्रज लालित्य है, ब्रज भाव है, तो वो भाव भूमि बनी रहे, वो भक्ति भूमि बनी रहे, ब्रज का लालित्य बना रहे लेकिन लोगों को रोजगार भी मिलता रहे, लोगों को सुविधाएं भी मिलती रहे, उसका जब हम एक खाका खींचते हैं तो कहीं बीच का एक रास्ता आपको नजर आता होगा, तो फिर कहां थोड़ा कहें कि संरक्षण भी जरूरी है और उसमें संवर्धन भी हो जाए लेकिन हमारा भाव और वो भक्ति।
0: देखिए आप, बात यह है कि जिस तरह से समय की धारा बह रही है, बहना तो सबको उसी के साथ पड़ता है
1: जी, जी।
0: पर फिर भी मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जो

0: पर्यटन शब्द है वो संस्कृति है कि सुविधा आप पैसा दीजिए सुविधा लीजिए, परंतु तीर्थ जहां आता है तो वहां व्यक्ति जो ये सोचता है कि यहाँ जो है ना लेने और देने की संस्कृति नहीं है, यहाँ हमें आश्रय मिलेगा, यहाँ हमें वो शांति की जो भूख हमें हमारे उसमें नहीं पूरी हो रही है वो यहाँ पूरी होगी। यहाँ व्यक्ति का मन ऐसा नहीं होता कि वो यहाँ पैसा दे और सुविधा ले। आप, मैं ये कहना चाहता हूँ, इस चीज को मैं बहुत जोर दे के कहना चाहता हूँ कि देखिए भाई, ब्रज की जो है ना लेने देने की संस्कृति नहीं है।
1: जी जी जी।
0: ब्रज की संस्कृति तो देने देने की है। आप दीजिए,
1: आप भी दें और ऊपर वाले से भी लें,
0: वो तो अपने आप देगा। वो तो मैं ब्रजवासियों से बार बार कहता हूँ कि भाई आप दो हो, वो तो ठाकुर हमारा बैठा हुआ है देने के लिए, वो तो देगा ही देगा। वास्तविकता में ये है कि अगर आप लेने देने की वो जिस तरह से आप सोचेंगे, जो इसको होटल कल्चर में बदलेंगे और जो कि हो रहा है, इसको
1: वो नहीं होना चाहिए।
0: वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग आश्रय के लिए आते हैं, लोग परेशान हैं अपने जीवन से, अपने जीवन की शांति खोजने के लिए यहाँ आते हैं, अपने जीवन का लक्ष्य खोजने के लिए यहाँ आते हैं, यहाँ से प्रेरणा से भर के जाते हैं, यहाँ पे चार्ज होने के लिए आते हैं, तो वो हमें देना है। हम अगर उनके साथ में ये इस टाइप का व्यवहार करेंगे,
1: सुविधाओं में चीजों को तोड़ने लगेंगे,
0: तो वो नहीं हो पाएगा,
1: सतही हो जाएगा।
0: पर्यटन तो बनता जा रहा है क्योंकि आधुनिकता के हिसाब से, परंतु ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ब्रज का मूल जो है वो तीर्थ में है और तीर्थ हमेशा देते रहे।
1: जी जी,
0: लेने का यहाँ कोई भी विचार मूल में नहीं है।
1: तो वो
0: अब चूंकि वो व्यवसायीकरण हो गया है, तो तीर्थ जो है पर्यटन स्थल के रूप में बदल रहा है और बहुत तेजी से बदल रहा है।
1: हमारी बात संरक्षण की थी और ब्रज के मूलभूत संरक्षण की थी, ब्रज विरासत की बात थी, तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा कि जब ब्रज के रूप, जब जिसको हम देखना चाहते हैं, वो रूप वास्तव में है क्या? क्योंकि आपने कहा कि वन उपवन तो अब कम हो गए, मंदिरों में अब वो जो पर्यटन और उस वाली बात आ गई, तो फिर वो मिल नहीं रहा है लोगों का जो वो चाहते हैं, वो शांति नहीं मिल रही है, वो चार्ज जो कहते हैं ट्रांसमिशन मिलना चाहिए मंदिरों से, वो नहीं मिला, वो कहीं एक भीड़ और शोर के कोलाहल में खोता जा रहा है उसमें। तो ब्रज का जो अगर रूपों की बात करें, तो वो जो रूप आप बताना चाहें श्रोताओं को, वो क्या हो सकते हैं?
0: दरअसल ऐसा था कि आज से 30 साल पहले जो तीर्थ यात्री ब्रज में आ रहा था, तो उसके एक बहुत अभिन्न एक चीज थी जिसके बारे में मैं आपको बता के उदाहरण देता हूं कि तीर्थ में जो है स्नान बहुत अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ था। अब चूंकि यमुना प्रदूषित हो गई, मथुरा में भी, वृंदावन में भी, अब पूरे अब ब्रज यात्रा में यमुना स्नान कट गया है। आप देखिए
1: जी जी,
0: किस तरह से
1: आचमन लायक भी नहीं रहा।
0: मुख्य जो चीज थी, मतलब यात्रा का एक मुख्य आकर्षण जो था, अब वो आचमन लायक भी नहीं रह गया। अच्छा, इस दिशा में जो सरकारों का जो रवैया है वो बहुत अच्छा नहीं रहा। उन्होंने उस चीज को नहीं समझा। यमुना वाला जो मामला है, उसमें स्थानीय लोगों ने तो जो किया, सरकारों ने उसके लिए नहीं समझा। अब चूंकि सिंचाई के लिए जमीन को पानी चाहिए और हरियाणा में वो बहुत जरूरी होता है, तो यमुना आंदोलन के बारे में तो आपको पता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो यमुना जो ब्रज की जीवन दायिनी एक संचार प्रणाली थी, जिससे ब्रज को जीवन मिलता था, कृषि को जीवन मिल रहा था, जिससे संस्कृति को जीवन मिल रहा था, वो पूरा का पूरा भाग जो है अब ब्रज यात्रा से गायब हो गया। अब ब्रज यात्रा क्या रह गई है? अब ब्रज यात्रा रह गई है बांके बिहारी के दर्शन, टिकिया पकौड़ी लस्सी, ये अब पिकनिक का रूप उसने लेना शुरू कर दिया।
1: उसके अंदर की जो सांस्कृतिक चेतना और जो जीवंतता थी, वो
0: तीर्थ में आकर के जो तप की भावना थी, जब यात्री आता था, स्नान करता था, नंगे पैर पूरे नगर में घूमता था, मथुरा में, वृंदावन में, गोवर्धन में, तो उसके अंदर में एक ये थी कि तीर्थ में आना एक तप, हमें जीवन की जो सुविधाएं हम अपने घर पे प्राप्त कर रहे हैं वो यहाँ पे त्याग नहीं है। कुछ समय के लिए हमें अपने इसको पहचानना है, यहाँ इस चीज की तलाश में व्यक्ति आता था।
1: अब वो बिल्कुल गायब हो गए।
0: अब वो धीरे धीरे वहीं आ गया कि वो हम वीकेंड हो रहा है और वीकेंड पे जो है हमें बच्चों को घुमाना है, तो कुछ मथुरा वृंदावन से बढ़िया जगह कौन सी हो सकती है?
1: हाँ,
0: और वहां अन्य जगह घुमाओ तो दिल्ली तो महंगी है, मथुरा वृंदावन सस्ता है इस मुकाबले जो है,
1: मतलब
0: तो
1: जब ये गुठली के दाम बारी बात है कि
0: तो इससे ब्रज का संरक्षण कैसे हो? इससे ब्रज का संरक्षण कैसे हो? ये नहीं हो सकता। हमें खुद बदलना।

0: होगा, हमें लोगों को बदलना होगा। और ऐसी बात नहीं है, अगर आप खड़े हो जाएंगे तो लोग खड़े हो जाएंगे। जिसको आप सही दिशा देंगे तो वो तैयार है, युवा बदलने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं है कि युवा हमारा बदलने के
1: जी
0: लिए
1: जी
0: नहीं,
1: जी अपनी जड़ों से अपनी पहचान से
0: वो
1: जुड़ना
0: जुड़ना चाहता
1: चाहता
0: है।
1: है
0: आप उसे उस ढंग से
1: मौका।
0: जोड़िए तो सही, नए परिप्रेक्ष्य में आपको पुरानी चीज को थोड़ा नया ढंग से पेश तो करना है ना,
1: जी बताना तो पड़ेगा
0: बताना
1: उसमें।
0: पड़ेगा।
1: तो कुल मिलाकर के जो ब्रज का मूर्त रूप और अमूर्त रूप दोनों है, उन दोनों के ही संरक्षण की बात है, दोनों के ही संवर्धन की बात है, और जो आने वाली पीढ़ी है उसको समझाने की भी बात है कि भाई ये हमारी अपनी जड़ें हैं, और जब तक जड़ें सुरक्षित हैं पेड़ भी सुरक्षित रहेगा, जड़ों को अगर आप काट दोगे तो पेड़ भी सूख जाएगा।
0: बिल्कुल
1: तो उस आने वाली पीढ़ी को हमारी पुरातन संस्कृति से

0: उस आने वाली पीढ़ी को हमारी पुरातन संस्कृति से जोड़ करके समझा करके अगर हम बात रखेंगे तो शायद बात बन जाएगी, ये आप कहना चाह रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहूंगा कि युवाओं को बहुत ब्रज के काम में जोड़ने की जरूरत है और युवाओं के अंदर ही वो शक्ति है जो हमें ब्रज के ये जो हमारा पूरा जो संरक्षण का जो विचार है इसको आगे ले जाने के लिए हमें युवा शक्ति की जरूरत है।
0: इसके फायदों को पहचाने तो शायद बेहतर हो सकता है। एक बार पुनः आपका धन्यवाद, नमस्कार।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम विकास पथ में, ब्रज विरासत संरक्षण एवं संवर्धन विषय पर भेंट वार्ता। वार्ताकार थे लक्ष्मी नारायण तिवारी और आपसे भेंट कर रहे थे ओपी सिंह। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी लखनऊ से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बाराबंकी और मिर्जापुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बाराबंकी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है परवेज अहमद सिद्दीकी का।
1: रिमझिम फुहारों के बीच सावन के इस माह में 12 रबीउल अव्वल व रक्षाबंधन जैसे त्योहारों ने माहौल को बेहद खुशगवार बना दिया। सावन के चारों सोमवारों को शिव मंदिरों में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। विशेषकर कॉरिडोर की घोषणा के बाद रोधेश्वर महादेवा में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा और अतः भीड़ ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। रात से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए मंदिर पहुँचते रहे। दूर दराज से आने वाले कांवड़ियों ने भोलेनाथ का जलाभिषेक कर अपनी मनोकामनाएं मांगी। बुंदेलखंड क्षेत्र के उरई, जालौन, झांसी तो बिठूर, कानपुर, उन्नाव समेत कई जिलों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु महादेव के दर्शन करने पहुंचे। जिला प्रशासन द्वारा भारी भीड़ को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुविधाओं और सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए। इस अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा कांवड़ यात्रियों और श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। जिला प्रशासन द्वारा नगर क्षेत्र में कैंप लगाकर कांवड़ यात्रियों की जांच और सुविधाओं का ख्याल रखा गया। जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने आकाशवाणी से बातचीत करते हुए बताया, पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन पर पूरा जनपद सजावट और रोशनी से चमक उठा। जगह जगह जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। खासकर नगर क्षेत्र में निकाला गया मदह सहाबा का जुलूस विशेष आकर्षण रहा। धनोका स्थित हनुमान मंदिर के पास व्यापार मंडल प्रदीप जैन व महामंत्री रविनंद खजांची के नेतृत्व में व्यापारियों ने जुलूस का स्वागत कर साझा संस्कृति को प्रदर्शित किया। रक्षाबंधन का पर्व भी धूमधाम से मनाया गया। प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को उपहार स्वरूप प्रदान की गई बस सेवा से उनके चेहरे पर खुशी देखने को मिली। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय करपिया मसौली की बालिकाओं ने जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह से आत्मीय मुलाकात की और हाथों से बनाई गई राखी उनकी कलाई पर बांधकर भाई बहन के स्नेह का भाव साझा किया। इस माह घाघरा नदी का जलस्तर कई बार खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा और ग्रामीणों को बाढ़ की विभीषिका झेलनी पड़ी। इस माह जिले से गुजरी घाघरा सरयू नदी पूरे उफान पर चल रही है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। क्षेत्र के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। उसी को लेकर के बाराबंकी जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश राही ने गत दिनों रामनगर तहसील क्षेत्र के हेतमापुर बंदे के पास में स्थित बाढ़ पीड़ित शरणालय में प्रभारी मंत्री सुरेश राही ने 500 बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की। प्रभारी मंत्री ने नदी के किनारे बसे लोगों से मौके पर जाकर हालचाल जाना और उन्हें सरकार के द्वारा हर संभव मदद दिए जाने का आश्वासन दिया। जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने विगत दिवस विकासखंड बंकी अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय पलिया मसूदपुर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने विद्यालय में उपस्थित शिक्षकों की उपस्थिति की जांच की तथा शिक्षण कार्य की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बच्चों से उनकी पढ़ाई के साथ साथ विद्यालय में मिलने वाले मिड डे मील के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की। जिलाधिकारी ने विद्यालय की रसोई का निरीक्षण कर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने तथा बच्चों को निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही जिलाधिकारी ने विद्यालय परिसर में ही स्थित आंगनबाड़ी केंद्र व आयुष्मान आरोग्य मंदिर का भी निरीक्षण कर वहां उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बाराबंकी पहुंचे प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त डॉक्टर दिलीप अग्निहोत्री ने कहा।

0: की बाराबंकी में विरासत और विकास की यात्रा प्रगति पर है। इसमें जन सूचना अधिकारियों को भी अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहिए। उन्होंने रामनगर निरीक्षण गृह में कहा कि यहाँ विरासत को सम्मान मिल रहा है, इसमें सांस्कृतिक गौरव की अनुभूति है। राज्य सूचना आयुक्त ने रामनगर स्थित बुद्धेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन पूजन किया। उन्होंने कहा कि जनपद को करीब 500 करोड़ रुपयों की योजनाओं की सौगात मिली। प्रदेश सरकार स्टेट कैपिटल रीजन NCR के रूप में विकसित किया जा रहा है। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय PIB लखनऊ द्वारा बाराबंकी के पत्रकारों के लिए मीडिया कार्यशाला वार्तालाप का आयोजन लोकसभागार में किया गया। कार्यशाला में फेक न्यूज एवं भ्रामक सूचनाओं की पहचान, फैक्ट चेकिंग तथा डिजिटल टूल्स के प्रभावी उपयोग के साथ केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं और पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियों पर चर्चा की गई। PIB लखनऊ के निदेशक दिलीप कुमार शुक्ल ने कहा कि फेक न्यूज एक वायरस की तरह है जो तेजी से फैलती है और समाज को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता में तथ्यों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करना अत्यंत आवश्यक है और फेक न्यूज को फैलाने से रोकने में पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जिलाधिकारी शांत प्रताप सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के पत्रकारों के बीच फेक न्यूज के संबंध में जागरूकता फैलाने की PIB की पहल सराहनीय है।
1: बाराबंकी जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मिर्जापुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है SM सबा का।
2: मिर्जापुर की सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने गत दिनों जिलाधिकारी सभा कक्ष में जल जीवन मिशन की बैठक लेने के बाद कार्यों की हकीकत जानने के लिए स्वयं लाव लश्कर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंची और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। उन्हें शीघ्र ही समस्या के समाधान हेतु आश्वस्त किया। इसके बाद उन्होंने खजुरी में बने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। मिर्जापुर में जो स्कीम पर काम चल रहा है जिसके तहत 1609 गांव में पेयजल की सप्लाई सुनिश्चित कराई जा रही है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि
3: मिर्जापुर में 9 स्कीम्स चल रही हैं जल जीवन मिशन के तहत, जिसके अंतर्गत अलग अलग ब्लॉक में कुल 1609 गांव में पेयजल की सप्लाई है वो सुनिश्चित की जा रही है।
2: मिर्जापुर जिले में एक सप्ताह से लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश से आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं 1 सितंबर को सुबह से पूरे दिन हुई बारिश के नगर के कई इलाकों में जल भराव के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गड्ढा युक्त सड़कों पर पानी भर जाने से राहगीरों की सड़क की स्थिति का अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। ऐसे में दोपहिया वाहन सवारों के गिरने और चोटिल होने का खतरा बढ़ गया है। जिले में करीब 15.75 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। नगर की कई सड़कों के किनारे पानी जमा होने से पैदल चलने वालों को भी मुश्किल हो रही है। बारिश और तेज हवा से पक्षियों के प्राकृतिक आश्रय भी प्रभावित हुए हैं। पेड़ की डालियों और खुले स्थानों पर पानी भरने से पक्षियों को सुरक्षित ठिकाना तलाशना कर पड़ रहा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन के अंदर बने बिलों में पानी भरने के कारण सांप बिच्छू समेत अन्य जहरीले जीव सूखे स्थानों की तलाश में बाहर निकल रहे हैं। इससे ग्रामीणों में भी भय बना हुआ है। लगातार बारिश से खेतों और निचले इलाकों में पानी भरने के कारण ग्रामीणों की दिनचर्या प्रभावित हुई है। पशुपालकों का कहना है कि बारिश लंबी खींचने पर चारे और पशुओं को सुरक्षित रखने की समस्या और गंभीर हो सकती है। मिर्जापुर में दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। गत दिनों नगर के फीटी क्लब में प्रधानमंत्री दिव्यांग वरिष्ठ केंद्र का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि प्रधानमंत्री दिव्यांग वरिष्ठ केंद्र के माध्यम से दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार निःशुल्क सहायक उपकरण उपलब्ध कराने, उनका आकलन करने तथा पहले से वितरित उपकरणों की मरम्मत एवं रख रखाव जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इससे लाभार्थियों को सहायक उपकरणों के लिए दूर दराज जाने की परेशानी से राहत मिलेगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अनुप्रिया पटेल ने इस पहल को दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, आत्मनिर्भरता एवं गरिमापूर्ण जीवन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। आदि शक्ति माँ विंध्यवासिनी के दिव्य धाम में विगत दिनों भारतीय शास्त्रीय कला सुर लय की साधना संपन्न हुई। सुर लय के इस साधना पर्व पर रसिक जनों ने भरपूर आनंद उठाया। भारतीय सनातन कला एवं गुरु शिष्य परंपरा के समर्थन हेतु समर्पित महेश्वर साधना ललित कला प्रशिक्षण केंद्र विंध्य रत्न स्मृति शेष पंडित महेश्वरपति त्रिपाठी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य शास्त्रीय संगीत समारोह का परंपरागत गरिमामय 9वां आयोजन माँ विंध्यवासिनी मंदिर प्रांगण में आयोजित किया गया। समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं माँ विंध्यवासिनी के चरणों में वंदना अर्पण के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हुआ। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि वाणिज्य कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर मनोज कुमार ने समारोह की सराहना करते हुए इसे भारतीय संस्कृति का गौरव

0: आध्यात्मिक लेखक फलील पांडे को परंपरागत सम्मान से सम्मानित किया गया। आयोजकों ने अतिथियों को अंगवस्त्रम, स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र भेंट किया। रिपीट समारोह में देश के विभिन्न सांस्कृतिक केंद्रों से पधारे कलाकारों ने अपनी अलौकिक प्रस्तुतियों से समा बांधा। शास्त्रीय गायन काफी की सुप्रसिद्ध गायिका अलंकृता राय ने अपने सुमधुर और गंभीर शास्त्रीय गायन से वातावरण को भक्तिरस से सरोबार कर दिया। मिर्जापुर में भारी बारिश और विभिन्न बांधों से छोड़े गए पानी से जिले में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पुलियों और रपटों पर पानी भर जाने से आवागमन में असुविधा हो रही है। गंगा नदी उफनाई हुई है। वैसे तो जिले में गंगा का जल खतरे के निशान से अभी 2 मीटर दूर है, लेकिन गंगा में बढ़ाव के चलते जिले के निचले स्थानों पर बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर दिया गया है। गंगा के जलस्तर की मॉनिटरिंग कराई जा रही है। अधिकारी क्षेत्र में भ्रमणशील हैं।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, आइए सुनते हैं कार्यक्रम आबोहवा।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मथुरा रिफाइनरी मथुरा। मथुरा रिफाइनरी स्वच्छ एवं हरित रिफाइनरी, पर्यावरण के प्रति एक जिम्मेदार और समर्पित प्रतिष्ठान, विकास का आधुनिक मंदिर, पर्यावरण प्रबंधन के लिए एशिया की पहली ISO 14001 रिफाइनरी मथुरा रिफाइनरी, विशाल इकोलॉजिकल पार्क को सहेजे, ब्रज के फ्लोरा एवं फोना का जीता जागता नमूना, ताजमहल की सुरक्षा और संरक्षण को सदैव समर्पित मथुरा रिफाइनरी स्वच्छ एवं हरित रिफाइनरी।
4: पर्यावरण प्रदूषण मेरी या आपकी समस्या नहीं है, ये हम सबकी समस्या है। पर्यावरण किसी एक तरह से प्रदूषित नहीं होता है, उसके बहुत से कारक हैं, जैसे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण इत्यादि। वायु प्रदूषण का मतलब है हवा का प्रदूषित होना। जो हवा हमारे आसपास होती है, जिसे हम श्वास से अंदर लेते हैं, उसका प्रदूषित होना वायु प्रदूषण कहलाता है। आज शहरों की सबसे बड़ी समस्या ही वायु प्रदूषण बन गई है। कंक्रीट और सीमेंट के बढ़ते जंगलों ने वृक्षों व हरियाली को जैसे निगल ही लिया है। मनुष्य अपनी जरूरत के हिसाब से प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहा है। मनुष्य की बढ़ती आबादी, उसकी जरूरतों के हिसाब से पेड़ों को वृक्षों को काटा जा रहा है, जिसके दुष्प्रभाव हमारे और आपके सामने हैं। बढ़ते हुए वाहनों, मोटर गाड़ियों से निकलने वाले धुओं इस तरह फैल रहा है कि आसमान भी अब हमें नीला ना होकर काला दिखाई देने लगा है। जी हाँ श्रोताओं, आजकल जो मोटर गाड़ियां, वाहनों से जो धुआं निकलता है वो वायुमंडल में जाकर जहरीली गैसें में बदल जाता है, जिससे हमारा आसमान नीला ना होकर हमें काला दिखाई देने लगता है। बढ़ते हुए उपकरणों से निकलने वाली गैसें भी वातावरण को दूषित करती हैं। वृक्षों के अत्यधिक कटाव के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा बढ़ रही है। श्रोताओं, बढ़ता हुआ ट्रैफिक, मोटर गाड़ियां हमारे वातावरण के लिए कतई सुखदायक नहीं है। हालांकि हम अपनी सुख सुविधाओं व भौतिक जरूरतों को समझते हुए वाहनों की खरीदारी करते हैं और कुछ भी काम हो हम अपनी गाड़ी मोटर गाड़ियों का ही उपयोग करते हैं। इसलिए एक नागरिक होने के नाते हमें कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। घरों के आसपास आने जाने के लिए गाड़ियों का उपयोग न करें। कम से कम 1 से 2 किलोमीटर अगर आपको कुछ काम होता है घर के आसपास, तो आप कोशिश करें कि आप अपने वाहन का उपयोग कतई ना करें। इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला, आपके पेट्रोल की बचत। दूसरा, वायुमंडल में गंदगी प्रदूषित ना करना। अगर आपकी गाड़ी काला धुआं फेंक रही है तो उसे तुरंत किसी मैकेनिक को दिखाएं। सिग्नल लाइट्स, ट्रैफिक लाइट्स पर अपनी गाड़ी का इंजन पूर्णतः बंद कर लें, जिससे आपके पेट्रोल की बचत तो होगी ही, साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस की मात्रा का रिसाव भी कम होगा। ज्यादा से ज्यादा कोशिश पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने की करें। श्रोताओं, सरकार ने हम सबके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं हर शहर में दी हुई हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उन्हीं वाहनों का उपयोग करें। जल प्रदूषण, जी हाँ श्रोताओं, बढ़ते हुए ट्रैफिक, मोटर गाड़ियों, वाहनों के चलने से CO2 गैस उत्पन्न होती है। CO2 गैस के काले काले कण हवा में उड़ते हैं और उसके बाद आसपास जल में मिल भी जाते हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब हम बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण की। हमारे आसपास

0: चलती हुई मोटर गाड़ियां की आवाज, कारखानों से निकलने वाला शोर, लाउड स्पीकर से निकलने वाली तेज आवाजें, कर्कश आवाजें हमारे मन में तनाव और गुस्सा पैदा करती हैं। जी हां श्रोताओं, जितनी ज्यादा ध्वनि हमारे कानों में जाएगी, हम उतनी ही तनाव में और गुस्से में आएंगे। ध्वनि प्रदूषण से बचने के कुछ उपाय हैं, जैसे शहर के बीचों बीच शांति क्षेत्र मतलब साइलेंस जोन बनाना चाहिए। सरकार को पहल करनी चाहिए कि शहर के बीचों बीच साइलेंस जोन बनाया जाए, जहां से निकलने वाले मोटर गाड़ियां वाहनों को बिल्कुल भी शोर शराबा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। स्कूल कॉलेजों के आसपास भी साइलेंस जोन होने चाहिए, जिससे बच्चों की पढ़ाई में भी कोई डिस्टर्बेंस ना हो। कारखानों मिलों को शहर से दूर लगाना चाहिए। कारखानों मिलों से निकलने वाली कर्कश आवाज भी ध्वनि प्रदूषण का अहम कारक है। शादियों में बजने वाले तेज संगीत को अनुमति नहीं देनी चाहिए। बस हर नागरिक को चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारियों की पालना पूरी ईमानदारी से करे, कम से कम मोटर गाड़ियों का उपयोग करे, जिससे आने वाले समाज में ना तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा फैल सके और हम भी स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ जल और स्वच्छ माहौल में अपने बच्चों को बढ़ते हुए देख सके।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे मथुरा रिफाइनरी मथुरा।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबो हवा, विषय था शहर का परिवहन, आलेख और वाचन अरुण उपाध्याय का था। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज दर्पण।

शिक्षा, सूचना और मनोरंजन से भरपूर आपके अपने कार्यक्रम ब्रज दर्पण में आप सभी श्रोता मित्रों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, जैसा कि हम कार्यक्रम की शुरुआत एक अच्छे और सकारात्मक विचार के साथ करते हैं, साथियों, जब भी हम अच्छे विचारों को, अच्छी बातों को जीवन में आत्मसात करते हैं तो वास्तव में हमें जीवन को एक नए ढंग से जीने की प्रेरणा मिलती है। तो हम भी कार्यक्रम की शुरुआत एक ऐसे ही सकारात्मक विचार के साथ करेंगे और आज का हमारा विचार है कि चिंता नहीं, चिंतन करें। क्योंकि चिंता और चिंतन, इन दोनों में बहुत फर्क है। किसी एक बात को पकड़ कर लगातार दुखी होते रहना, उसी के बारे में ही सोचते रहना, ये चिंता है। और उसी विषय को लेकर सही दिशा में सोचने की प्रक्रिया का नाम है चिंतन। यानी चिंता भटकाव है और चिंतन रास्ता है। चिंता का समाधान सिर्फ चिंतन में है। आज के युग में सुबह जागने से लेकर सोने तक, व्यापार में लाभ हानि, संतान का पालन पोषण, उनकी शिक्षा दीक्षा, अपने और परिवार के स्वास्थ्य की चिंता, यानी कितनी तरह की हम उलझनों से घिरे रहते हैं। इन सारी चिंताओं में डूबे रहने से हमारे आने वाले दुख में या आने वाली समस्याओं में तो कोई कमी होती नहीं है, लेकिन चिंताओं की चिंता करने से हमारे आज के सुख में, आज के उल्लास में कटौती ज़रूर हो जाती है। चिंता मन को खोखला बना देती है, जबकि चिंतन जीवन को व्यवस्थित करना सिखाता है। अगर जीवन में चिंताएं अपरिहार्य हैं तो प्रकृति ने उनका निराकरण यानी हमें समाधान भी दिया है। हम अपनी चिंताओं को चिंतन में बदल सकते हैं, यानी हम उनका समाधान खोज सकते हैं। कहा जाता है कि चिंता चिता के समान होती है, जिससे धीरे धीरे लोग तनाव और अवसाद में चले जाते हैं। चिंता तनाव के कारण लोगों का शरीर कई बीमारियों से पीड़ित होने लगता है। चिंता दीमक की तरह भीतर ही भीतर मनुष्य को खा जाती है। ये ज्ञान और विश्वास रूपी अमृत का नाश करके हमारे भीतर नकारात्मकता भर देती है। इसलिए साथियों, चिंता करने की बजाय चिंतन करें, अपनी समस्याओं का समाधान खोजें। क्योंकि समस्याएं तो हमारे जीवन का एक भाग हैं। हर व्यक्ति के आगे कोई ना कोई समस्या रहती है और हर समस्या का एक समाधान भी होता है। इसलिए सारी चिंताओं को छोड़कर इस अनमोल जीवन को आनंद के साथ व्यतीत करें। और कबीरदास जी ने भी इस बारे में कहा है, चिंता

0: श्रोताओं, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण का कल्प जन्म हुआ, आज उनके जन्म की खुशियां मनाई जा रही हैं, जिसे हर मंदिर देवालय में नंदोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ मथुरा शहर के मुख्य मंदिर श्री द्वारकाधीश में नंदोत्सव को बड़े ही धूमधाम के साथ, एक विशेष परंपरा के साथ मनाया जाता है। तो इस बारे में हम जानते हैं मंदिर के मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी जी से। जैसा कि आज नंदोत्सव मनाने जा रहे हैं, तो नंदोत्सव को मंदिर द्वारकाधीश में मनाने की क्या विशेष परंपरा है और किस खास तरीके से इसे मनाया जाता है?
1: दर्शकों, भगवान कृष्ण के जन्म की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि नंद बाबा को काफ़ी समय व्यतीत होने के बाद भगवान कृष्ण जैसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो पूरे ब्रजमंडल में एक ऐसा उत्साह था कि नंद घर आनंद भये, जय कन्हैया लाल की, हाथी लाए, घोड़ा लाए और लाए पालकी। इस नंद महोत्सव को मंदिर में नंद बाबा और यशोदा माँ के रूप में मंदिर के मुखिया जी स्वरूप धारण करके ठाकुर जी को पालने में झुला के और इस नंद महोत्सव को इस खुशी के साथ मनाते हैं कि जहाँ मान्यता ये है कि नंद बाबा को जितने लोग बधाई देने गए उन सबको वस्त्र, आभूषण, पकवान, ये सब खेल खिलौने सभी दिए गए, तो दिए गए जो उनके पास गए। लेकिन उस परंपरा का निर्वहन करते हुए मंदिर में ये सभी चीज़ें भक्तों को लुटाई जाती हैं और भक्त उसका आनंद लेते हैं, अपने आप को सौभाग्य समझते हैं कि अगर ठाकुर जी की प्रसादी एक खेल खिलौना मेरे पास आया, ठाकुर जी की प्रसादी एक वस्त्र आया, तो लोगों का ऐसा भाव रहता है कि ठाकुर जी की प्रसादी हमको मिली। उस नंद महोत्सव को प्रातःकाल 10 बजे से और लगभग 11 बजे तक 1 घंटे तक चलता है। उस नंद महोत्सव को मंदिर प्रांगण में मनाया जाता है।

0: ग्वाल वाल सभी अपने आप में एक दूसरे को बधाई देते हैं और उसकी खुशियां मनाते हैं। इस प्रकार यह उत्सव ठाकुर मंदिर में मनाया जाता है। उसके बाद सेवा का क्रम चालू रहता है और पुष्टि मार्ग में एक पद्धति है कि ठाकुर जी की जो बाल स्वरूप की सेवा है तो बालक पर ज़्यादा श्रम पड़े इसलिए सायंकाल 4:30 से 5 बजे तक शयन हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि जो शयन प्रतिदिन 6:30 से 7:30 होती थी वह 4:30 से 5 होके ठाकुर जी को 2 घंटे पहले रेस्ट दिया जाता है। काफ़ी श्रम पड़ता है ठाकुर जी पर और इस प्रकार से नंदोत्सव का कार्यक्रम ठाकुर मंदिर द्वारकाधीश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।
1: नंदोत्सव के दिन और कुछ विशेष भोग प्रसाद लगाए जाते हैं ठाकुर जी को?
0: देखिए नंद महोत्सव के दिन ठाकुर जी को जैसे माना जाता है कि जिस प्रकार जच्चा बच्चा के लिए पजीरी है या और जो जच्चा बच्चा को दी जाती चीज़ें हैं उन सब वस्तुओं का भोग लगाया जाता है। बाकी नॉर्मल भोग तो लगता ही है, बाकी थोड़ा जैसे अब जन्माष्टमी को पाक पंजीरी बनेंगे सुबह के समय हरीरा पंजीरी उस तरीके की मान्यता है तो वो सभी भोग लगाए जाते हैं। वो सब मर्यादा में रहकर वो सारे काम होते हैं। जहाँ तक भगवान के दर्शन सभी लोग करना जाते हैं, आशेश्वर महादेव नंदगांव में हैं, वे भी भगवान का दर्शन करने आए थे लेकिन यशोदा माँ को ऐसा लगा कि इनका स्वरूप देख के मेरे लाला डर जाएगा। तो विशेष रूप से ठाकुर जी जैसे जैसे लाला की छींची जैसे बोलते हैं उसे दही हल्दी मिलाकर इस रूप में किया जाता है, ऐसे लोग उसको लाभान्वित होते हैं, वो भी एक परंपरा मंदिर में मनाई जाती है। बड़े ही उल्लास का दृश्य होता है, दर्शक एक दूसरे को आपस में बधाई दे रहे होते हैं, खुशियाँ मना रहे होते हैं, जिसके हाथ में जो लगता है वो उसे देने की कोशिश करते हैं कि आज हमारे लिए बहुत ही उत्सव का दिन है। तो एक अलग ही उत्साह का माहौल देखने को मिलता है नंद महोत्सव। खिलौने हैं, वस्त्र हैं, मैंने आपको बताया आभूषण हैं, प्रसाद है, सब लुटाते हैं।
1: श्रोताओं, जैसा कि आज नंद महोत्सव को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मंदिर श्री द्वारकाधीश में मनाया जा रहा है और ये यहाँ की अपनी विशेष परंपरा है। श्रोताओं तक ये जानकारी पहुँचाने के लिए और मंदिर की इन विशेष परंपराओं के बारे में बताने के लिए धन्यवाद।
0: धन्यवाद सभी को और आप बड़े आनंद से मनाएं इस कार्यक्रम को और अपने घरों में भी उत्साह का माहौल रखें।

0: आज 5 सितंबर को हर वर्ष हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। ये दिवस हमारे उन शिक्षकों के लिए समर्पित है जो कि हमारे समाज में ज्ञान की राह दिखाते हैं, अज्ञान के अंधेरे को दूर कर हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में शिक्षक की किसी ना किसी रूप में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारे साथ एक ऐसे ही शिक्षक मौजूद हैं, निश्चित रूप से वो अपने विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी हैं। तो आज इस महत्वपूर्ण दिवस को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर अखिलेश यादव जी, जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय इंटर कॉलेज सोनई मथुरा में कार्यरत हैं। आज हम उनसे बात करते हैं। सर, आज शिक्षक दिवस की आपको हार्दिक बधाई और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
1: धन्यवाद जितेंद्र जी।
0: हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये दिवस क्यों मनाते हैं और इसका क्या उद्देश्य है।
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार। शिक्षक दिवस मनाने के पीछे यह तो गुरु का सम्मान हमेशा से हमारे समाज में रहा है, लेकिन यहाँ एक विशेष कारण भी है। 5 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि हमारे राष्ट्रपति श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस भी था। तो लोग उनके पास गए कि आपका हम जन्मदिन मनाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा मेरा जन्मदिन नहीं, सभी शिक्षकों का जन्मदिन मनाएं शिक्षक दिवस के रूप में। तभी से हमारे यहाँ 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। असल में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो मानना था, सभी का ही मानना है कि शिक्षक की एक समाज के बदलाव के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, और वो बदलाव युवाओं के साथ आता है। शिक्षक का एक डायरेक्ट संबंध माता पिता की तरह अपने विद्यार्थियों से भी होता है। विद्यार्थी क्लास में बैठकर केवल पाठ नहीं सीखता है, बल्कि शिक्षक के व्यवहार से, अनुशासन, विचारों और जीवन मूल्यों से भी बहुत कुछ ग्रहण करता है। बस यही एक कि खुद अपने आप में ढाला हुआ हो और शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में एक जो संबंध हो, वो बहुत ही तत्व का विषय है। इसके महत्व को कम नहीं आंका जा सकता। आज शिक्षा का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। स्मार्ट क्लासेस, इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, डिजिटल संसाधनों से ज्ञान प्राप्त करना अधिक आसान हो गया है। फिर भी एक तत्व का महत्व कम नहीं हुआ, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का जो मानवीय रिलेशन है। क्योंकि हम अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बनाने से पहले वो एक अच्छा नागरिक बने। और मशीन में और व्यक्ति में यही अंतर है। मशीनें शिक्षक की जगह नहीं ले सकती, वो उनमें मानवीय संवेदनाएं, मानवीय गुण, निर्णय लेने की क्षमता, तार्किक क्षमता, इसको शिक्षक के माध्यम से ही विद्यार्थियों में विकसित होती है।
0: आज वर्तमान समय की बात करें तो इस बदलते हुए समय में एक शिक्षक और विद्यार्थी के संबंध के बीच क्या बदलाव आए हैं?
1: देखिए, शिक्षक और विद्यार्थी का पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि शिक्षक की भूमिका क्या है विद्यार्थी के जीवन में। शिक्षक विद्यार्थी के लिए केवल मार्गदर्शक, प्रेरक और कई बार ऐसे अभिभावक की भूमिका निभाता है, जो उसकी क्षमताओं को पहचान कर उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि शिक्षक के टच में बहुत सारे बच्चे आते हैं, लेकिन फिर भी टीचर, प्रत्येक विद्यार्थी की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। कोई पढ़ाई की ओर आकर्षित होता है, कोई खेल में, कोई कला में, कोई तकनीक में, कोई नेतृत्व करने में, यानी अलग अलग तरीके के विद्यार्थी उसके टच में आते हैं। और संवेदनशील शिक्षक विद्यार्थियों की तुलना दूसरे से नहीं करता, बल्कि उनके अंदर जो गुण है, उनकी जो प्रतिभा है, उसको पहचान कर विकसित करने के लिए उन्हें मार्गदर्शित करता है। विद्यार्थी शिक्षक का सम्मान करते हैं उनके भय की वजह से नहीं, सीखने की इच्छा और संवाद से। और वर्तमान समय में जहाँ बहुत सारी चुनौतियां सामने खड़ी हो रही हैं, वहां एक सबसे बड़ी कमजोरी है कि संवाद खत्म हो रहा है, चाहे वो स्टूडेंट टीचर के बीच में हो या माता पिता और बच्चों के बीच में हो। देखिए, बहुत सारी चीजें बच्चे अपने माता पिता से भी नहीं सीख पाते, जिन्हें अपने शिक्षक से सीखते हैं। जल्दी से उन्हें पूछने का मौका मिलता है, और एक अच्छा शिक्षक वही है जो अपने विद्यार्थियों को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ पूछने की स्वतंत्रता दे। पूछने से ही वास्तविक सीखने की शुरुआत होती है, और वो है संवाद। विद्यार्थी और शिक्षक के संबंध की सबसे मजबूत कड़ी संवाद है। वर्तमान समय में ये चीज खत्म हो रही है, क्योंकि मोबाइल हाथ में आ गया, दुनिया भर का ज्ञान उनके पास है, चाहे उनको उसकी आवश्यकता है या नहीं है। इंटरनेट जानकारी दे सकता है, दिशा नहीं। सर्च इंजन उत्तर दे सकता है, लेकिन प्रत्येक उत्तर का सही अर्थ समझने के लिए विवेक आवश्यक है, और यही शिक्षक की भूमिका

0: महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि लोगों को लगता है वर्तमान समय में इतने गैजेट्स हैं, इतना सब कुछ है, तो टीचर की भूमिका नगण्य महसूस करने लगते हैं। बल्कि शिक्षक विद्यार्थी को सिखाता है कि उपलब्ध जानकारी में से सही, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी का चयन कैसे करें। शिक्षक अनुशासन के साथ साथ बच्चों में संस्कार पैदा करता है। माता पिता बच्चों को संस्कार देते हैं, लेकिन उनको जीवन में ढालने का काम शिक्षक ही उन्हें टोक कर, गलती पर उनको समझा के, डांट के, प्यार से, भय दिखा के, इस तरीके से शिक्षक उनमें पढ़ाई के प्रति रुचि तो पैदा करता ही है, उसमें उनके संस्कार और अनुशासन को बनाए रखने की भी रुचि पैदा करता है।
1: एक शिक्षक के सामने अपने शिक्षण कार्य के दौरान सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है?
0: देखिए, एक शिक्षक के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो ये होती है कि विद्यार्थियों का स्तर, क्योंकि हर शिक्षक जिस ग्रेड का बच्चा है, जिस क्लास में पढ़ा रहा है, मान लीजिए 9th क्लास में पढ़ा रहा है, तो उसका सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि बच्चे का स्तर पहले से ही कक्षा 9 के स्तर का हो, तो उसकी लाइबिलिटी होती है कि कोर्स पूरा कराने के साथ साथ उस बच्चे को उस स्तर पर लाना। और
1: जी
0: ये स्तर केवल पढ़ाई में नहीं, सामाजिक अभिरुचि में भी, शैक्षिक गुणवत्ता में भी, टेक्नोलॉजी के यूज में भी, और भविष्य को लेके उसका आउटलुक क्या है बच्चे का, इसको जानना बहुत जरूरी है। और शिक्षण कार्य तभी ठीक तरीके से चल पाता है जब टीचर इन सब चीजों को अपने दिमाग में रखता है और विद्यार्थी प्रतिदिन विद्यालय आए, ये सबसे पहली जरूरत होती है। अभिभावकों से विद्यार्थी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कम से कम महीने में एक बार शिक्षक उनको विद्यालय में बुलाकर उनसे बातचीत हो,
1: जी
0: इसीलिए पीटीएम की जाती है विद्यालयों में। तो बहुत सारी जो चुनौतियां टीचर्स के सामने हैं, या आजकल कहिए कि टीचर से ज्यादा चुनौतियां पेरेंट्स के सामने हैं, अपने
1: जी
0: बच्चों को कैसे समझाएं, कैसा व्यवहार कर रहा है। उन्हें तो केवल लगता है कि डंडा उठा लो, डंडे से मारो, या फिर आज के बच्चों में उतना दम ही नहीं है, यानी वो बहुत जल्दी चीजों को फील करता है। छोटे छोटे बच्चों में देखा है उनको टेंशन हो रहा है, जरा सा डांट दिया तो बच्चे बहुत जल्दी ही उल्टी सीधे एक्शन लेने लगते हैं, खुद को चोट पहुंचा लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है टीचर के सामने होता है कि जहां क्लास में 50 बच्चे, 60 बच्चे, हर बच्चे को उसकी योग्यता पहचान के उस दिशा में उसको प्रेरित करना।
1: क्या आपका मानना यह है कि एक शिक्षक और बच्चों के बीच थोड़ा जो मैत्रीपूर्ण व्यवहार है वो भी होना आवश्यक है?
0: बहुत जरूरी है आज के बदलते हुए युग में, जहां नई नई चीजें सामने आ रही हैं, और उससे भी बड़ी बात कि विद्यार्थी एक एज ग्रुप के बाद, मान लीजिए 12-13 साल का होता है, तो उसमें काफी सारे चेंजेस आते हैं, शारीरिक चेंजेस भी होते हैं। समाज में चारों तरफ जिस बच्चे को छोटा छोटा कह रहे थे, अचानक घर वाले कहने लगते अब तुम बड़े हो गए, तुम बड़े हो गए ये भी नहीं कर सकते, तुम बड़े हो गए ये भी नहीं कर सकते। और फिर जब वो बड़े वाले काम करने लगता है तो उससे हम टोकते हैं कि अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए हो कि ये सारी चीजों के बारे में सोच रहे हो। तो कहीं जो एक बैरियर है उसकी लिमिट बच्चे की एज के अकॉर्डिंग, और इन सबको जानना और उनको बताना ये बहुत जरूरी होता है। और साथ ही जरूरी है बच्चे में सकारात्मक परिवर्तन लाना, और इसके लिए विद्यार्थी का शिक्षक पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। तो ये सकारात्मक परिवर्तन विद्यालय को सार्थक रूप से अगर चलाया जाए, सारी चीजों को समाहित किया जाए, तो अपने आप उसमें विकसित होंगे।
1: आज शिक्षक दिवस के अवसर पर आपने हमारे श्रोताओं के साथ ये महत्वपूर्ण चर्चा की। सभी विद्यार्थियों को और शिक्षकों को भी अपने प्रेरणादायक विचारों से अवगत कराया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर एक शिक्षक के रूप में सभी विद्यार्थियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं विद्यार्थियों से यही कहूंगा, एक ऐसे वातावरण का निर्माण करने का संकल्प लें जहां शिक्षक को सम्मान मिले, विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त हो, दोनों के बीच में विश्वास और संवाद की मजबूत नींव स्थापित हो। क्योंकि रिश्ता शिक्षक और विद्यार्थी का एक पिता पुत्र से भी ज्यादा मजबूत होता है। अगर विद्यार्थी वास्तविक रूप में अपनी जिज्ञासाएं, अपनी परेशानियां टीचर के साथ शेयर करता है, उनको देखता है सही मायने से, तो विद्यालय में एक शिक्षक नहीं, सभी शिक्षक, प्रधानाचार्य, सभी मिलकर उसकी समस्याओं के लिए ही हैं, बशर्ते कि विद्यार्थी को भी अपना पूर्ण एफर्ट विद्यालय में देना होगा। और मैं साथ ही साथ विद्यार्थियों को ही नहीं, मैं अपने सभी शिक्षक साथियों से भी कहूंगा कि विद्यार्थी को केवल बाह्य रूप से नहीं, उसके मन को समझने की कोशिश करें, उसके मन की भावनाओं को समझते हुए उसको सही दिशा में जाने के लिए मार्गदर्शित करें। इसी के साथ सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।

और श्रोताओं, इसी के साथ अब एक नज़र आज की कुछ खास खबरों पर डाल लेते हैं। आज की खास खबरों में है कि मथुरा में जन्माष्टमी का उल्लास चरम पर है। अब वहीं कान्हा की क्रीड़ा स्थली नंदगांव में भी लाला के जन्म के उत्सव की पूरी तैयारी है। नंदगांव में आज जन्माष्टमी मनाई जाएगी, जिसके लिए नंदीश्वर पहाड़ी स्थित नंद भवन को दुल्हन की तरह सजाया गया है। मंदिर परिसर रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से जगमगा रहा है। जन्म के पहले नंद बाबा मंदिर के विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। रात करीब 8:30 बजे भजन संध्या शुरू होगी। और इसी के साथ एक और खबर है, कान्हा के जन्म पर पूरा वृंदावन भक्ति की रंग में रंगा हुआ नजर आया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मंदिरों से लेकर गलियों तक श्रद्धालुओं का रेला नजर आया, मानो आस्था की सारी धारा बह निकली हो। और बात कर लें आज के दिन विशेष की, तो आज की तिथि 5 सितंबर इतिहास के झरोखों से ये कहती है कि आज शिक्षक दिवस है। और आज ही के दिन सन 1944 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने अपनी स्कॉटलैंड यात्रा शुरू की थी। और आज ही के दिन सन 1991 में नेल्सन मंडेला अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। और आज ही के दिन सन 1997 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने सन 2004 में होने वाले ग्रीष्म ओलंपिक खेलों का आयोजन एथेंस में कराने का निश्चय किया था। और श्रोताओं, इसी के साथ हम आपसे एक और अपील करना चाहेंगे कि पॉलीथीन का उपयोग नहीं करें, क्योंकि पॉलीथीन हमारे लिए काफ़ी हानिकारक है। ये हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। ये कभी नष्ट नहीं होती, जिससे कि हमारी मिट्टी की उर्वरता क्षमता भी कम हो जाती है। और सबसे इसका जो महत्वपूर्ण नुकसान, जो हम सीधे तौर पर देखते हैं, कि जब हम पॉलीथीन का उपयोग करते हैं और उपयोग करने के बाद उसको इधर उधर फेंक देते हैं, तो ये हमारे नालों में, नालियों में जाकर उनको चौक कर देती है।

जिससे कि बारिश में जल भराव की समस्या हमारे सामने आती है। ये हर तरह से हमारे लिए नुकसानदायक है, और लेकिन तब भी देख रहे हैं कि लोग धड़ल्ले से पॉलीथीन का उपयोग कर रहे हैं। लोग बाज़ार जाते हैं तो पॉलीथीन में सामान लेकर आते हैं। मित्रों, एक समय था जब लोग अपने घर से निकलते थे तो कपड़े का या कोई जूट का थैला हाथ में होता था और उसमें सामान लेकर आते थे, लेकिन आज वो आदत हम भूल चुके हैं। हम पहले उस आदत को हमें पहले की अपनी उस आदत को अमल में लाना होगा। आज हम जाते हैं तो दुकानदार से सीधे हम पॉलीथीन की मांग करते हैं। इसलिए हमको भी जागरूक होना होगा, और साथ ही में जो हमारे दुकानदार भाई हैं उनको भी कुछ अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, और अपने ग्राहकों को भी वो प्रेरित करें कि आप पॉलीथीन का उपयोग नहीं करें, इससे पर्यावरण को नुकसान होता है। इसलिए धीरे धीरे जब हम उस अपनी पुरानी आदत पे आ जाएंगे तो हम काफ़ी हद तक अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे, और काफ़ी सारी समस्याओं से जो इसकी वजह से होती हैं हमें स्वतः ही उनसे निजात मिल जाएगी। तो साथियों, आज कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, फिर किसी नई जानकारी, नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज दर्पण। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे जितेंद्र सिंह और संयोजन ओपी सिंह ने किया। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कृष्ण लीलाओं पर आधारित रूपक विशेष कार्यक्रम। लेखक एवं प्रस्तुति है डॉक्टर सत्यदेव आजाद और हरिबाबू कौशिक की।
1: जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, अत्याचार और अनाचार बढ़ जाते हैं, तब तब हर युग में भगवान अवतरित होते हैं। राजा कंस का अत्याचार पृथ्वी पर अधिक बढ़ जाने के कारण समस्त प्रजा त्राहि त्राहि करने लगी थी। ऋषि महर्षियों के मांगलिक कार्यों में व्यवधान पड़ रहा था। तभी उन समस्त अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए भाद्रपद कृष्णाष्टमी की मध्यरात्रि में योगिराज भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कंस के कारागार में माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया।

0: है देवकी को आठवां पुत्र मेरो काल
1: जे,
0: नहीं,
1: जे, नहीं। जे कैसी आकाशवाणी है कंसराज।
2: अरे राजा कंस, तू या देवकी की विवाह में का फूलो फूलो ढूंढ रहे हो है, या तो आठवां बालक तेरो काल है काल।
0: देवकी, ओ देवकी, तेरो बेटा और मेरो काल। मैं आज देवकी को बध करूंगा, बस देव बीच में से एक पल्लन को हट जा।
3: भैया भैया, मेरे केसन को तो छोड़ो भैया, जे तुम कहाँ कर रहे हो, मेरे केसन को ऐसे मत खींचो भैया, ऐसा मत करो भैया।
0: केस, अरे मैं भाई तेरी खाल खेच लंगो, कुल की हत्यारी, कुल खातिनी।
3: स्वामी स्वामी, मेरी रक्षा करो स्वामी, मैं अबला नारी हूँ और ये तो पराक्रमी योद्धा है स्वामी।
1: राजा कंस, मेरी मेरी एक विनय सुन लो, ता पीछे जो तुम्हारी इच्छा हो करियो,

0: वसुदेव।
1: नभवाणी को कथन है कि देवकी को आठवां बेटा तुम्हारो काल बने को। तुम्हें जाके आठवें बेटा दी भय है ना? देवकी ते तो कछु भय ना है। मैं तुम्हें जे वचन दऊं हूं कि आठवां पुत्र होते ही मैं वाहे तुम्हारे चरणन में लाए के डार दूंगो। कंसराज मैं लाए के तुम्हारे चरणन में डाल दूंगो।
2: देवकी देवकी बालक को जन्म है गयो है, बालक को जन्म है गयो है। देखो देखो कितना सुंदर है ये, कितना सुंदर बालक है।
1: कैसी आभा है बुक पे।
3: हाँ स्वामी, साँच माच कैसो अनंत प्रकाश है या के मुख पे। स्वामी या की रक्षा करो, स्वामी कैसे या की रक्षा करो।
1: कैसो आश्चर्य है, कारागृह की द्वार अपने आप खुल गए हैं। द्वारपाल गहरी नींद में सोए रहे हैं। मैं याय लेके गोकुल निकल जाऊं। देवकी मैं गोकुल निकल जाऊं।
3: स्वामी जमुना में तो जा समय बाढ़ बहुत जोर से आ रही होगी। स्वामी कहूं आप बह गई तो कहां होएगो। स्वामी
1: भगवान सर रक्षा करेंगे। लाओ जल्दी लाओ, जा समय विचार करबे को वक्त नहीं है। लाओ बालक को मुंह दे।

कथा है कि नंद यशोदा ने भगवान से यही वर मांगा था कि वे भी आपकी बाल लीलाओं के दर्शन करें और मेरे यहां जन्म लें। इसी मनोवांछा को पूर्ण करने के लिए कारागार में जन्म लेते ही समस्त बंधन खुल गए। वासुदेव उसी रात के गहन अंधकार में बालक कृष्ण को लेकर उफनती हुई यमुना में से होकर गोकुल जा पहुंचे और शिशु कृष्ण को नंद यशोदा को दे आए। बधाइयां गाई जाने लगीं, शहनाइयां बजने लगीं।

मंगल कलश लिए ब्रज नारी नंद भवन को धाई सबको कुशल मनावत गोकुल प्रगटे कृष्ण कन्हाई।

0: बालक कृष्ण के जन्म पर बधाइयों के स्वर सुनकर देवलोक से समस्त देवतागण ब्रज में पधारे। कैलाश छोड़कर स्वयं महादेव भी लाला कन्हैया के दर्शन करने ब्रज भूमि पर आए और मैया यशोदा से प्रार्थना करने लगे।
1: अलग खोल दे पलक, अरे यशोदा मैया, यशोदा मैया ने बाहर निकल के तो आ तेरे द्वारे पे एक भिखारी ठाड़ो है मैया। मैया मैं आपको प्रणाम करूं हूँ। अलग खोल दे पलक,
2: अलग मैं तो।
1: नहीं मैया अलग क्यों जाओ, मेरे समीप आओ मैया।
2: अच्छा
1: धन्य है मैया, आज आपके दर्शन करके मैं कृत कृत्य है गए।
2: अच्छा बाबा।
1: हाँ मैया,
2: बड़ी कृपा करी महाराज आपने दर्शन दिए।
1: यशोदा मैया, तुम्हें तो मैं ये बताऊं कि मैं यहाँ आपके द्वारे पर काहे के लिए आयो हूँ।
2: काहे के लिए आये महाराज?
1: यशोदा मैया, मैंने सुनी है कि आपके घर में पुत्र को जन्म भयो है।
2: हाँ महाराज, भयो तो है, छोटो सो ही ग्वालिया।
1: ग्वालिया क्यों ना कहोगी मैया। तो यशोदा मैया, जब मैंने ये सुनी कि आपके घर में बालक को जन्म भयो है और आपके घर में बड़े ही आनंद उत्सव और बधाई है रही, और मैया मैंने यहूँ सुनी कि आपके द्वार पर बड़े बड़े याचकन की यहाँ भीड़ की भीड़ लग रही है, और जो कोई याचक आपके द्वार पर आके यहाँ जा वस्तु की इच्छा कर रहे हो है, वह के लिए आप वही वस्तु प्रदान करके वह याचक को यहाँ से प्रसन्न करके आप भेज रही हो।
2: हाँ महाराज, आप साधु महात्मा की कृपा पे सब आनंद है।
1: क्यों नहीं होगो मैया, आपके घर में कौन सी वस्तु की कमी है? आपके घर में ऐसे बालक ने जन्म लियो है कि वह के संग में अष्ट सिद्धि नवनिधि सब संग में ही चली आई।
2: तो महाराज आप कैसे पधारे हो, जो कछु आप आज्ञा करो सो आपकी सेवा करूँ।
1: यशोदा मैया, मैं हूँ तुम्हारे द्वारे पे एक भिखारी आयो हूँ, तो मैं हूँ आपके द्वार पे कछु

0: याचना करवे के लिए आया हूँ।
1: आज्ञा करो महाराज।
0: यशोदा मैया एक बात मेरी पहले सुन ले।
1: हाँ महाराज सुना।
0: वो ये है मैया कि अब तक जो भिखारी तुम्हारे द्वार पे आए मैं वैसो नहीं।
1: हाँ वो तो मुझे दिख रही है महाराज आपके दर्शन करके आपको भेष देख के।
0: हाँ मैया वैसे दर्शन करवे तो नहीं।
1: अच्छा
0: मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं तो एक ऐसी वस्तु तुम पे थे मांगवे आया हूँ। मैं ऐसो भिखारी हूँ कि अब तक तुम पे थे काऊ ने ऐसी वस्तु न मांगी होगी।
1: अच्छा महाराज।
0: हाँ
1: तो ऐसी कौन सी वस्तु है आप आज्ञा करो महाराज।
0: देखो यशोदा मैया अब तक जो तुम्हारे द्वार पे भिखारी आए काहू ने अन्न मांगे हो काहू ने वस्त्र मांगे हो काहू ने आभूषण मांगे काहू ने रत्न मांगे तो सब अपनी मनिच्छित वस्तु पाए के यहाँ से प्रसन्न है कि सब चले गए। परंतु मैया मैं तो एक ऐसी वस्तु तुम पे ते मांगवे आयो हूँ कि जो तुम्हें कछु नहीं देनो पड़ेगा और वो वस्तु मोकू प्राप्त है गई तो मेरो वाते परम कल्याण है जाए।
1: महाराज ये तो बड़ी सुंदर बात है मोकु कछु देनो न पड़े और आपकी इच्छा पूर्ति है जाए।
0: क्यों ना होगा मैया ऐसा। तो यशोदा मैया मैं मांग लू।
1: हाँ महाराज।
0: तो मैया मैं यही के लिए इतनी दूर सो चले आ रहे हूँ कि मोकू आप कोई वस्तु न देके मोकू तो केवल वह अपने श्याम सुंदर के एक दर्शन करा दो मैया।
1: लाला के दर्शन।
0: हाँ मैया वह लाला के दर्शन।
1: महाराज जी आप कहा कह रहे हो आप साधु महात्मा मेरो छोटो सो लाला वहा के आप कहा दर्शन करोगे।
0: छोटो नहीं है मैया देखवे में ही छोटो है पर गुड़न को मोटो है।
1: आप तो संत महात्मा हो बापू आशीर्वाद दे महाराज जाते सदा आनंद में रहे आप वाके कहा दर्शन करोगे।
0: यशोदा मैया मैं तुम्हारे लाला के दर्शन करवे के लिए ही आया हूँ।
1: अच्छा महाराज।
0: हाँ मैया आप मेरी प्रार्थना सुने मैया।

0: मैया महाराज
1: धन्य तो वा घड़ी को है,
0: धन्य वा मुहूर्त को है, धन्य वा पल को है, धन्य वा क्षण को है, और धन्यात धन्य मैया आपके लिए है जो कि ऐसा सुंदर बालक आपने जायो है। या कि मैया नेक मोह दर्शन करा दी।
2: कैसा सुंदर लाला जायो महाराज, आपने कब देख लियो?
0: है मैया ऐसो सुंदर लाला जायो है कि या के समान सुंदर संसार में कोई और है ही नहीं।
2: अच्छा

0: महाराज मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करूं कि आपको अपने लाला के दर्शन न करवाऊंगा।
1: क्यों नहीं कराओगी मैया, कछु कारण होगा?
0: कारण महाराज वो को कह दे मैं संकोच लगे आप भरो।

0: अनजान।
1: काहे को संकोच मैया न कहो ना।
0: महाराज आपको वेश आपको श्रृंगार बड़ो ही अशुभ है, जाकू देख के डर लगे है। बड़े बड़े सांप बीछू आप पे लटक रहे हैं, उन्हें देख के मुझे बूढ़ी है डर लग रहा है। तो मेरे नेक सो सो लाला महाराज,
1: तुम ही डर रही हो, तुम्हारो लाला मुख देख के नहीं डरेगा ना।
0: नहीं महाराज कैसी उल्टी बात कर रहे हो, मैं डर रही हूँ और लाला ना डर पे।
1: मैया सुनो मैया,
0: बाबा
1: चाहे मोकू बारह बारह 24 वर्ष यहाँ धूली रमानी आ जाए, पर तेरे द्वारे पर अब तेरे लाला के दर्शन करके ही जाऊंगो।
0: अरे बाबा तू 24 और 24 कितने हो, इतने वर्ष धूनी रमा दे तो दर्शन ना करवाऊ, अब तू हट कर रहो तो ऐसे ही से। लाला लाला कन्हैया, लाला बेटा, अरे काहे को लाला, अरे क्यों रोबा बेटा, लुरु लुरु लुरु लुरु लुरु रोबना बेटा लाला। हाय कह कर गो बाबा जी लाला पे। अरे सखियो, अरे बहना देख तो सही लाला को काहे गयो, न तो सोवे न दूध पीवे, बहना देख तो सही रोवे ही रोवे। बेटा चुप रह जा, लुरु लुरु लुरु चुप रह जा। देख तो सखी न जाने कहा है वो।
2: अरे मैया इनको गाँव की नजर तो ना लग गई।
0: नजर हाँ। हाय नजर कौन की लग गई यहाँ
2: तो तेरी नजर तो ना लग गई।
0: अरे चुप रह दारी, तो मैया बापन की नजर लगती होगी।
2: मैया बापन की नजर तो पूरी हो जो पत्थर पे फोड़ दे।
0: अरे कछु उपाय बता तू, चुप ना है रो।
2: अरे मैया यार कोई आयो?
0: और तो कोई ना आयो सखी, एक बाबा जी आयो।

0: सखी एक बाबा जी आयो और तो कोई ना आयो। नाम नाम की सोते लागी मैंने खीर खाई वो अखबार नाम की
1: कछु तो कहते हो।
0: हाँ अलग अलग कर तो डोल लो अलग ही नाम हो गो बाको।
1: अच्छा मैया मैं बोल के लाऊ।
0: हाँ देख
1: जल्दी लग गई है
0: जल्दी देखा भाई तो यही बाहर ही पहुंचे हो।
1: अरे ओ लखवावा अरे ओ लखवावा चल रे योगी नंद भवन में यशोदा माई बुलावे वाकी लाल को नजर लगी है तू पे राई नोन करवावे। अरे बाबा यशोदा मैया की लाला को नजर लग गई है।
2: तो नजर लग गई है तो मैं कहा करूं।
1: देखो बाबा मैया आपको बुला रही है।
2: मैया बुला रही है?
1: हाँ
2: वो को काहे को बुला रही है मैया?
1: तुम पे राई नोन करवावेगी।
2: राई नोन करावेगी?
1: हाँ
2: ना ना ना मैं नहीं आऊंगो मैया थे। अब ये कह दीजिए को बाबा की तो समाधि लग गई अब नहीं आवेगा बाबा।
1: ना है बाबा तो को दर्शन करवा देगी।
2: दर्शन करा देगी?
1: हाँ
2: तो पहले मो को दर्शन क्यों ना कराई मैया ने?
1: अब करवा देगी।
2: अच्छा पहले नहीं कराई अब करा देगी?
1: हाँ
2: कोई नई बात भई होगी?
1: हाँ
2: क्यों कहा बात है गई?
1: नजर लग गई है बाकी लाला को।
2: लाला को नजर लग गई है?
1: हाँ
2: अच्छा तो फिर ठीक है तो मो को चलना ही पड़ेगा अब मैया अवश्य दर्शन करावेगी।
1: हाँ
3: उन दिनों यमुना का जल भयंकर काली नाग के विष से अत्यंत प्रदूषित हो चला था। नाग की एक फुफकार से दूर दूर तक का जल प्रभावित हो जाता था। पशु पक्षी और नर नारी सभी उस नाग से दुखी थे। यमुना के जल का प्रयोग भी कोई नहीं कर सकता था। श्री कृष्ण ने ऐसे भयंकर नाग से मुक्त करके समस्त ब्रजवासियों के कष्टों का निवारण किया।

0: आयो?
1: अरे बालक, तू कौन है और यहाँ काय को आयो है? जो मेरे पति देव जग दे तो कु एक फुसकार के मारे भस्म कर देंगे।
2: अरे बाबरी,

0: तू मुझे नहीं जानता है, मैं सब सर्पों का राजा काली नाग हूँ। तैने यह अच्छा नहीं किया जो कि मेरी पूछ खुदावा। ले
1: अर्जुन गर्भ गोपाल गर्भ भरे सुन अहि बचन, तीनी बपुस विशाल विकल भयो अहि राज तब, जब अहि श्याम तन अति विशालो, टूटन लयो अंग तब तारो। शरण
2: शरण मरा ये क्या ये क्या, इस बालक ने तो मेरा सारा शरीर तोड़ दिया। मरा दीनबंधु, हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, आप मुझे क्षमा करें, मैंने आपको नहीं पहचाना। आप मुझे क्षमा करें, मैं आपकी शरण हूँ। हे भगवान, आप मुझे जीव दान दें और मेरे लायक कोई सेवा हो तो आप अवश्य ही बताएं, मैं आपकी यथा योग्य सेवा करूँगा।
3: अरे भैया, तू 1 करोड़ कमल के फूल अपनी पीठ पे लाद ले चल।
0: जैसी आज्ञा दीनानाथ। 1 करोड़ कमल के फूल क्या, मैं उस राजा कंस को 2 करोड़ कमल के फूल पहुंचाऊंगा और भली भांत शिक्षा भी दूंगा।
3: अच्छा,
0: मेरी नागिनों, भगवान की सेवा के लिए 2 करोड़ कमल के फूल तोड़ के लाओ।
4: जो आज्ञा महाराज।

0: धीरे धीरे बालक कृष्ण बड़े होने लगे। ब्रज के गांव गांव में उनका यश सर्वत्र फैलने लगा। वे नंद की गऊएं चराते, राक्षसों का वध करते, माखन लीला, चीरहरण लीला, अनेक लीलाओं से ब्रजवासियों को आनंदित करते। और एक दिन अत्यंत भोले भाव से मैया यशोदा से बोले कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैया मेरा ब्याह करा दी।
1: अरे मैया,
2: हाँ बेटा,
1: मैं तोते एक मीठी सी बात कहूँ। बात
2: कहा, मीठी सी बात कह रहे हो?
1: हाँ मैया।
2: बेटा आज कौन सी नई बात याद करके लायो है?
1: अरे मैया, पहले गोदी में ले ले जब कहूंगो।
2: अच्छा, पहले गोदी में ले लू जब बात कहेगो।
1: हाँ
2: अच्छो, ला बेटा गोदी में आ जा, अब तो कह दे।
1: कहूँ मैया, मैया री
2: लाला रे,
1: आज तू
2: आज मैं।
1: अरे मैया शर्म लगे
2: है दारी के। कन्हैया देख बेटा, मैया बापनते कोई बात कहवे में संकोच नहीं कियो करे है। बेटा जो बात हो सो तू मोसो कह दे।
1: मैया री
2: लाला रे,
1: आज तू
2: आज मैं,
1: मेरो
2: तेरो
1: ब्याह करवा दे।
2: है दारी के, कितना जोर लगायो याब नेक सी बात के लिए। बेटा कहा तेरो ब्याह करा दूं?
1: हाँ मैया मेरा ब्याह करवा दे।
2: कैसी बहुले को बेटा तू, यो तो बता कन्हैया। कन्हैया दारी के तेरो विवाह तो करा दो, परंतु बेटा तू या माखन मिश्री की चोरी करबो छोड़ दे तो तेरो कल ही ब्याह करा दूंगी।

0: कन्हैया देख बेटा, मैं तेरो विवाह तो करा दूंगी, परंतु तू या माखन की चोरी है कर वो छोड़ दे तो बेटा तेरो कल ही विवाह करा दूंगी।
1: मैया जब ते

0: या सगाई की सुनिए ना, जब दे तो चोरी छोड़ देनी।
1: अरे दारी के क्यों झूठ बोल रहे हो है, अभी तेने चोरी कहाँ छोड़ दी।
0: नहीं मैया, तुम मेरा ब्याह करवाए।
1: अच्छा बेटा यो बता कन्हैया, तू को कैसी बहू चाहिए, तू बता दे वैसी ही मंगाऊंगी।
0: मैया तू झूठ बोले।
1: ना बेटा तुसो झूठ नहीं बोलू हूँ मैं, तू बताए जैसी तो को बहू चाहिए वैसी ही बहू लाऊंगी।
0: झूठ बोले मैया।

0: भैया, मैं अपने बलदाऊ भैया को नहीं ले जाऊंगा।
1: कहा कही कन्हैया, अपने बलदाऊ भैया बारात में नहीं ले
0: जाऊंगा मैया।
1: अरे दारी के भैया बिना बारात कैसी।
0: मैया बलदाऊ दादा मोते कहो मेल ना राखे।
1: कहा कह रहे हो तोते मेल नहीं राखे तेरे।
0: हाँ
1: भैया बेटा ये कोई बात नहीं है, परंतु बारात में तो तुमको ले जानो ही पड़ेगा।

0: सभी राक्षसों का वध करने के उपरांत श्री कृष्ण बलदाऊ के साथ स्वयं मथुरा पधारे और यहां कंस का भी संहार किया। यहां कृष्ण को ब्रज गोपांगनाओं की बहुत याद आती थी, इसलिए उन्होंने अपने सखा उद्धव को ब्रज में भेजा।
1: आहा, जैसे जैसे मेरो रथ ब्रज की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ की राग भरी प्रकृति और अनुराग के रंग में रंगी शीतल मंद पवन मेरे या ज्ञान की गरमा को उड़ाए के लजाती सी प्रतीत है रही है। या प्रदेश के मोहक वातावरण को यह कैसो विचित्र अनुभव है।
2: उद्धव जी, हमारा प्रणाम है।
3: प्रणाम ब्रजदेवी, और प्रणाम।
4: अजी, हमको कहाँ लिख के भेजो है?
5: हे उद्धव जी, श्याम सुंदर ने हमको कहाँ लिखो है?
6: उद्धव जी, श्याम सुंदर जी ने हमको कहाँ भेजो है?
7: उद्धव जी, श्याम सुंदर ने हमको कहाँ भेजा है?
1: देवी ब्रजांगनाओं, मथुराधीश ने सर्वप्रथम तो आपको पालागन लिखी है। उनको संदेश में आपको सुनाऊ हूँ, आप दत्त चित्त है के शांति पूर्वक श्रवण करो। ये पत्रिका श्री किशोरी जी को दी है और जो उन्होंने श्री मुखसों कछु बात कही है वो मैं आप सबको बताऊ हूँ।
4: अरे सखियो, अरे ओ ललता विशाखा सखी।
6: हाँ किशोरी जी।
4: देखो, श्री श्याम सुंदर ने पाती भेजी है, सो मैं आप सबको सुनाऊ हूँ।
6: सुनाओ सुना।

0: हे उत्तर जी, आपको निर्गुण ब्रह्म हमारे काऊ काम को ना है, हमें तो श्याम सुंदर से शीघ्र ही मिलाए दो।
1: उद्धव जी, अपने जा उपदेश को अपने संग रखो, हमें ना चाहिए तुम्हारा जी उपदेश। और सुनो, श्याम सुंदर को जीवात कह दीजो ब्रज में जाकर को ग्राहक ना है, मुझे तो ऐसा लगे तुम्हारा जी उपदेश श्याम सुंदर ने ना भेजो, बस कुब जाने भेजो है कुब जाने।
2: इन ब्रज गोपिन की प्रेममयी वाणी को सुन के मैं तो धन्य धन्य है गयो, कृत कृत है गयो, धन है ये ब्रज की गोपी।

0: भैया उद्धव आ गए हो, आ गए हो, आ आमुक ब्रज की कुछ लात सुनाए।
1: रहन दो, करुणामय और रसिकता तुमरी सब झूठी, जब ही लो नहीं लखी तब ही लो बांधी मुठी। मैं जान्यो ब्रज जाए के निर्दय तुम्हरो रूप, जे तुमको अवलम्ब ही तिनको मेलो कूप। कौन यह धर्म है पुन पुन कहे यो चलो जाए वृंदावन रहिए, प्रेम पुंज को प्रेम जाए गोपिन संग लहिए। और काम सब छोड़ के उन लोगन सुख दे, ना तर सब ही जात हैं डूबी सगरी ने, करोगे फिर कहा।
0: मैंने पहले ही तोते कही कि सूर श्याम या कारण पठवो है आवोगे संत। वास्तव में ब्रज में मैंने यही पाठशाला में पढ़वे के लिए भेजो, जा पाठशाला में मैं पढ़ो वही पाठशाला में मैंने तोकु पढ़ाओ। मैं यहाँ तोकु प्रेम पाठ पढ़ा दे तो, किंतु मैं गुरु तू चेला है जा तो वहाँ में मेरी तेरी रसगोष्ठी ना होती। या के लिए ब्रजदेवी इनसो ब्रजवासी इनसो प्रेम पाठ पढ़ाए के लिए मैंने तोकु ब्रज में भेजो है। उद्धव ये बात नहीं है, ब्रजवासी बल्लभ सदा, ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, तिन्हें ना नेक विसारे हो मोय नंद बाबा की आन।
2: मथुरा में रहते हुए भी समस्त गोप गोपांगनाएं भगवान श्री कृष्ण के अंतस्थल में रमी रहीं। श्री कृष्ण ब्रजवासियों के हैं और ब्रजवासी उनके।
3: अभी आप सुन रहे थे कृष्ण लीलाओं पर आधारित रूपक विशेष कार्यक्रम। लेखक और प्रस्तुत थी डॉक्टर सत्यदेव आजाद और हरिबाबू कौशिक की। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, आइए सुनते हैं एक ही कलाकार गुलाम अली की गाई गजल।

सुन रहे थे गुलाम अली खां साहब की गाई कुछ गजलें। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

अभी आपने सुना आशा भोसले और सुरेश वाडेकर का गाया हुआ ये गाना, फिल्म का नाम था सत्या। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म मुस्कान से। इस गीत को अपनी आवाज़ दी है उदित नारायण और अलका याग्निक ने।

सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में अभी आपने सुना ये गाना, फिल्म का नाम था जोड़ी नंबर वन। और आइए अब सुनते हैं अलका याग्निक और अभिजीत की आवाज़ में ये गीत, फिल्म है जुदाई।

अलका याग्निक और अभिजीत की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म जुदाई का ये गीत, और इसी के साथ ही हमारा आज का ये फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: of the National Award to Teachers, being organized by Ministry of Education, Government of India, in the gracious presence of Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, at Vigyan Bhavan, New Delhi. Our commentators are Shoaib Yar Khan in Hindi and Kaushik Roy in English.
1: ये आकाशवाणी है। अब हम आपको सुनवाते हैं नई दिल्ली के विज्ञान भवन से शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह का सजीव विवरण। विवरण दे रहे हैं शोएशियार खान हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में। आइए विज्ञान भवन चलें।
2: सभी श्रोताओं को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं शोएशियार खान और अंग्रेजी में आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मेरे साथ हैं कौशिक राय। आकाशवाणी के इस सीधे प्रसारण में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देश की राजधानी नई दिल्ली के विज्ञान भवन के भव्य प्लेनरी हॉल से आपके साथ सीधे जुड़े हुए हैं। अवसर है शिक्षक दिवस का और समारोह है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 का। ये वो अवसर है जब राष्ट्र उन शिक्षकों को सम्मानित करता है जिन्होंने अपने ज्ञान, समर्पण, नवाचार और सेवा भाव से विद्यार्थियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। आज भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश के 48 उत्कृष्ट स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस गरिमापूर्ण समारोह का आयोजन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय एवं कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस समय विज्ञान भवन का प्लेनरी हॉल देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए शिक्षकों की उपस्थिति से विशेष रूप से गौरवपूर्ण दिखाई दे रहा है। इन शिक्षकों के चेहरों पर उत्साह है, गर्व है, वर्षों की मेहनत के बाद मिले इस राष्ट्रीय सम्मान की खुशी है। आज यहां उपस्थित प्रत्येक शिक्षक अपने साथ अपने विद्यालय की एक कहानी लेकर आया है। किसी के साथ ग्रामीण भारत की कहानी है, किसी के साथ दूर दराज के क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाने की कहानी है, किसी ने विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित की है तो किसी ने तकनीक और नवाचार के माध्यम से शिक्षा को नई दिशा दी है। आज इन सब प्रयासों को राष्ट्र की ओर से सम्मान मिलने जा रहा है। कौशिक।
3: गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दिस एंशियंट मंत्र कैप्चर्ड द रिवरेंस दैट इंडिया हैज फॉर इट्स टीचर्स। ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल टीचर्स डे From the family of Akashvani and Prasar Bharati, we convey our best wishes to all the teachers of the country who are the builders of Viksit Bharat 2047. And as my colleague Shoaib Yar Khan mentioned that today we have 48 teachers who excel in their fields and who are building the next generation of India, the leaders of India's tomorrow, who will be guiding us towards Viksit Bharat at 2047. These teachers, as Shwez mentioned, come from far and distant places of India, but every one of them carry a success story. And it is indeed a great moment for all these teachers who will be receiving the National Teachers Award from the Honorable Rashtrapati Ji in just a short while from now. What a pride moment it is indeed for them. And yesterday, the Honorable Prime Minister also interacted with the teachers and he also took feedback from them about how today's children, especially in schools, are performing, and he also told them to pay attention to those students who spend more time on the screen. So screen time has to be reduced, and this has to

0: we channelize towards sports or other skilling activities. And as we know that Teachers' Day is celebrated on the 5th of September, which happens to be the birth anniversary of India's second president, the philosopher president of India, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, who was the president of India from 1962 to 1967. Dr. Radhakrishnan was an academic of repute, a philosopher, and he was also a statesman. Dr. Radhakrishnan was born on the 5th of September 1888 at Tiruthani of North Arcot district in erstwhile Madras presidency. His family hailed from Sarvepalli village in Nellore district of Andhra Pradesh, and he spent his early years in Tiruthani and Tirupati. Dr. Radhakrishnan was awarded scholarships throughout his academic life and joined the Voorhees College in Vellore for his high school education. And he graduated from the Madras University at the age of 16. Dr. Radhakrishnan studied philosophy and he wished to study mathematics also. Dr. Sarvepalli Radhakrishnan wrote his bachelor's degree thesis on the ethics of the Vedanta and its metaphysical presuppositions. Dr. Radhakrishnan became president of India. Some of his erstwhile students and friends requested him to allow them to celebrate his birthday. But he replied, instead of celebrating my birthday, it would be my proud privilege if 5th of September is observed as Teacher's Day. Thus, his birthday has since been celebrated as Teacher's Day in India. And the Honorable Rashtrapati Ji, Srimati Draupadi Murmu, will arrive at the plenary hall of Vigyan Bhavan in just a short while from now.
1: Manani Rashtrapati Srimati Draupadi Murmu, thodi hi der mein, Vigyan Bhavan mein 48 skooli shikshakon ko Rashtriya Shikshak Puraskar pradan karenge. Is karyakram mein pratyek puraskar vijeta ke dwara kiye gaye anukaraniya karyo ko darshane wale laghu vritchitron ko bhi pradarshit kiya jayega. श्रोताओं, 5 सितंबर भारत के लिए केवल एक तारीख नहीं, ये दिन है देश के महान दार्शनिक, शिक्षाविद और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती का. इसी कारण भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है. डॉक्टर राधाकृष्णन का जीवन इस बात का उदाहरण था कि शिक्षा केवल रोजगार प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, शिक्षा व्यक्ति के विचारों को विकसित करती है, उसके चरित्र का निर्माण करती है और उसे समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनाती है. इसीलिए शिक्षक का स्थान केवल कक्षा तक सीमित नहीं है, शिक्षक भविष्य का निर्माण करता है. श्रोताओं, एक सुंदर विचार है, शिक्षक वो नहीं जो केवल पाठ पढ़ाए, शिक्षक वो है जो जीवन पढ़ना सिखाए. और वास्तव में एक शिक्षक विद्यार्थी को केवल ये नहीं बताता कि क्या पढ़ना है, वो उसे यह भी सिखाता है क्या सोचना है, कैसा सोचना है और सही तथा गलत में अंतर कैसे करना है. यही शिक्षा की वास्तविक शक्ति है. श्रोताओं, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार देश के उत्कृष्ट स्कूली शिक्षकों के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है. भारत सरकार के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से इन पुरस्कारों का उद्देश्य उन उत्कृष्ट शिक्षकों के योगदान को सम्मानित करना है जिन्होंने अपने समर्पण से विद्यार्थियों के जीवन को समृद्ध किया है और स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है. इस वर्ष 48 शिक्षकों का चयन किया गया है. इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक हैं. ये शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं. इनका चयन राज्य, जिला, राष्ट्रीय स्तर की 3 स्तरीय प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है. श्रोताओं, विज्ञान भवन का यह ऐतिहासिक सभागार उत्सुकता से माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की प्रतीक्षा कर रहा है और अब मैं देख रहा हूं कि शिक्षा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी इस वक्त सभागार में पधार चुके हैं. उनके साथ शिक्षा राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी जी भी हैं. माननीय राष्ट्रपति के आगमन की सुगबुगाहट यहां पर अब बढ़ गई है. लोगों में उत्साह बढ़ गया है।

0: कौतूहल बढ़ गया है और इस वक्त सबकी निगाहें हैं उस द्वार की तरफ जहां से माननीय राष्ट्रपति कुछ ही क्षणों में प्रवेश करेंगी और ये 2026 के राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार प्रसाद करेंगी।
1: एंड ऑन द डेस वी कैन सी दैट द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन श्री प्रहलाद जोशी, द मिनिस्टर फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इंडिपेंडेंट चार्ज एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन श्री जयंत चौधरी, डॉक्टर सुकांत मजुमदार, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन एंड द ऑनरेबल President of India, Srimati Draupadi Murmu, has arrived at the plenary hall of the Vigyan Bhavan and she is being loudly cheered by all the awardees and the delegates who are present at the plenary hall.
0: यह अत्यंत गरिमामय दृश्य है। भारत के राष्ट्रपति इस वक्त

0: इस समारोह का विधिवत शुभारंभ हो चुका है। माननीय राष्ट्रपति अपना स्थान ग्रहण करते हुए।
1: महोदय, आपकी अनुमति हो तो समारोह का शुभारंभ किया जाए।
0: और अब माननीय राष्ट्रपति से विधिवत अनुमति लेकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है।
2: गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
0: देश के अलग अलग हिस्सों से आए शिक्षक राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित हैं और पूरे सभागार में सम्मान और उत्साह का वातावरण दिखाई दे रहा है। सभागार में उपस्थित गणमान्य अतिथि और शिक्षकगण राष्ट्रपति का अभिवादन कर रहे हैं। सबकी निगाहें इस वक्त मंच की तरफ हैं और मंच पर आसीन है माननीय राष्ट्रपति के साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी, शिक्षा राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी, शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकंता मजूमदार, देवश्री मुखर्जी जो कि सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में, इसके अलावा मिस दीप्ति गौड़ मुखर्जी जो कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी है, और श्री टी के अनिल कुमार सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन।
3: एंड नाउ शॉर्ट फिल्म ऑन द फर्स्ट लॉट ऑफ 24 नेशनल टीचर अवार्ड।
4: विज्ञान शिक्षा को नई दिशा दी, उन्होंने वर्चुअल बायोलॉजी लेबोरेटरी, एआई इनेबल्ड बायोलॉजी एजुकेशन और क्यूआर आधारित ट्री टॉक जैसे नवाचारों से उन्नत स्टेम अधिगम को सुलभ बनाया, जिसके लिए डॉक्टर दिव्येंदु सेन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
5: सुश्री अमुथा जेनी 22 वर्षों की सेवा में फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN समावेशी एवं आनंदमय शिक्षा तथा युवा नेतृत्व के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। कम लागत वाली शिक्षण सामग्री एवं KVS फोनिक्स वर्कबुक विकसित किए। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सुश्री अमुथा जे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
4: पंजाब के पटियाला स्थित राजकीय विक्टोरिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में श्री दिनेश कुमार ने करीब 25 वर्षों से विज्ञान शिक्षा को समृद्ध बनाने में योगदान दिया है। उन्हें पंजाब स्टेट अवार्ड 2020 और टीचर ऑफ द ईयर ऑफ पंजाब अवार्ड 2022 से भी सम्मानित किया गया। विज्ञान शिक्षा में अपने समर्पित योगदान के लिए श्री दिनेश कुमार को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
5: सिक्किम की खूबसूरत पहाड़ियों में पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डिकलिंग में सुश्री सुषमा तमांग ने दूर दराज के विद्यार्थियों की प्रतिभा को पहचान कर उन्हें इंस्पायर मानक इंटरनेशनल YRE कंपटीशन और एशियाई सम्मेलनों में सफलता के लिए तैयार किया, जिसके लिए सुश्री सुषमा तमांग को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। झारखंड के बरमसिया स्थित मिडिल स्कूल बरमसिया में सुश्री मुनमुन भट्टाचार्य जी ने कोयला खनन क्षेत्र के वंचित बच्चों के लिए कम लागत वाली फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी सामग्री, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग और व्यवसायिक कौशल के अवसरों से बच्चों की सीखने की चुनौतियों को कम किया, जिसके लिए सुश्री मुनमुन भट्टाचार्य जी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम जिले के नया ग्राम स्थित गवर्नमेंट मॉडल स्कूल में श्री शांतनु पात्र ने वंचित आदिवासी विद्यार्थियों के लिए समावेशी, तकनीक सक्षम एवं अनुभवात्मक शिक्षा को नई दिशा दी। उन्होंने ARVR ब्लेंडेड लर्निंग यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग का प्रभावी उपयोग किया। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए श्री शांतनु पात्रा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
4: चंडीगढ़ के मलोया कॉलोनी स्थित राजकीय मॉडल हाई स्कूल में श्री रवि जायसवाल ने विज्ञान शिक्षण को नवाचार, तकनीक और अनुभवात्मक अधिगम से समृद्ध किया। उन्होंने कम लागत में सीवी रमन डोम थिएटर, मोबाइल साइंस लैब तथा पुनर्चक्रित सामग्री से साइंस एंड नॉलेज पार्क विकसित किया। उनके तकनीक सक्षम एवं नवाचारी योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने और बच्चों के लिए सीखने के नए अवसर तैयार करने में सुश्री लालनुन मावी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मिजोरम के लंगले स्थित गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक वेंग हाई स्कूल में उन्होंने इंटरैक्टिव ICT टूल्स और

0: फ्री रेमिडियल कोचिंग के जरिए विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता को मजबूत किया, सार्वजनिक शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के अवसर देने के लिए सुश्री लालनुन मावी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। सुश्री सुनीता यादव ने छत्तीसगढ़ के खिचड़ी स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय में प्रोजेक्टर, लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल आईसीटी उपकरणों से स्मार्ट क्लासरूम तैयार किया। न्योता भोजन और घर घर पुस्तक वाचन जैसे प्रयासों से सुघर पढ़ैया प्लेटफॉर्म ग्रेड प्राप्त किया। ग्रामीण शिक्षा को नवाचार से सशक्त बनाने के लिए सुश्री सुनीता यादव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: हिमाचल प्रदेश के भालेट स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य सुश्री मंजरी वी महाजन ने शिक्षण को बढ़ावा देते हुए कचरा प्रबंधन, कंपोस्टिंग, जल संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में प्रभावी पहल की। शिक्षा में नवाचार और नेतृत्व के उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सुश्री मंजरी वी महाजन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के माया बंदर स्थित पीएम श्री जीएमएसएसएस में श्री जे प्रकाश राव ने बिल्डिंग एज लर्निंग एड अप्रोच के जरिए स्कूल को ही इंटरैक्टिव रिसोर्सेज में बदला। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, डिजिटल रिसोर्सेज, 21st सेंचुरी स्किल्स को मजबूत किया, जिसके लिए श्री जे प्रकाश राव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: सुश्री कुंदा जयवंत बच्छाव ने नगर निगम विद्यालय को ARVR, रोबोटिक्स, असिस्टिव टेक्नोलॉजी एवं QR आधारित संसाधनों से युक्त आधुनिक शिक्षण केंद्र में परिवर्तित किया। उनके एजुकेशनल पेरेंटिंग अभियान से 150 से अधिक वंचित बालिकाओं को आर्थिक सहयोग मिला। समावेशी नवाचार, बालिका सशक्तिकरण, उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सुश्री कुंदा जयवंत बच्छाव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: बिहार के विदायदिश स्थित उर्दू प्राइमरी स्कूल में सुश्री खुशबू कुमारी ने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, कम लागत वाली शिक्षण सामग्री और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा को सरल, सहज और प्रभावी बनाया। सुश्री खुशबू कुमारी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित PHEL के शासकीय महात्मा गांधी सांदीपनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में डॉक्टर अर्चना शुक्ला ने 15 वर्षों में विज्ञान को प्रयोग, पर्यावरण और खोज से जोड़ा। उन्होंने 1000 से अधिक गौरैया घर, 102 प्रजातियों के पेड़ों का डिजिटल मानचित्रण और प्लांट इमोशन जैसे नवाचार किए, जिसके लिए डॉक्टर अर्चना शुक्ला को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज विजयनगर में डॉक्टर रेणु त्रिपाठी ने 60 गांव के ड्रॉपआउट और स्कूल से बाहर बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ते हुए उन्होंने स्टेम, अटल टिंकरिंग लैब और कम लागत वाली शिक्षण सामग्री के माध्यम से समस्या समाधान को बढ़ावा दिया, जिसके लिए डॉक्टर रेणु त्रिपाठी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। सुश्री भवानी बोमपेल्ली ने नवाचारी शिक्षण के माध्यम से प्री प्राइमरी शिक्षा का विस्तार कर खेल आधारित एवं डिजिटल अधिगम वातावरण विकसित किया तथा कंक्रीट पिक्टोरियल एब्स्ट्रैक्ट पद्धति और कम लागत वाली शिक्षण सामग्री से गणित एवं भाषा सीखने को सरल बनाया। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सुश्री भवानी बोमपेल्ली को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: सुश्री सुमन गोयल ने दिल्ली के पोर्ट कला स्थित राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल टूल्स और स्वयं निर्मित कम लागत वाली टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के माध्यम से सीखने को रोचक और अनुभवात्मक बनाया। बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ा, विद्यालय में स्थिरता और शैक्षणिक प्रगति बढ़ी, जिसके लिए सुश्री सुमन गोयल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। ओडिशा के अली पिंगल स्थित राजकीय उच्च विद्यालय में श्री पदराज उमाकांत नायक के मार्गदर्शन में 50 से अधिक प्रोटोटाइप विकसित हुए, जिनमें कम लागत वाली ऑटोमेटिक प्लेट वॉशिंग मशीन भी शामिल है, जिसके लिए एक विद्यालय

0: भारत सरकार का पेटेंट मिला। वैज्ञानिक सोच, नवाचार और सामुदायिक भागीदारी से ग्रामीण शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए श्री पदराज उमाकांत नायक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: श्री एस गणेशन भौतिकी शिक्षक ने साइंस थिएटर, अनुभवात्मक स्टेम एवं एआई सक्षम शिक्षण के माध्यम से विज्ञान शिक्षा में उल्लेखनीय नवाचार किया। उनके साइंस थिएटर इंटीग्रेशन मॉडल ने नाटक, कहानी एवं प्रदर्शन के माध्यम से जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं को सरल और रोचक बनाया, जिसके लिए श्री एस गणेशन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। गोवा के एक्सएम स्थित गुजराती समाज स्पेशल स्कूल में श्री महादेव हनुमंत शिंदे ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षण को नई दिशा दी। उन्होंने 14 गतिविधि आधारित स्रोत पुस्तिकाएं तथा टैबलेट आधारित डिजिटल संसाधन विकसित किए। उनके प्रशिक्षित खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंधारत का गौरव बढ़ाया है। श्री महादेव हनुमंत शिंदे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: मणिपुर के कोंगबा माखा स्थित लाइको अपर प्राइमरी स्कूल में श्री वांगलिम्बम गोविंद सिंह ने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कहानी और फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के माध्यम से बच्चों की सीखने की क्षमता और भागीदारी को मजबूत किया, जिसके लिए श्री वांगलिम्बम गोविंद सिंह को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: महाराष्ट्र के सतारा स्थित सैनिक स्कूल में श्री शिव प्रसाद अरविंद सिंगारे ने हैंड्स ऑन साइंस एजुकेशन, लो कॉस्ट लर्निंग टूल और इंटरैक्टिव डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा दिया है। उनके विद्यार्थियों ने CSIR इनोवेशन अवार्ड और DSC साकुरा साइंस जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवसर हासिल किए। श्री शिव प्रसाद अरविंद सिंगारे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मध्य प्रदेश के ईदगाह स्थित सेंट जोसेफ कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सुश्री संगीता यादव ने गणितोत्सव, क्वेस्ट फॉर मैथमेटिक्स, मैथ ई माइंड एंड मैथमेटिक्स जैसी पहलों के जरिए गणित को बनाया रचनात्मक और विद्यार्थियों में समस्या समाधान की क्षमता विकसित की, जिसके लिए सुश्री संगीता यादव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। ओडिशा के मयूरभंज जिले के करंजिया स्थित EMRS में मोहम्मद जफर आलम ने आदिवासी बच्चों की शिक्षा में आधुनिक तकनीक, खेल और अनुभवात्मक शिक्षण के साथ आदिवासी संस्कृति और विरासत को भी शिक्षा का हिस्सा बनाए रखा, जिसके लिए मोहम्मद जफर आलम को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
2: और अब हमारी विनती है माननीय राष्ट्रपति महोदय आपसे कि कृपया ये पुरस्कार अपने कर कमलों द्वारा प्रदान करें।
3: श्रीमती द्रौपदी मुर्मू विल कन्फर द नेशनल टीचर्स अवार्ड्स 2026 ऑन 24 ऑफ द टीचर्स whom a telefilm was played at Vigyan Bhavan, and we can see that the Honorable Rashtrapati Ji, the Union Minister for Education, Sri Prahlad Joshi, and the Union Ministers of State for Education, Sri Jayant Chaudhary, and Dr. Sukanto Majumdar, and other dignitaries are on the dais. And now the first teacher to receive the award is Sri दिव्यंदु सेन फ्रॉम राजस्थान महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल पचपहार।
4: और अब वो क्षण आ गया है जिसका सभी को इंतजार था। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 का पुरस्कार वितरण शुरू हो चुका है।
2: दिनेश कुमार पंजाब,
4: पुरस्कार विजेताओं के नाम पुकारे जा रहे हैं।
3: नाउ श्री दिनेश कुमार फ्रॉम पंजाब विल रिसीव द नेशनल टीचर्स अवार्ड 2026 फ्रॉम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
2: सुषमा तमांग सिक्किम।
4: मंच पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है। एक एक करके सब शिक्षक
3: सुषमा
4: का नाम पुकारा जा रहा है।
2: मुनमुन भट्टाचार्य जी झारखंड।
3: मुनमुन भट्टाचार्य टीचर फ्रॉम झारखंड, रियली प्राउड मोमेंट फॉर दीज नेशन बिल्डर्स ऑफ इंडिया टू रिसीव द नेशनल टीचर अवार्ड।
2: शांतनु पात्र वेस्ट बंगाल।
4: और अब पश्चिम बंगाल के शांतनु जी को ये शिक्षक पुरस्कार दिया जा रहा है। 48 शिक्षकों को

0: सम्मानित किया जा रहा है
1: रवि जायसवाल चंडीगढ़।
0: और अब चंडीगढ़ के रवि जायसवाल माननीय राष्ट्रपति से सम्मान ग्रहण करते हुए।
1: लालनुन मोई मिजोरम।
2: फ्रॉम मिजोरम इज लालनुन मावी। एंड व्हाट अ प्राउड मोमेंट इट इज इंडीड फॉर दीज टीचर्स टू रिसीव द नेशनल टीचर्स अवार्ड।
1: सुनीता यादव छत्तीसगढ़।
2: राष्ट्रपति जी and Sunita Yadav ji from Chhattisgarh will be receiving the National Teachers Award 2026 from the Honorable Rashtrapati ji.
1: Manjuri V Mahajan, Himachal Pradesh.
0: Aur ab Himachal Pradesh ki Manjuri ji Mahajan Maratha Rashtrapati ke samaksh apna puraskar lene ke liye bade utsah aur garv ke sath aage badhti hui Maratha Rashtrapati
1: J Prakash Rao, Andaman and Nicobar Islands.
0: और अब अंडमान निकोबार आइलैंड से आए शिक्षक जो कि दिव्यांग है वो माननीय राष्ट्रपति की आए हल्के हल्के एक छड़ी के सहारे मरते हुए माननीय राष्ट्रपति उन्हें ये पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं।
2: रिसीविंग द अवार्ड व्हाट अ प्राउड मोमेंट इट इज इंडीड फॉर जे प्रकाश राव द टीचर फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। And this is indeed a very proud moment for all the teachers who are here at the
1: Kunda Jaivan Bachao, Maharashtra.
2: And Ms. Kunda Jaivan Bachao of Maharashtra is now receiving the National Teachers Award 2026 from the Honorable President of India.
1: Khushbu Kumari, Bihar.
0: And now Bihar ki Khushbu Kumari, Maniye Rashtrapati se apna ye samman grahan karte hue.
2: Madhya Pradesh, Ms. Archana Shukla, and she received this award from the Honorable Rashtrapati ji for her work especially on innovation.
1: Renu Tripathi, Uttar Pradesh.
2: Ms. Renu Tripathi from Uttar Pradesh is Ghaziabad, and she is working for especially school dropouts, STEM and automation among
1: Bhavani
2: her students.
1: Bhavani Bompelli, Telangana.
2: From Telangana, Ms. Bhavani Bompelli, and she focuses on innovation for pre-primary students. What a proud moment it is indeed.
1: Suman Goel, Delhi.
2: To receive the award from the Honorable Rashtrapati ji, and now Ms. Suman Goel from Delhi, and she specializes on ICT and digital tools in education.
1: Umakant Nayak, Orissa.
0: Rashtrapati ke haathon samman prapt karte hue शिक्षकों के चेहरे पर एक प्रसन्नता स्पष्ट दिखाई दे रही है। ये केवल एक पदक या प्रमाण नहीं, ये उनके पूरे जीवन की मेहनत राष्ट्रीय स्तर पर पहचान।
2: फ्रॉम पुदुचेरी, मिस्टर गणेशन एस इज रिसीविंग द नेशनल टीचर्स अवार्ड 2026 फ्रॉम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
1: महादेव हनुमंत शिंदे, गोवा।
0: गोवा से महादेव हनुमंत शिंदे माननीय राष्ट्रपति से अपना सम्मान ग्रहण करते हुए।
1: Wanglim Bam Govind Singh, Manipur.
2: And from the land of jewels, Manipur is Wanglim Bam Govind Singh.
1: Shiv Prasad Arvind Tingare, Sainik School.
2: From Sainik School, Shiv Prasad Arvind Tingare receives the National Teachers Award from the Honorable
1: Sangeeta Yadav, Central Board of Secondary Education.
0: CBSE ki Sangeeta Yadav, Maraniya Rashtrapati ke aage. उपस्थित होकर अपना सम्मान ग्रहण कर रही
1: हैं। मोहम्मद जफर आलम, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल।
0: और अब श्री जफर आलम अपना पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं, ये राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार माननीय
1: कोटि-कोटि धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदय।
2: एंड नाउ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इज बीन एस्कॉर्टेड टू द डेस अलोंग विद द Minister for Education, Shri Prahlad Joshi, and the Ministers of State for Education, Shri Jayan Chaudhary and Dr. Shukanta Majumdar, and the Secretary, Department of School Education and Literacy, the Secretary, Department of Higher Education, and the Secretary, Department of Skill Development and Entrepreneurship.
0: 24 शिक्षकों को माननीय राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया गया और अब माननीय राष्ट्रपति गणमान्य व्यक्तियों के साथ अपना स्थान ग्रहण करते हुए।
3: महाराष्ट्र के कैच थारू रोड स्थित निवासी माध्यमिक विद्यालय नरसिंह राव गित्ते को 29 वर्षों से गन्ना श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का काम किया है। बाल रक्षक और शिक्षण अपल्यादारी जैसे अभियानों से

0: बच्चों तक शिक्षा पहुंचाई। उन्होंने बच्चों को उच्च शिक्षा और बेहतर भविष्य की ओर बढ़ाया, जिसके लिए डॉक्टर कविता नरसिंह राव गित्ते को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। गुजरात के रंगपुर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में श्री नितिन कुमार महेंद्र कुमार पाठक ने सीमित संसाधनों वाले आदिवासी विद्यालय को डिजिटल एवं अनुभवात्मक शिक्षा के केंद्र में बदल दिया। उन्होंने 7D VR AR लैब और आर न्यूज जैसी सुविधाएं विकसित की। उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस एवं इसरो प्रशिक्षण में सफलता प्राप्त की। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: लद्दाख के कारगिल स्थित शासकीय मॉडल मिडिल स्कूल में मोहम्मद मुस्तफा कमाल ने सीमित संसाधनों के बीच बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान को अनुभव और स्थानीय जीवन से जोड़कर रोचक बनाया। 1000 से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित कर संदर्भ आधारित शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए मोहम्मद मुस्तफा कमाल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। केरलम के श्री सुनील कुमार केपी ने नवाचारी एवं आईसीटी सक्षम भाषा शिक्षण के माध्यम से मलयालम भाषा में पठन, संचार एवं रचनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ावा दिया। विद्यार्थी मार्गदर्शन एवं समग्र विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए श्री सुनील कुमार केपी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: सुश्री याको तामे ने अरुणाचल प्रदेश के नाहरलागुन स्थित गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल जी सेक्टर में विशेषकर बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ा और एक जर्जर विद्यालय को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, साइंस और मैथमेटिक्स लेबोरेटरीज से सुसज्जित संस्थान में बदला। उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने स्टेट बोर्ड में शीर्ष स्थान हासिल किए, जिसके लिए सुश्री याको तामे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: आंध्र प्रदेश के श्री राजेश कोलुरी ने AI सक्षम FLN डिजिटल शिक्षा एवं ग्रामीण विद्यार्थियों के मार्गदर्शन में उल्लेखनीय योगदान दिया। राज क्लासरूम के माध्यम से डिजिटल शिक्षण को व्यापक बनाया तथा शिक्षकों की डिजिटल क्षमता वृद्धि में योगदान दिया। श्री राजेश कोलुरी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: श्री गबर सिंह बिष्ट ने उत्तराखंड के मेहरा स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मुस्या खांद में 35 वर्षों तक ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा दूरदर्शन उत्तराखंड के शैक्षिक मॉड्यूल से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दूरदराज के विद्यार्थियों तक पहुंचाई। उनके नवाचार, ICT आधारित शिक्षण एवं समर्पित योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: असम के रंगिया स्थित PM श्री केंद्रीय विद्यालय NFR में डॉक्टर मनीषा खेत्रपाल ने समावेशी शिक्षा, बुनियादी साक्षरता और विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए निरंतर काम किया है। मास्टर ट्रेनर के रूप में उन्होंने असम के हजारों शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया, जिसके लिए डॉक्टर मनीषा खेत्रपाल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले के वार्ड नंबर 30 स्थित श्री रामकृष्ण शारदा विद्यापीठ प्राइमरी स्कूल में श्री पलाश चौधरी ने सुबह की भूख के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए सो का लोर पुष्टि पहल शुरू की, जिससे बच्चों की उपस्थिति और विद्यालय में नामांकन 3 गुना हुआ। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक सशक्तिकरण से जोड़ा, जिसके लिए श्री पलाश चौधरी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। बिहार के कुचाईकोटे स्थित मिडिल स्कूल कुचाईकोटे कन्या में सुश्री पुष्पा प्रसाद ने कम लागत वाली सामग्री, डिजिटल टूल्स और ग्रुप वर्क के जरिए विद्यार्थियों को सीखने के नए अवसर। उन्होंने ड्रॉप आउट बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ा और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की भागीदारी बढ़ाई। उन्होंने प्लांटेशन, वाटर सेग्रीगेशन और प्लास्टिक फ्री स्कूल जैसे प्रयासों को भी बढ़ावा दिया। सुश्री पुष्पा प्रसाद को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। 18 वर्षों से शिक्षा के प्रति समर्पित सुश्री पूर्णिमा मोहनलाल पटेल ने दादरा एवं नगर हवेली के दलवाड़ा स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल में विज्ञान परियोजनाओं तथा शिक्षक प्रशिक्षण में योगदान देकर उन्होंने समावेशी शिक्षा, सामुदायिक सहभागिता और

0: विद्यार्थियों के समग्र विकास को सशक्त किया। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सुश्री पूर्णिमा मोहनलाल पटेल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के जगदीशपुर स्थित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में श्री इफ्तिखार खान ने निःशुल्क रविवार कला कक्षाओं के माध्यम से रचनात्मक एवं अनुभवात्मक अधिगम को बढ़ावा दिया। उन्होंने कला के माध्यम से सड़क सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक जागरूकता को भी बढ़ावा दिया। कला शिक्षा, प्रतिभा संवर्धन एवं सामाजिक जागरूकता में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए श्री इफ्तिखार खान को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। कर्नाटक के होनेबेल स्थित गवर्नमेंट हायर प्राइमरी स्कूल समतगरु में सुश्री रत्ना कुमारी एस ने टॉय बेस्ड पेडागॉजी, अबैकस मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स के जरिए सीखने को आनंददायक और समावेशी बनाया। उनके मार्गदर्शन में ग्रामीण विद्यार्थियों ने प्रतिभा करंजी जैसे स्टेट कल्चरल प्लेटफॉर्म्स और इंस्पायर जैसे नेशनल साइंस प्लेटफॉर्म्स पर सफलता हासिल की, जिसके लिए सुश्री रत्ना कुमारी एस को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: जम्मू कश्मीर में डलहौरी के HSS डलहौरी में मोहम्मद अयाज रैना ने कंप्यूटर लैब से लेकर स्मार्ट बोर्ड और इंटरैक्टिव ई कंटेंट को शिक्षण का हिस्सा बनाया। शिक्षक विहीन विद्यालयों के विद्यार्थियों को ऑनलाइन बॉटनी शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित की। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए मोहम्मद अयाज रैना को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: रोहतक हरियाणा के राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांघी में श्री अनिल कौशिक ने गणित को रोचक और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 40 से अधिक शिक्षण मॉडलों से सुसज्जित मैथ्स लैब, इंटरैक्टिव हरबंस पजल और वर्चुअल मैथ्स लैब विकसित की, जिसके लिए श्री अनिल कौशिक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। त्रिपुरा के साबरूम स्थित पीएम श्री साबरूम गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में श्री रंजन देवनाथ ने स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपीरियंशियल प्रोजेक्ट्स और इको क्लब एक्टिविटीज के जरिए लर्निंग बाय डूइंग को बढ़ावा दिया। उनके मार्गदर्शन में ग्रामीण आदिवासी छात्राओं ने स्टेट बोर्ड में शीर्ष स्थान और चीफ मिनिस्टर्स एक्सलेंस अवार्ड हासिल किए, जिसके लिए श्री रंजन देवनाथ को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: प्रदेश के कोयलहा स्थित कंपोजिट स्कूल रसूलाबाद में सुश्री शालिनी कुशवाहा ने कला आधारित गतिविधियों, डिजिटल संसाधनों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल्स के जरिए पढ़ाई को सहज और आनंदमय बनाया, जिससे विद्यालय को निपुण विद्यालय की पहचान मिली, जिसके लिए सुश्री शालिनी कुशवाहा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। तमिलनाडु के पुलियमपट्टी स्थित पंचायत यूनियन प्राइमरी स्कूल में श्री थंगाराज एम ने बच्चों के लिए शिक्षा को समावेशी, आनंददायक और उनके जीवन से जुड़ा बनाया है। उन्होंने ग्रामीण स्कूलों में टॉयलेट, स्मार्ट क्लासरूम, इंटरैक्टिव बोर्ड, टॉय लाइब्रेरीज और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में योगदान दिया, जिसके लिए श्री थंगाराज एम को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। राजस्थान के जयपुर चाकसू स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालय तुमली का बास में डॉक्टर वर्तिका गुलाटी ने मूंगफली से बीज गणित और पतंगों से ज्यामिति समझाने के साथ प्रश्नों से विज्ञान पहल के जरिए रटने की जगह विद्यार्थियों में जिज्ञासा और खोज की भावना विकसित की। डॉक्टर वर्तिका गुलाटी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: श्री आर रोनल्ड मेरो ने नागालैंड के सिक्चू स्थित GHSS सिक्चू सुपसा में समुदाय संपर्क व्यक्तिगत मार्गदर्शन के जरिए बच्चों को विद्यालय से जोड़े रखा और ड्रॉप आउट कम, ICT आधारित शिक्षण के साथ शैक्षिक भ्रमण, वाद विवाद और सांस्कृतिक गतिविधियों से उन्होंने सीखने को जीवन से जोड़ा। शिक्षा के प्रति उनके समर्पण के लिए श्री आर रोनल्ड मेरो को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के कंजवार स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय में श्री शैलेंद्र प्रताप सिंह ने जन भागीदारी एवं समावेशी शिक्षा के माध्यम से विद्यालय को सामुदायिक विकास का केंद्र बनाया। उनके प्रयासों से नामांकन 69 से बढ़कर 202, उपस्थिति 44।

0: प्रतिशत से बढ़कर 96% हुई और ड्रॉपआउट समाप्त हुए। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 में सम्मानित किया जाता है।
1: श्री वैभव वसंतराव कुलकर्णी ने महाराष्ट्र के लातूर स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में खिलौनों, कला और वास्तविक जीवन की समस्याओं के माध्यम से जटिल गणितीय अवधारणाओं को सरल और रोचक बनाया। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण गणितीय सामग्री देश भर के विद्यार्थियों तक पहुंचाई, जिसके लिए श्री वैभव वसंतराव कुलकर्णी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: असम के जनजातीय क्षेत्र में श्री राजेश बरदोलोई ने प्रथम पीढ़ी के मिशिंग जनजातीय विद्यार्थियों के लिए गतिविधि आधारित ICT सक्षम एवं बहुभाषी शिक्षण को प्रभावी बनाया। उन्होंने सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों एवं दीक्षा ई कंटेंट के विकास में योगदान दिया। जनजातीय शिक्षा, बहुभाषी शिक्षण, डिजिटल सशक्तिकरण एवं सामाजिक नेतृत्व में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। सुश्री राधा राजेश ने माध्यमिक विज्ञान शिक्षा में नवाचारों एवं AI सक्षम शिक्षण को प्रभावी बनाया। उन्होंने फील्ड आधारित अधिगम, प्रयोगात्मक गतिविधियों और जैव नैतिक चर्चाओं के माध्यम से जीव विज्ञान को अनुभवात्मक एवं जीवन केंद्रित बनाया। उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया तथा इसरो URSC नेशनल साइंस डे में 4 बार विजेता रहे। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
2: और अब हम माननीय राष्ट्रपति महोदया आपसे विनम्र विनती करते हैं कि
3: प्लेनरी हॉल में पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों के उत्कृष्ट कार्यों पर आधारित लघु वृत्त चित्र दिखाया गया। इन फिल्मों के माध्यम से हम जान पाए कि देश के विभिन्न हिस्सों में शिक्षक किस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में नए प्रयोग कर रहे हैं, कहीं तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं स्थानीय संसाधनों के माध्यम से इस प्रक्रिया को विकसित कर रहे हैं सीखने की, कई खेल
4: गतिविधियों को। राष्ट्रपति महाराष्ट्र नेशनल टीचर्स अवार्ड टू दी फर्स्ट अवार्डी इन दिस सेशन इज कविता नरसिंह राव गिट्टे फ्रॉम महाराष्ट्र एंड व्हाट अ प्राउड मोमेंट इट इज इंडीड फॉर
2: नितिन कुमार महेंद्र कुमार पाठक गुजरात।
4: नितिन कुमार महेंद्र कुमार पाठक एंड ही इज नोन फॉर हिज इनोवेशंस 7DVR लैब्स ICT एंड चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस एंड
2: मोहम्मद मुस्तफा कमाल
4: पार्टिसिपेटेड इन इसरो कॉम्पिटिशन।
3: दूसरे चरण में अब माननीय राष्ट्रपति बाकी 24 शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान कर रही हैं।
4: मोहम्मद मुस्तफा कमाल ऑफ लद्दाख who is a social science teacher and he has trained 1,000 teachers. He is also a master trainer. And now from Kerala, Sunil Kumar KP, who has used Malayalam ICT and digital tools. And the next winner is from Arunachal Pradesh, Yakun Tame, who
2: Rajesh
4: has worked
2: Kaluri,
4: for bettering the infrastructure of the school. From Andhra Pradesh, Rajesh Koluri, who has used Raj classrooms and digital ICT tools
2: Gabar
4: for
2: Singh
4: education.
2: Bisht, Uttarakhand.
4: From Uttarakhand, Gabar Singh Bisht, who uses education and also is known for his Doordarshan education
2: Manisha
4: modules.
2: Manisha Khetrapal, Kendriya Vidyalaya Sangathan.
4: From Kendriya Vidyalaya Sangathan, Manisha Khetrapal, who is also a master trainer of teachers.
2: Palash Chaudhary, West Bengal.
4: From West Bengal, Palash Chaudhary. And he has worked on education and strengthening society, especially for his
2: Pushpa Prasad, Bihar.
3: And now, Bihar se Pushpa Prasad apna puraskar prapt karne, Mananiya Rashtrapati ke samaksh, pure utsah aur
2: Patel Purnima Mohanlal, Daman and Diu, Dadar and Nagar Haveli.
4: Daman, Diu, Dadra and Nagar Haveli. Purnima Patel receives the award from the Honorable President
2: Dr.
4: of India.
2: Dr. Iftikhar Khan, Uttar Pradesh.
3: Uttar Pradesh se Dr. Iftikhar Khan apna puraskar prapt kar rahe hain. Mananiya Rashtrapati Shripati Draupadi.
2: Ratna Kumari S, Karnataka.
4: From Karnataka, Ratna Kumari S, and she has used toy-based pedagogy for education
2: Mohammed
4: among
2: Ayaz
4: children.
2: Mohammed Ayaz Rehna, Jammu and Kashmir.
3: Aur ab Jammu and Kashmir se Mohammed एयाज रैना अपना पुरस्कार प्राप्त करने माननीय राष्ट्रपति के समक्ष।
2: अनिल कौशिक हरियाणा।
4: अनिल कौशिक ऑफ हरियाणा, ही हैज 40 मॉडल

0: in his mathematics lab and is now receiving the award from the Honorable Rashtrapati
1: Devnath Tripura.
2: Aur ab Tripura se Shri Ranjan Devnath apna puraskar grahan kar rahe hain. Taaliyon ke beech sabhi unka swagat abhinandan kar rahe hain.
1: Shalini Kushwaha, Uttar Pradesh.
2: Uttar Pradesh se Shalini Kushwaha ko ye puraskar diya gaya hai unke shiksha ke kshetra mein adab और अद्भुत कार्य के लिए
1: थंगराज एम तमिलनाडु
0: फ्रॉम तमिलनाडु थंगराज एम इज रिसीविंग द अवार्ड फ्रॉम द ऑनरेबल राष्ट्रपति जी एंड ही हैज वर्कड एक्सटेंसिवली ऑन एंजॉयबल एंड रिलेटेबल एजुकेशन
1: वर्तिका गुलाटी राजस्थान
2: राजस्थान से वर्तिका गुलाटी

0: गुलाटी राजस्थान।
1: राजस्थान से वर्तिका गुलाटी माननीय राष्ट्रपति से उन्होंने नमस्कार किया, जो कर माननीय राष्ट्रपति ने अभिवादन स्वीकार किया और अब माननीय राष्ट्रपति से वो पुरस्कार ग्रहण कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र
0: में
2: फ्रॉम नागालैंड आर रोनाल्ड मेरू विल बी रिसीविंग द अवार्ड फ्रॉम द ऑनरेबल राष्ट्रपति जी एंड ही हैज वर्क्ड एक्सटेंसिवली ऑन इंटरएक्टिव एजुकेशन। हियर इज रिसीविंग
0: शैलेंद्र प्रताप सिंह मध्य प्रदेश
2: प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फ्रॉम मध्य प्रदेश शैलेंद्र प्रताप सिंह will receive the award and he has worked to say that there is no dropout from his school and
0: his also
2: larger enrollment has been there in his school. From Maharashtra, Vaibhav Vasantrao Kulkarni, who has worked extensively on lively education, receives his award from the Honorable Rashtrapati
0: Ji. Rajesh Badaloi, Assam.
1: Assam se Rajesh Badaloi apna puraskar grahan kar rahe hain. In sabhi shikshakon ne apne apne kshetr mein
0: राधा राजेश इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन।
1: सेकेंडरी एजुकेशन कर्नाटका से इस वक्त उसका प्राप्त कर रहे हैं राधा राकेश।
0: कोटि कोटि धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति
2: महोदय। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन श्री प्रहलाद जोशी, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन श्री जयंत चौधरी एंड द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन डॉक्टर सुकांत मजुमदार एंड द मिनिस्टर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी श्री टी के अनिल कुमार, द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन श्रीमती दीप्ति गौड़ मुखर्जी एंड द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डॉक्टर देवश्री मुखर्जी हैव नाउ टेकन देयर सीट्स ऑन द डेस एंड
1: माननीय
2: ऑनरेबल प्रेसिडेंट विल ऑल्सो कन्फर अवार्ड्स टू टीचर्स एंड to the institutes who have worked in higher education and now telephone
3: architecture shiksha ko sustainable design aur real world learning se joda hai grameen kshetron se judkar ve vidyarthiyon ko awas school avsanrachna ki vastavik chunautiyon ko samajhne ke liye prerit karti hai vastukala shikshan ke liye professor avlokita agrawal ko rashtriya shikshak puraskar 2026 se sammanit kiya jata hai। तेलंगाना के हैदराबाद स्थित आईआईटी हैदराबाद में प्रोफेसर कीर्ति चंद्र साहू ने शोध शिक्षण और अकादमिक नेतृत्व के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विज्ञान और शोध को भविष्य की मौसम संबंधी चुनौतियों से जोड़ने और विद्यार्थियों को शोध के लिए प्रेरित करने के लिए प्रोफेसर कीर्ति चंद्र साहू को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
4: राजस्थान के पिलानी स्थित बिट्स पिलानी के डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डॉक्टर विनय चमोला ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में नए पाठ्यक्रम और हैंड्स ऑन आईओटी टिंकरिंग लैब्स के जरिए मेट सुपरविजन और एआईओटी ब्लॉक्स जैसे वेंचर्स के जरिए विद्यार्थियों को अपने विचारों को समाधान में बदलने के लिए प्रेरित किया। तकनीकी उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर विनय चमोला को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित आईआईटी भुवनेश्वर में डॉक्टर श्रीकांत गुल्लापुड़ी मेटलर्जी और मटेरियल साइंसेस के शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, रियल लाइफ एप्लीकेशंस और एक्सपीरियंशियल लर्निंग के जरिए वे विद्यार्थियों की तकनीकी समझ को मजबूत करते हैं। शिक्षा कौशल और सामाजिक जरूरतों से जुड़ी रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर श्रीकांत गुल्लापुड़ी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। गुजरात के गांधीनगर स्थित आईआईटी गांधीनगर में विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच और नए समाधानों की क्षमता विकसित करने वाले शिक्षक हैं डॉक्टर मिथुन राधाकृष्ण। वे इंजीनियरिंग, साइंसेस और फाइनेंस जैसे अलग अलग क्षेत्रों की अवधारणाओं को जोड़कर विद्यार्थियों को नए और अनजाने सवालों पर सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। मौलिक सोच और समस्या समाधान का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए डॉक्टर मिथुन राधाकृष्ण को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित IISER भोपाल में प्रोफेसर सौरभ दत्ता ने प्लांट बायोलॉजी के शिक्षण शोध और आउटरीच के जरिए विद्यार्थियों को नई सोच और शोध की दिशा दी है। वो एम्पैथेटिक मेंटोरशिप और इंक्लूसिव लर्निंग इकोसिस्टम के जरिए विद्यार्थियों को सशक्त करते हैं। शिक्षण शोध और समाज के प्रति अपने योगदान के लिए प्रोफेसर सौरभ दत्ता को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।

0: मुंबई के आईआईटी बॉम्बे के डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेज में प्रोफेसर विक्रम विशाल ने भू विज्ञान और जलवायु से जुड़े जटिल विषयों को शोध प्रयोग और वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के जरिए समझने का नया तरीका विकसित किया। भारत की पहली कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज फील्ड लेबोरेटरी स्थापित की। भू विज्ञान और जलवायु समाधान में शिक्षा शोध और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए प्रोफेसर विक्रम विशाल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। गुजरात के गांधीनगर स्थित नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जयराज सिंह सरवैया ने शिक्षा शोध और उद्योग के बीच एक मजबूत सेतु तैयार किया है। उन्होंने फॉरेंसिक फार्मेसी फूड फॉरेंसिक्स और मेडिकल डिवाइसेस जैसे तीन विशिष्ट क्षेत्रों में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शिक्षा शोध और इनोवेशन को रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट से जोड़ने के लिए प्रोफेसर जयराज सिंह सरवैया को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के आईआईटी कानपुर के डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में प्रोफेसर शंकर प्रसाद रथ ने रसायन विज्ञान में शोध शिक्षण और विद्यार्थियों के मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके स्वयं NPTEL पाठ्यक्रम ने उच्च शिक्षा में उनकी विशेषज्ञता को व्यापक बनाया। विद्यार्थियों की प्रतिभा और करियर को संवारने के लिए प्रोफेसर शंकर प्रसाद रथ को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में डॉक्टर मनीषा निगम ने बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई को प्रयोग समस्या समाधान और वास्तविक जीवन के उदाहरणों से अधिक प्रभावी बनाया। शिक्षा शोध और सामाजिक सरोकारों को साथ लेकर चलने के लिए डॉक्टर मनीषा निगम को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। महाराष्ट्र के वर्धा स्थित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज DMIHER में डॉक्टर अमर मोहन राव तकसांडे ने बाल चिकित्सा शिक्षा शोध और मरीजों की देखभाल में उत्कृष्ट योगदान दिया है। उन्होंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन और पीडियाट्रिक एकोकार्डियोग्राफी के माध्यम से चिकित्सा प्रशिक्षण को मजबूत किया। डॉक्टर अमर तकसांडे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। आंध्र प्रदेश के मंगलगिरी स्थित एम्स मंगलगिरी में डॉक्टर अरुण बाबू ने पीडियाट्रिक्स के शिक्षण शोध और चिकित्सा शिक्षा में नवाचार को आगे बढ़ाया है। 400 से अधिक साइंटिफिक पब्लिकेशंस और अनेक रिसर्च प्रोजेक्ट्स के साथ चिकित्सा शिक्षा और नवाचार को सशक्त बनाने के लिए डॉक्टर अरुण बाबू को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मणिपुर के इम्फाल स्थित मणिपुर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ डांस एंड म्यूजिक में डॉक्टर पुखराम बम लीलावती देवी ने 15 वर्षों से अधिक समय में नृत्य संगीत और शोध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मणिपुर स्टेट कला अकादमी के यंग टैलेंट अवार्ड और प्रसार भारती के मणिपुरी डांस में टॉप ग्रेड से सम्मानित डॉक्टर पुखराम बम लीलावती देवी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: वाराणसी की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में प्रोफेसर आशुतोष मोहन ने 25 वर्षों से अधिक समय में मैनेजमेंट शिक्षा शोध और अकादमिक नेतृत्व में उल्लेखनीय योगदान दिया है। मार्केटिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में विशेषज्ञता के साथ उन्होंने 50 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए। प्रोफेसर आशुतोष मोहन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। असम के गुवाहाटी स्थित गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में प्रोफेसर अंकुरन दत्ता ने 2 दशकों से अधिक समय में शिक्षा मीडिया और सामुदायिक संवाद को इसी सोच के साथ आगे बढ़ाया। नॉर्थ ईस्ट भारत के पहले कम्युनिटी और वेब रेडियो स्टेशन की स्थापना कर सामुदायिक संचार स्थानीय ज्ञान और सांस्कृतिक जुड़ाव को सशक्त बनाने के लिए प्रोफेसर अंकुरन दत्ता को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित कर्नाटका संस्कृत यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर शिवानी वी ने संस्कृत के पारंपरिक अध्ययन को आधुनिक तकनीक और शोध से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया। संस्कृत को आधुनिक सुलभ और नई पीढ़ी के लिए प्रासंगिक बनाने के लिए प्रोफेसर शिवानी वी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर राजीव चौधरी ने फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में शिक्षण, शोध और विद्यार्थी कल्याण को नई दिशा दी है। डिजिटल पेडागॉजी और अवेयर इंक्लूजन अफेक्शन AIA मॉडल के जरिए उन्होंने विद्यार्थियों में केवल याद करने की बजाय क्रिटिकल थिंकिंग और रिसर्च स्किल्स को विकसित किया। शिक्षा, शोध और विद्यार्थी कल्याण को सशक्त बनाने के लिए प्रोफेसर राजीव चौधरी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित MEI पॉलिटेक्निक में डॉक्टर विश्वनाथ एजेस पिछले 32 वर्षों से सिविल इंजीनियरिंग शिक्षा में इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिकल लर्निंग को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने मल्टीडिसिप्लिनरी नॉलेज, डिजिटल लर्निंग और स्टूडेंट सेंट्रिक टीचिंग को बढ़ावा दिया। तकनीक आधारित और रोजगार से जुड़ी शिक्षा को मजबूत करने के लिए डॉक्टर विश्वनाथ एचएस को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। तमिलनाडु के कोयंबटूर स्थित PSG पॉलिटेक्निक कॉलेज में डॉक्टर शशि कलायस डिप्लोमा इंजीनियरिंग एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए इंडस्ट्री कोलैबोरेशन और आउटकम बेस्ड लर्निंग को आगे बढ़ा रही है। 110 से अधिक इंडस्ट्री अलाइंड एक्सपेरिमेंट्स और 11 इंडस्ट्री MOUs के जरिए उन्होंने विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल लर्निंग के अवसर दिए। विद्यार्थियों के कौशल और अवसरों को बढ़ाने के लिए डॉक्टर शशि कलायस को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। तमिलनाडु के इरोड स्थित शक्ति पॉलिटेक्निक कॉलेज में डॉक्टर कन्नन रथिनम ने पॉलिटेक्निक शिक्षा में सीखने का एक व्यावहारिक मॉडल विकसित किया। उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप सैद्धांतिक अवधारणाओं को पीयर लर्निंग के माध्यम से समझने योग्य बनाया। पॉलिटेक्निक शिक्षा में नवाचार, शोध और अनुभवात्मक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर कन्नन रत्नम को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। महाराष्ट्र के सोलापुर स्थित गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में डॉक्टर संदीपन प्रल्हाद नारोटे ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और टेलीकम्युनिकेशंस की शिक्षा को टेक्नोलॉजी इनेबल्ड और एक्सपीरियंशियल लर्निंग से मजबूत किया है। उनकी टीचिंग लर्निंग अप्रोच से 5000 से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिला है। शिक्षण, शोध और संस्थागत विकास में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉक्टर संदीपन प्रल्हाद नारोटे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। केरल के ITI अरीकोड में श्री हरीश ए ने इलेक्ट्रिकल स्किल्स ट्रेनिंग को नवाचार और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ा है। उनकी सबसे खास पहल कैंडेला LED बल्ब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसे उन्होंने ITI विद्यार्थियों के साथ स्थापित कर स्किल लर्निंग को वास्तविक उत्पादन और एंटरप्रेन्योरशिप से जोड़ा और उद्यमिता के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए श्री हरीश ए को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के मंडी स्थित गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में फिटर ट्रेड के इंस्ट्रक्टर श्री जगमोहन ने कौशल प्रशिक्षण को गुणवत्ता, उद्योग की जरूरतों और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ा है। COVID-19 के दौरान मास्टर ट्रेनर के रूप में उन्होंने ट्रेनीज को ऑक्सीजन प्लांट्स के संचालन का प्रशिक्षण देकर कौशल को एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवा से भी जोड़ा। श्री जगमोहन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। महाराष्ट्र के धाराशिव स्थित गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में श्री किरण प्रकाश झरकर ने कौशल प्रशिक्षण को पुस्तकों, डिजिटल प्लेटफॉर्म और व्यावहारिक संसाधनों के एक जुड़े हुए लर्निंग इकोसिस्टम में बदला है। उनकी पेटेंट प्राप्त स्किल बुक कनेक्टिंग ट्रेनीज टू स्किल्स और स्किल बुक मोबाइल एप्लीकेशन ने प्रैक्टिकल लर्निंग और एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड रिसोर्सेज से जोड़ा, जिसके लिए श्री किरण प्रकाश झरकर को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित गवर्नमेंट ITI टॉलीगंज में वेल्डर ट्रेड के इंस्ट्रक्टर श्री संदीप बनर्जी ने कौशल प्रशिक्षण को आधुनिक तकनीक और व्यावहारिक सीखने से जोड़ा है। 300 से अधिक ट्रेनीज को कॉम्पिटेंसी बेस्ड और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देने के साथ उन्होंने नए वेल्डर इंस्ट्रक्टर्स के लिए मास्टर ट्रेनर के रूप में भी योगदान दिया है। युवाओं को सशक्त बनाने के लिए श्री संदीप बनर्जी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। गुजरात के बिलीमोरा स्थित इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ऑटोमोबाइल ग्रुप के सुपरवाइजर इंस्ट्रक्टर श्री राजेश कुमार एम पटेल ने वाहन तकनीक के प्रशिक्षण को नवाचार और रोजगार से जोड़ा है। ट्राइसिकल EV विद स्टीयरिंग जनरेशन ने क्षेत्रीय स्किल कंपटीशन में तीसरा स्थान हासिल किया। ऑटोमोबाइल स्किल्स और रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने के लिए श्री राजेश कुमार एम पटेल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026

0: सम्मानित किया जाता है। राजस्थान के चौमू में स्थित गवर्नमेंट आईटीआई में रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के सीनियर इंस्ट्रक्टर श्री हीरालाल शर्मा ने उनके विकसित किए गए स्प्लिट एसी और डीप फ्रीजर फॉल्ट सिमुलेटर्स के जरिए विद्यार्थी तकनीकी खराबियों की पहचान और ट्रबल शूटिंग का व्यवहारिक अभ्यास करते हैं, जिसके लिए श्री हीरालाल शर्मा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: महाराष्ट्र के नासिक स्थित गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट त्रिंबकेश्वर आदिवासी में फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी की क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर श्रीमती अर्चना राकेश जाधव ने आदिवासी और ग्रामीण युवाओं को फैशन और अपैरल स्किल्स के माध्यम से रोजगार और उद्यमिता से जोड़ा है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए श्रीमती अर्चना राकेश जाधव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित गवर्नमेंट डिविजनल आईटीआई में COPA HIVI की ट्रेनिंग ऑफिसर श्रीमती रीना गुप्ता ने प्रैक्टिकल लर्निंग के माध्यम से वे विद्यार्थियों को कंप्यूटर ऑपरेशन और बेसिक प्रोग्रामिंग जैसे कौशलों में प्रशिक्षित करती हैं। दिव्यांग युवाओं को डिजिटल कौशल और आत्मनिर्भरता से सशक्त बनाने के लिए श्रीमती रीना गुप्ता को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित गवर्नमेंट आईटीआई टॉलीगंज में श्री सौमेन पंडित ने नई तकनीकों के कौशल प्रशिक्षण को प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री ओरिएंटेड लर्निंग से जोड़ा है। उन्होंने 160 से अधिक लर्नर्स को ड्रोन टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षित किया। नई तकनीकों और भविष्य के रोजगार के अवसरों से युवाओं को जोड़ने के लिए श्री सौमेन पंडित को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। असम के नॉर्थ ईस्ट स्किल सेंटर असम स्किल डेवलपमेंट मिशन में श्रीमती तुलिका कलिता ने अपने 20 वर्षों के अनुभव से युवाओं को वैश्विक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए तैयार किया है। उन्होंने 1400 से अधिक लर्नर्स को वर्कप्लेस रेडिनेस कम्युनिकेशन एटिकेट और प्रोफेशनल सर्विस स्किल्स से प्रशिक्षित किया, जिसके लिए श्रीमती तुलिका कलिता को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। पंजाब के लुधियाना स्थित नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मशीनिस्ट ट्रेड के ट्रेनिंग ऑफिसर श्री संजय कुमार ने प्रिसिशन मशीनिंग और एडवांस्ड टेक्निकल स्किल्स के माध्यम से युवाओं को उच्च स्तरीय करियर के लिए तैयार किया है। उनके विद्यार्थी DRDO, इसरो, BARC और इंडियन रेलवेज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों तक पहुंचे हैं। श्री संजय कुमार को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वुमेन में ट्रेनिंग ऑफिसर श्रीमती ज्योति बाला राठौर ने उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय परीक्षाओं और स्किल कॉम्पिटिशन्स में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। कौशल और रोजगार के अवसरों के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने के लिए श्रीमती ज्योति बाला राठौर को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: उड़ीसा के भुवनेश्वर स्थित सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर में इंजीनियर ट्रेनिंग श्री प्रणब कुमार चौधरी ने कौशल विकास को बड़े स्तर पर प्रशिक्षण, गुणवत्ता और इंडस्ट्री रेडी लर्निंग से जोड़ा है। उन्होंने स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप व्यापक स्तर तक पहुंचाया। कौशल, गुणवत्ता और रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण को व्यापक स्तर पर सशक्त बनाने के लिए श्री प्रणब कुमार चौधरी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
2: ये और शिक्षा
3: माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू शिक्षक दिवस 2026 के अवसर पर उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के शिक्षकों या संकाय सदस्यों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। माननीय राष्ट्रपति अब अपने स्थान से खड़े होकर पुरस्कार देने के लिए आगे आते हुए आपको बता दें, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आमंत्रित किए गए थे, जिनमें जन भागीदारी के तहत इसमें
2: प्रोफेसर अवलोकिता अग्रवाल आईआईटी रुड़की की
3: प्रोफेसर अग्रवाल अपना पुरस्कार ग्रहण करने माननीय राष्ट्रपति के सामने आ रही हैं। इन्होंने सतत वस्तुकला और निर्मित पर्यावरण के क्षेत्र में
4: फ्रॉम आईआईटी हैदराबाद प्रोफेसर

0: Kirti Chandra Sahu, and he works on chemical engineering and has trained many students.
1: Dr. Vinay Chamola.
2: Or Professor Vinay Chamola, जिन्होंने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम किया है, बीएससी प्लानी से.
1: डॉक्टर श्रीकांत गोलापुड़ी, आईआईटी भुवनेश्वर.
0: फ्रॉम आईआईटी भुवनेश्वर, डॉक्टर श्रीकांत गोलापुड़ी, हु वर्क्स इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग.
1: डॉक्टर मिथुन राधाकृष्ण, आईआईटी गांधीनगर.
2: डॉक्टर मिथुन राधाकृष्ण जो कि केमिकल इंजीनियर है, इस क्षेत्र में इनको पुरस्कार दिया जा रहा है आईआईटी.
1: प्रोफेसर सौरभ दत्ता, आईआईएसईआर भोपाल.
0: From IISER Bhopal, Professor Saurav Datta receives the award from Honorable Rashtrapati.
1: Professor Vikram Vishal, IIT Bombay.
2: पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में कार्य के लिए प्रोफेसर विक्रम विशाल को पुरस्कार दिया जा रहा है, बॉम्बे महाराष्ट्र से है.
1: डॉक्टर जयराज सिंह सरवैया, NFSU गांधीनगर.
0: For his work in forensic sciences, Dr. Jairaj Sarvaiya of the National Forensic Science Laboratory,
1: Professor
0: University, Gujarat.
1: Professor Shankar Prasad Rath, IIT Kanpur.
2: रासायनिक विज्ञान क्षेत्र के लिए प्रोफेसर शंकर प्रसाद रथ को पुरस्कार दिया जा रहा है, जो आईआईटी कानपुर उत्तर प्रदेश से है.
1: डॉक्टर मनीषा निगम, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड.
0: हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी उत्तराखंड रिसीव्स अ अवार्ड इन द फील्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री फ्रॉम द
1: डॉक्टर अमर मोहन राव.
2: अगला पुरस्कार डॉक्टर अमर मोहन राव को दिया जा रहा है, मेडिसिन के क्षेत्र में बाल रोग के लिए उन्होंने कार्य किया है, वर्धा महाराष्ट्र से.
1: डॉक्टर अरुण बाबू, एम्स मंगलागिरी आंध्र प्रदेश.
0: फ्रॉम आंध्र प्रदेश इज मंगलागिरी एम्स. डॉक्टर अरुण बाबू, ही हैज वर्कड एस्पेशली ऑन पेडियाट्रिक ट्रीटमेंट एंड इनोवेशन एंड हैज
1: मणिपुर यूनिवर्सिटी
0: 400 साइंटिफिक पब्लिकेशंस. डॉक्टर पी लीलावती देवी receives her award from the Honorable President for her work on Manipuri Gans.
1: Professor Ashutosh Mohan, BHU Varanasi.
2: Professor Ashutosh Mohan ko, jo ki Prabandh Adhyan Sansthan Banaras se hai, unko puraskar diya ja raha hai.
1: Professor Ankuran Datta, Guwahati University, Guwahati.
0: Dr. Anukaran Datta of the Guwahati's Public Relations and Communication receives the award from the Honorable
1: University,
0: President
1: Bangalore.
0: Of India.
2: सुश्री शिवानी वी कर्नाटका यूनिवर्सिटी बेंगलोर से हैं, इनको संस्कृत विश्वविद्यालय से.
1: प्रोफेसर राजीव चौधरी, पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी रायपुर.
0: प्रोफेसर राजीव चौधरी रिसीव्स द अवार्ड फॉर हिज वर्क ऑन फिजिकल एजुकेशन एंड इज फ्रॉम द पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी रायपुर.
2: सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में डॉक्टर विश्वनाथ HS को पुरस्कृत किया जा रहा है, बेंगलोर कर्नाटका से.
1: डॉक्टर शशिकला S, PST Polytechnic College, Coimbatore.
0: From Tamil Nadu's Coimbatore, Dr. Sashikala S. receives the award for a work
1: Dr.
0: in electronics
1: Kanan
0: and electrical Rathinam. Engineering.
2: भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर कनन शक्ति रथिनम को पुरस्कृत किया जा रहा है, ईरोड तमिलनाडु.
1: डॉक्टर संदीपन प्रहलाद नरोटे, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सोलापुर.
0: From Maharashtra, Solapur district, the Government Polytechnic, Dr. Sandeep Narote of the Electronics and Engineering Department receives the award from the Honorable President of
1: Dr.
0: India.
1: Dr. Harish A., Government
0: ICI, Skilling and Entrepreneurship,
1: Kozhikode, Kerala.
0: Harish A. of ITI Kerala receives the award from the Honorable President of India.
1: Jack Mohan, Government Industrial Training Institute, Mandi, Himachal Pradesh.
0: He specializes in fitter trade and also is a master trainer, Sri Jagmohan from IIT, Himachal Pradesh.
1: By Uddhav Rao Patil, Government Industrial Training Institute, Dharashiv, Maharashtra. Sandeep Banerjee, Government ITI, Taliganj.
0: Receives the award
1: Patel,
0: from the Honorable
1: Rajesh
0: President.
1: Patel, Magan Bhai, Government ITI, Bilimora.
2: उद्यमशीलता के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं माननीय राष्ट्रपति.
1: हीरा लाल शर्मा, Government Industrial Training Institute, Chomu.
0: And he has worked in the field of refrigeration and his special work on troubleshooting for
1: ACs. Government Industrial Training Institute, Adivasi, Shyambakeshwar, Nasik.
0: And she works on fashion design.
1: Rina Gupta, Government Industrial Training Institute, Ujjain.
0: Dr. Gupta's work is on Divyang's digital skilling.

0: Somen Pandit, Tollygunj Government ITI.
1: Somen Pandit specializes in industry-oriented learning and drone technology.
0: Tulika Kalita, Northeast Skill Center, Guwahati, Assam.
1: She has trained 1,400 workplace readiness workers.
0: Sanjay Kumar,
2: Kaushal Vikas aur
0: TI Ludhiana
2: kshetra mein ye puraskar pradan kiye ja rahe hain mananiya rashtrapati ji.
0: Jyoti Bala Rathor, NSTIW Indore.
1: She works on skilling and empowerment of her students from
0: Pranab Kumar Chaudhary, Central Tool
1: Indore.
0: Room and Training Center, Bhubaneswar.
1: Pranab Kumar Chaudhary also specializes on skilling and entrepreneurship. And what a proud moment it is indeed to receive the award from the Honorable President of India. And the Honorable President of India has been escorted to her desk, and she is accompanied by the Minister for Education, Sri Pralhad Joshi, and the Ministers of State for Education, Sri Jayant Chaudhary and Sri Sukanta Majumdar, and the Secretaries in the Department of Education, Literacy, School Education and Literacy, and Skill Development and Entrepreneurship, and the Secretary, Department of Higher Education.
2: और अब समय आ गया है जब माननीय राष्ट्रपति ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी शिक्षकों को संबोधित करेंगी. राष्ट्रपति का संबोधन शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लाखों शिक्षकों के लिए प्रेरणादायी संदेश होगा. श्रोताओं, सभी शिक्षकों ने तालियों के साथ माननीय राष्ट्रपति का
1: स्वागत. स्टैंडिंग ओवेशन फॉर द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू. नाउ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट विल एड्रेस द गैदरिंग.
3: इस समारोह में उपस्थित केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी, राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी जी एवं डॉक्टर सुकांत मजूमदार जी, मंचासीन सभी सचिवगण, सभी शिक्षकगण, देवियों और स्वजन सभी को नमस्कार. राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित आज के सभी पुरस्कार विजेताओं को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ. देश के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर हमारे देशवासी उनके प्रति एवं समस्त शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं. जो समाज शिक्षकों का सम्मान करता है वो समाज सही अर्थ में प्रगतिशील होता है. शिक्षक के बीच आकर मेरे अंदर विद्यमान विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही जीवंत हो जाता है. मुझे अपने शिक्षकों का सादर स्मरण होता है. उनके स्नेह और मार्गदर्शन के बल पर ही मैं अपने जीवन यात्रा में आगे आकर आपके सामने खड़ी हूँ. साथ ही मुझे अपने विद्यार्थी भी याद आते हैं जिन्हें मैंने ओडिशा के रायरंगपुर में स्थित श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में पढ़ाया था. मैंने अपने विद्यार्थियों से भी बहुत कुछ सीखा है. उन विद्यार्थियों के प्यार को मैं अपने जीवन के बहुत बड़ी उपलब्धियां मानती हूँ. मैं भी कभी शिक्षक समुदाय की सदस्य रही हूँ, इससे मुझे विशेष सार्थकता का अनुभव होता है. देवियों और स्वजन, सावित्रीबाई फुले आधुनिक युग में विद्यालय में पढ़ाने वाले भारत की पहली शिक्षिका के रूप में जाने जाती है. बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्रांतिकारी पहल की थी और 19वीं सदी में बालिका विद्यार्थियों की स्थापना की थी, विद्यालय की स्थापना की थी. आज के दिन क्रांति, ज्योति स्वरूपा महान शिक्षिका सावित्री बाई फुले की स्मृति को मैं सादर नमन करती हूँ. 20वीं सदी

के आरंभ में पश्चिम बंगाल के बोलपुर जिले में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की तथा ओडिशा के पुरी जिले में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास ने वन विद्यालय यानी ओपन एयर स्कूल की स्थापना की थी। उन विद्यालयों की स्थापना के पीछे ये उदात्त विचार था कि प्रकृति की गोद में विद्यार्थियों का सहज विकास होता है। देश को बहुआयामी योगदान देने वाले यथा सर्वजनात्मक शिक्षा के प्रति विशेष रूप से समर्पित उन विभूतियों को मैं सादर नमन करती हूँ। इस सभागार में लद्दाख से लेकर अंडमान निकोबार आइलैंड तक तथा अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक पूरे देश में शिक्षण के श्रेष्ठ प्रतिमान स्थापित करने वाले शिक्षक उपस्थित है। ये प्रसन्नता की बात है कि पुरस्कार विजेताओं में गांव के स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या अधिक है। मुझे आशा है कि इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं की अध्यापन एवं प्रशिक्षण पद्धतियां और उपलब्धियां उन शिक्षकों को भी शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए प्रेरित करेगी। पुरस्कार विजेताओं के योगदान और उपलब्धियां पर केंद्रित फिल्मों को देखकर मेरा ये विश्वास और भी दृढ़ हुआ है कि निष्ठावान शिक्षक अग्रिम पंक्ति के राष्ट्र निर्माता होते हैं। आज पुरस्कृत सभी शिक्षकों के समान रूप से प्रभावशाली और अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, लेकिन समय के सीमा के कारण मैं केवल एक उदाहरण का उल्लेख करना चाहूंगी। हम सब ने देखा कि राजस्थान के झालावाड़ जिले के एक गांव के स्कूलों में अपने शिक्षक के मार्गदर्शन में बच्चे अत्यंत आधुनिक माध्यमों के सहायता से जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि सोच के बल पर छोटे से छोटे स्थान पर प्रबुद्ध शिक्षक और जिज्ञासु विद्यार्थी उच्च स्तरीय पाठन पठन का आधुनिक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता होती है कि ये सभागार में उपस्थित शिक्षकों ने ऐसे प्रेरक प्रयासों से शिक्षण कार्यों को नए आयाम दिए हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्कूलों, उच्च शिक्षण संस्थानों एवं पॉलिटेक्निक्स में अध्यापन करने वाले श्रेष्ठ शिक्षकों तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा चुने गए सुयोग्य प्रशिक्षकों के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है। देश के विकास में एकेडमिक एक्सेलेंस, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत अधिक महत्व है। भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने के साथ साथ स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित करना हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता में से शामिल है। यहाँ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कृत आचार्यगण उपस्थित है। उनके लिए तथा पूरे देश के आचार्यों के लिए उच्च शिक्षा में भारत का गौरवशाली इतिहास लक्ष्य भी प्रस्तुत करना है और कसौटी भी। हुएंगसान ने लिखा है कि नालंदा विक्रमशिला में पढ़ाने वाले आचार्यों का यश दूर दूर के देशों तक फैल चुका था। उनका चरित्र पूर्णतः निर्मल और अनिंदनीय था। आचार्यगण जानते थे कि समुद्रों और पर्वतों के को पार करके अनेक कष्ट सहन करके विदेशों के छात्र अनेक उनके पास आते थे और ज्ञान पिपासा लेकर वो अपने आप को संतुष्ट लाभ करते थे। भारत के विश्वविख्यात आचार्यों की परंपरा को नोबेल पुरस्कार विजेता आचार्य सी वी रमन जैसे शिक्षकों ने आधुनिक युग में आगे बढ़ाया है। वे अपने विद्यार्थियों के साथ खूब घुल मिलकर मॉडर्न फिजिक्स के विभिन्न विषयों पर चर्चा करते थे। जो विद्यार्थी उनसे कोई अच्छा प्रश्न करते थे तो वे पुस्तकों से हटकर अपने विलक्षण अध्यापन से ऐसे जिज्ञासा जागृत करते थे कि उनके विद्यार्थी उन प्रश्नों के माध्यम से विश्व के

0: महान वैज्ञानिकों के मूल ग्रंथों में अवगहन करने जानते थे। देवी और स्वजन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि बच्चों की देखभाल करना, पौधों को जोर से सींचने जैसे बराबर है। स्कूल एजुकेशन शिक्षा व्यवस्था का आधार है। ज्ञान और कौशल तो कभी भी प्राप्त किया जा सकता है, परंतु बचपन में ही सदाचार की शिक्षा देना अधिक प्रभावी सिद्ध होता है। आरंभिक कक्षा में बच्चों के बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक विकास पर निष्ठापूर्वक ध्यान देकर हमारे शिक्षक अच्छे विद्यार्थियों और कर्तव्यनिष्ठा नागरिकों की भावी पीढ़ियां तैयार करते हैं। विद्यार्थियों ही शिक्षकों की पहचान होते हैं। विद्यार्थी अपने शिक्षकों द्वारा पढ़ाया गया पाठ्यक्रम भले ही भूल जाए, लेकिन उनके व्यवहार को ये सदैव याद रखते हैं। अनेक विद्यार्थी आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिसरों से आते हैं। कुछ अनेक परिवार में पहली पीढ़ी के विद्यार्थी होते हैं। कुछ विद्यार्थी गांव के किसी सामान्य स्कूल से शहर के बड़े स्कूल में आते हैं और थोड़ा असहज हो जाते हैं। कुछ विद्यार्थी स्वभाव से ही संकुची होते हैं। कुछ विद्यार्थी में बहुत प्रतिभा होती है, लेकिन उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, तथा कुछ विद्यार्थियों को चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे सभी विद्यार्थी जो किसी कारण से कोई भी कमी महसूस करते हैं, उनमें आत्मविश्वास जगाना और उन्हें आगे बढ़ाना शिक्षकों का विशेष दायित्व होना चाहिए। संस्कृत भाषा के शब्द उद्धार का अर्थ होता है खींचकर बाहर निकालना या नीचे से ऊपर ले जाना। विद्यार्थियों का उद्धार करने का पुनीत अवसर केवल शिक्षकों को ही उपलब्ध होता है। हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्श को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। हमारे देश में प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट 12 वर्ष पहले लगभग 4.5% था। अब ये ड्रॉप आउट रेट नहीं के बराबर है। ये उपलब्धि शिक्षकों के प्रयासों से संभव हो सकी है। इस राष्ट्रीय सफलता के लिए मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित ना हो। मैं चाहूंगी कि हमारे शिक्षक अपने स्नेह और समर्पण से सभी विद्यार्थियों में ज्ञान, प्रेरणा, नैतिकता और संवेदनशीलता का संचार करें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।
1: अपने संबोधन में शिक्षा और शिक्षा की भूमिका के महत्व को रेखांकित किया माननीय राष्ट्रपति।
2: माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो समारोह का समापन किया जाए।
1: और अब राष्ट्रगान के लिए
3: निवेदन है। राष्ट्रगीत तथा राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

0: mentioned about the reputation of the teachers of India's ancient Nalanda University, which spread far and wide and attracted students from all over the world. And she said that in the last 12 years, the primary school dropout rate has come down to almost nil.
1: आज के इस समारोह में हमें एक महत्वपूर्ण संदेश मिलता है. राष्ट्र निर्माण केवल बड़ी परियोजनाओं से नहीं होता, राष्ट्र निर्माण कक्षा में होता है. श्रोताओं, अब समारोह अपने समापन की ओर बढ़ रहा है. आज का ये आयोजन हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि शिक्षक केवल भविष्य देश के नागरिक नहीं बनाते, वे भविष्य भारत का निर्माण भी करते हैं. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किए गए सभी शिक्षक हमारे लिए प्रेरणा है. उनके विद्यालयों को बधाई, उनके विद्यार्थियों को बधाई, उनके परिवारों को बधाई और भारत के प्रत्येक शिक्षक को हमारा सादर नमन. इसी भावना के साथ विज्ञान भवन नई दिल्ली से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 का ये विशेष प्रसारण संपन्न होता है. इस प्रसारण को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग दिया अशोक कुमार मिश्रा और बाबूलाल मीणा ने. हमारे ओबी इंचार्ज थे वीके तोमर और प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार. मैं शोएसआर खान अपने साथी कमेंटेटर कौशिक राय के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलता हूं. नमस्कार.
2: अभी आप नई दिल्ली के विज्ञान भवन से भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित किए राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार समारोह का सजीव विवरण सुन रहे थे. विवरण दे रहे थे शोएसआर खान हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में.
3: You are listening to a live broadcast of the presentation ceremony of the National Award to Teachers organized by the Ministry of Education, Government of India, in the gracious presence of Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, at Vigyan Bhavan, New Delhi. Our commentators were Shoaisyar Khan in Hindi and Kaushik Roy in English.
4: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर

0: राजनीतिक संघर्षों और बढ़ते आर्थिक दबावों का सामना कर रही है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान के कारण खाद्य और ईंधन की बढ़ती कीमतें भी चिंता का विषय बनी हुई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित त्रिशूली बाजार क्षेत्र से 5 वर्षीय बच्चे सहित 3 और भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। इससे शरणार्थियों की कुल संख्या 169 हो गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि 1907 भारतीय चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास भारतीय शरणार्थियों को हवाई मार्ग से वापस लाने में मदद कर रहा है। इस बीच नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1344 हो गई है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी अगले 2 दिन तक तेज बारिश की आशंका है। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच दुबई में रात 8 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

संध्या 7:30 पर हम आपको सुनवाएंगे महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत भारत बनाम पाकिस्तान के मध्य खेले जाने वाले पहले क्रिकेट मैच का दुबई इंटरनेशनल।

क्रिकेट स्टेडियम से आंखों देखा हाल, मैच का देखा आंखों देखा हाल आप मैच की समाप्ति तक सुन सकेंगे। इस कार्यक्रम को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय साहित्य पत्रिका का कार्यक्रम साहित्य भारती। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात्रि 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। इन दोनों ही कार्यक्रमों को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे।

अब से कुछ ही देर में यानी कि 1:15 पर बहनों का कार्यक्रम होगा घर आंगना। सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम अपराह्न 2:30 पर प्रसारित किया जाएगा। संध्या 5:30 पर युवा साथियों का कार्यक्रम होगा युववाणी। इसमें आज की बात होगी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती और अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस विषयों पर।

संध्या 6:15 पर ब्रज साहित्य कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत कथा। प्रसंग होगा नंदोत्सव। कथाकार होंगे धर्मवीर अज्ञानी।

संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम श्याम सुहानी संध्या 7:31 पर प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 8:30 पर श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। फिल्म संगीत का आनंद श्रोता रात्रि 8 बजे और रात्रि 9:15 पर भी ले सकेंगे।

अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं संवेद स्वरों में देशगान।

अभी आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में देशगान। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर।

0: सुनी आई।
1: मृणालिनी बहन, ये तो बहुत खुशी की बात है, पर पहले राम राम तो कर लियो।
0: अरे बहन कछ पूछे मती, आज तो नंद सबको ऐसा आनंद आ रहा है कि अपनी बहनां को पहले तो भैया कृष्ण जन्म की बधाई और
1: बधाई,
0: सवन को
1: राम
0: राम राम।
1: राम।
0: बहन आज राम राम ना, जय श्री कृष्णा करेंगे।
1: तो चलो जय श्री कृष्णा और नंद के आनंद
0: आनंद
1: भय,
0: भय
1: जय
0: जय
1: कन्हैया
0: कन्हैया
1: लाल
0: लाल की।
1: की।
0: तो बहनों

0: अरे तो आज ब्रज को जो हाल है बहन वो तो तुम देख रही हो, और अपना हाल देख लो कि हम पे बोलो ना जा रहो गदगद है रहे हैं, और इतना आनंद भीतर समाये भयो है कि बा आनंद को अनुभव जैसे गूंगो मीठे फल को रस ना बताए सके ना, ऐसा भाव भीतर से आए रहे हो
1: और देखो बहन, हमें पता है तुम्हें ब्रज में नंदोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। देखो बहना, कल जन्माष्टमी हमारी जन्मभूमि पे मनी, ठीक है,
0: बिल्कुल बहन,
1: लेकिन आज नंदोत्सव खाली गोकुल में
0: गो
1: ना मन रहो,
0: घर घर में मन रहे हो
1: घर घर में
0: बहन,
1: मन
0: मन
1: रहे
0: रहे हो
1: हो। और
0: बिल्कुल
1: गोकुल में तो मना ही रहे,
0: मना ही रहे हैं।
1: लेकिन घर घर में नंदोत्सव मना रहे हैं। देखो ब्रज में हर जगह अपने अलग अलग तरीका नंदोत्सव मना में
0: बिल्कुल
1: है। कहूं कह में कि नाए बहन नंदोत्सव यहाँ पे तो हम माखन लीला करके बना रहे हैं, कहूं बालकन ने चीज बाट के
0: बात
1: करा
0: करना है
1: में,
0: कोई
1: कहूं बालकन ते गीत
0: बिल्कुल
1: गब्बा के
0: बहन।
1: मनवा
0: और
1: में।
0: देखो अब हमारे जन्मभूमि के आसपास कढ़ी चावर बट रहे हैं, तो कहूँ
1: हाँ
0: लाला की छींची डाल रहे हैं
1: हाँ
0: चंदन वंदन में मिला के।
1: मिलाए के डाल लें तो कितना
0: हाँ
1: आनंद आ रहा। और
0: कितना
1: तो
0: आनंद
1: बताओ
0: रहा।
1: विजय बहन, वृंदावन में जो यहाँ को उत्तर भारत को सबसे विशाल मंदिर है ना रंगनाथ मंदिर,
0: हाँ
1: वहां
0: बहन
1: में नंदोत्सव लट्ठा के मेला के रूप में मना में।
0: क्या बात है, देखो कितना
1: हाँ,
0: सुंदर।
1: और लट्ठा का मेला इतना प्रसिद्ध हुए चौंकी बहन, बा में का हुए नंदोत्सव में सब ते ऊंची हाड़ी टंग जावे, और बा में हुए माखन
0: माखन
1: मिश्री
0: और माखन हमारे कन्हैया को प्रिय
1: प्रिय भोजन है।
0: भोजन।
1: और बाय लेवे के काजे जब ग्वाल वाल चढ़े, और फिर कैसी लीला करे, बार बार कूदे बार बार चढ़े, तो ऐसा लगे जैसे एकदम द्वापर युग में आए कि हम नंदोत्सव को
0: आनंद ले रहे
1: आनंद
0: हैं।
1: ले रहे हैं।
0: और बहन देखो गोकुल में ऐसे बड़े बड़े जलेबा बने और एक दूसरे के ऊपर फेंक फेंक कर लूटे, नंद
1: हाँ
0: बाबा लुटा में और सबरी प्रजा
1: लूटे,
0: लूटे।
1: लेकिन बहन खाली जलेबा ही ना लूटे,
0: हाँ
1: निरे तो बासन बटे,
0: सब
1: निरे चांदी के सिक्का बटे, निरे खिलौना बटे बालकन ने।
0: कछु बटे, पर हम तो ब्रजवासी मीठे के ही चटोरे हैं ना,
1: हाँ बिल्कुल साची बात
0: तो
1: कही है, हमें तो मीठो मिल जाए,
0: मैं
1: माखन मिश्री मिल जाए और खावे को मिल जाए, तो भैया हम
0: तो
1: तो नंद के
0: बर्तन
1: आनंद
0: अन्न तो कोई ले जाए, पर हमें जलेबी लड्डू और माखन मिश्री
1: दे
0: मिलता
1: जाए,
0: रहे।
1: तो भैया आनंद बहुत आवे। तो बहन ऐसा करें, देखो आनंद को हिस्सा हमारी बहनन को बना लें,
0: बिल्कुल
1: लोकगीत के माध्यम से हम इन्हें बधाई दे दें।
0: बिल्कुल बहन बिल्कुल।

बीना शर्मा और सखी बहन गाय रही ना, तो बहनों बहुत सारी सखी आज तो इंतजार कर रही हैं कि हमारा वो नंबर आए, क्योंकि अपने भाग्य पे हम सब इतराए रहे हैं क्योंकि कन्हैया हमारे ब्रज में आए हैं। तो सबन को ही नंबर है तो सब अपनी अपनी बारी को इंतजार कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इनकी बारी को सुन लें कि जो सखी काय कह रही हैं।

0: सम्वेत स्वरन में सखियां अपनी धुन गुनगुनाए रही, तो आनंद हमें इतनो आ रहे हो कि हमारा मन कर रहे हो है कि मैं तो गोकुल नगरिया जाऊंगी, नंद बाबा से बधाई लेके आऊंगी।
1: देखो विजय बहन, तुमने बात करी है गोकुल की, तो देखो गोकुल में कितनो आनंद है रो है जे अपनी बहनान को हम सुनवा रहे हैं जाके कार्यक्रम के माध्यम से।
2: कान्हा के जन्म के संग ही विगत मंगलवार 31 अगस्त को नंद नंदन कन्हैया ने है रहे हो यह
3: बहुत अच्छा लग रहा है,
4: शिव के भक्त है और शिव का राज्य
3: की नगरी है।
2: संग लड़ुआ, जलेबी, खिलौना, फल, मिश्री, माखन, मोतियन की माला भी लुटाई गई।

0: लाला का जन्म जन्माष्टमी के दिन मथुरा में हो जाता है। बस वे भगवान लेके आते हैं। सुबह ब्रजवासियों को मालूम पड़ती है कि नंद बाबा के यहाँ पे लाला को जन्म है गए, तो भाई साथ नंद महोत्सव लाला को मने। लाला की चीची और यहाँ लाला की चीची का विशेष महत्व हुए, लेकिन नंद बाबा ने जब लाला पैदा है गए तो खुशी उत्साह में जवारा तीरा जवारा सब लुटाए और मेवा मिष्ठान लुटाए और मेवा मिष्ठान दही के जलेबा दूध घर की सामग्री सब यहाँ पे कोई परंपरा चली आ रही है। समय के अनुसार परिवर्तन होता चलो जाए, लेकिन अब वर्तमान में तो वही स्थिति चली आ रही है।
1: के कल्याण हो जाएगा, हम तो आनंद में भीगेंगे भी, हमारे समीप जो भी आएंगे वो भी आनंदमय हो जाएंगे। और तब वास्तव में ये गाया जा सकता है, नंद के आनंद भय जय कन्हैया।
2: तो विजय बहन है आई हो तुम गोकुल
3: बहन,
2: लियो आनंद।
3: बिल्कुल बहन, और बचा कुछ आनंद जो मन में रहेगा हो ना भीड़ के मारे, वो तुमने नहीं दबाई दियो।
2: हाँ देखो, आनंद तो वही कही जाए ना कि आनंद की तो पूर्ति है ही ना सके। लेकिन बहन तुम्हें मतलब नंदोत्सव के खुशी में तुम इतनी बावड़ी है रही हैं, हम बावड़े है रहे हैं, तुम कह रही हैं बहन हमू है रहे हैं कि आज को दिना भूल गए कि आज 5 सितंबर है।
3: हाँ,
2: आज शिक्षक दिवस है।
3: हाँ,
2: और बहन कहो जाए ना मात पिता और गुरु
3: गुरु, बिल्कुल बहन,
2: इनकी तुलना कोई ना कर सके।
3: कि मैं ना अज्ञान तिमरान दश ज्ञानंजय शलाकया चक्षुरु मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
2: देखो माता पिता हमें जन्म दे में,
3: बिल्कुल,
2: लेकिन गुरु जो हैं वो हमें आगे जीवन जीने की सही कला और सही दिशा दिखा में है।
3: बिल्कुल,
2: कि हमें कौन से रास्ते पे चलना चाहिए। केवल किताबन की बात ना है कि भाई किताबन को ज्ञान दे दियो, कि भैया गुरु ने हमें किताबन को ज्ञान दे दियो, हमने किताब पढ़ ली और लिख ली है गई
3: ना है बहन। जय ना है जय मारा तो मैया को प्रथम गुरु कहो गयो है।
2: बिल्कुल साची बात है, मैया प्रथम गुरु होवे। लेकिन बहन जब गुरुदेव कहे जाए ना गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिनने गोविंद दियो बताए। यानी भगवान के पास भी अगर हमें जीवन में जाना है तो बाको रास्ता भी गुरुदेव के द्वारा
3: बताया जाए।
2: तो गुरु जो है वो एक शिक्षक के रूप में हमारे जीवन

0: है और आज तो वही 5 सितंबर है।
1: बिल्कुल बहन, आज शिक्षक दिवस है। और देखो, हम और आप कहीं ना कहीं, और सब जो माताएं हैं वो सब कहीं ना कहीं रूप से शिक्षक हैं अपने अपने बालकन की, तो सब उनको शिक्षक दिवस की खूब खूब बधाई।
0: और देखो जीवन में शिक्षा जो है वो जे ना सोचनी चाहिए कि हमें छोटे ते ना लेनी बड़े ते ना लेनी। कहो जाए ना गुरु बहुत छोटा भी दत्तात्रेय देख लो तुम
1: बिल्कुल बहन, बिल्कुल सही बात है। उनने सब कितने 16 गुरु बनाए बहन।
0: बनाए ना,
1: बिल्कुल
0: तो जिससे हम कछु नया सीख सकें वो हमारे लिए गुरुदेव और वही शिक्षक होए। और
1: बिल्कुल
0: बिन को हम कहें ना कि हम उनके चरणन में कोटि कोटि नमन ही कर सके हैं।
1: बहन, एक बात और है, सीख वे के काज है, हमें जीना है छोटो बड़ो सीखनो हमें, और जीवना है कि आज हम बड़े हो गए तो ना सीख पाएंगे। हर उम्र में हर समय हमें सीख वे के ताई तत्पर रहना चाहिए।
0: देखो बिल्कुल तत्पर रहना चाहिए। कहे ना ब्रज के आनंद में हम भूल जावे कि सुधबुद्धि खत्म है जावे कि कहाँ है रुपये।
1: बहन उत्सव बालक को जन्म भयो, तो घर में जब एक बहुत शुभ काम होवे ना, तो निरे काम आमे भाई, सखी हुआ में, सास नंद हुआ में, बिनहु सिमटा में, सखियन को सिमटा में, और गोप हुआ में, कि भाई हम बधाई तो कैसे पीछे रह जाएंगे। तो
0: तो कहे ना धुनी सुनाई दे तो बड़ा आनंद आवे कि बधाई की कहीं धुन बज रही है।
2: विगत 27 अगस्त को समूचे ब्रज
3: काग के भाग कहा कहिए, अरे हाथ सो ले गयो माखन रोटी। ऐसे कन्हैया की ये लीला भूमि ब्रज भूमि, और हम तो ये कहे अहो विधिना तो पे अचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजो यही ब्रज बसिबो, तधिको दान मिस ब्रज की भीथन में, जक झोरन अंग को अंग अंग को परसबो, अहो विधना तो पे अचिरा पसार मांगू। भैया जैसे आप देख रहे हैं जगह जगह गाए वो बजाए वो थरक वो यहाँ है रहे हो, हम तो यही कहें बैकुंठ में तो नारायण भगवान दुर्लभ है और हमारे ब्रज में अत्यंत सुलभ है। ये सुलभ क्यों है? बैकुंठ में तो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हु जाहे निरंतर ध्यामे, और हमारे ब्रज में ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाच पे नाच नचावे।
0: विजय बहन समझ में आ गई?
1: बिल्कुल बहन, देखो भगवान
0: हमारे
1: की
0: ब्रज में जब जन्म भयो है तो कहो जाए कि लोग तपस्या करें
1: बिल्कुल बहन
0: ठाकुर जी के दर्शन पावे को, लेकिन हमारे ब्रजवासी प्रतिदिन हर पल हर क्षण
1: भगवान को याद करें और सखा सहित खेलें, क्योंकि
0: और अपने मन में महसूस करें।
1: बहन बिल्कुल सही बात है, तभी तो रस खान जी ने कही है कि मोर हूँ बनइयो तो बनइयो श्री वृंदावन को, कूक कूक आठो याम राधा नाम गांगो
0: गांगो।

0: तो बहन आनंद आयो बधाई को।
1: बहन आनंद, इतनो आनंद कि ऐसा लग रहा है कि पैर धरती पे है ही ना है।
0: हाँ तो बहनों आप सुन रही जगदीश ब्रजवासी के स्वर में जा बधाई लोकगीत को।
1: और बहन देख जा मिट्टी में कितनी खुशबू है कि थिरकवे को यहाँ बैठे बैठे ही मन कर रहे हो है।
0: तो बहन बिल्कुल, लेकिन बातें पहले थोड़ी सी जानकारी।
1: बिल्कुल बहन।
2: कम ब्याज पे लोन चाहिए वो भी ऐप से, वाह।
3: अनजान ऐप से बचें।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
6: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: क्या बात है विजय बहन, तुम्हारो आज कुछ ज्यादा ही मन प्रसन्न है रो। तुम गुनगुना रही हैं, बार बार गुनगुनाई रही हैं, मतलब अभी तुम्हारा जी ना भरो बधाई सुन के।
2: नहीं बहन, मन नहीं भरो, आज तो सच्ची में मन भर रहे हो ना है।
1: मतलब तो, मन कर रहा है सुनते जाओ
2: तो कुछ सुनवाई दे बहन।
1: बिल्कुल।

0: विजय बहन, अब बहुत बधाई ले ली तुमने, आनंद भी आएगा कार्यक्रम सुन के, और हमारी बहनन को भी बहुत आनंद आया होगा,
1: बिल्कुल
0: नंद
1: बहन।
0: सबको आनंद लेके। तो बहन अब घरमाऊ चलना है कि ना है?
1: ना बहन, घर को चलना और कामों देखने हैं।
0: हाँ, चौकी बहन बधाई तो हमारे घर में तो बजेगी,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बहन,
0: घर में बधाई बजानी है ना।
1: बिल्कुल। तो अपने जा घर अंगना कार्यक्रम को हम यहीं विराम दे, मैं हमारी सभी बहनान को
0: राम राम।
1: राम राम।

0: अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर अंगना। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं सामुदायिक शिक्षा गान पाठ। बोल है ये वक्त की आवाज है मिलके चलो। गीतकार हैं श्री प्रेम धवन। आइए सुनते हैं सामुदायिक शिक्षा गान पाठ।
1: आओ बच्चों, आज तुम सबको हम एक हिंदी गीत सिखाएंगे। इस गीत के कवि हैं श्री प्रेम धवन और इस गीत की धुन श्री कानू घोष ने बनाई है। पहले इस गीत के शब्द लिख लीजिए। चलिए अब लिखना शुरू करें। ये वक्त की आवाज है, ये

0: वक्त की आवाज है, मिल के चलो। फिर से सुनिए, ये वक्त की आवाज है, मिल के चलो। ये जिंदगी का राज है, मिल के चलो। ये जिंदगी का राज है, मिल के चलो। मिल के चलो, मिल के चलो, मिल के चलो, चलो भाई। पहला अंतरा, आज दिल की रंजिशें मिटा के आओ। फिर से सुनिए, आज दिल की रंजिशें मिटा के आओ। आगे लिख लीजिए, आज भेदभाव सब भुला के आओ। आजादी से है प्यार, इन्हें देश से है प्रेम। कदम कदम से और दिल से दिल मिला के आओ। फिर से सुनिए, कदम कदम से और दिल से दिल मिला के आओ। अब दूसरा अंतरा, जैसे सुर से सुर मिले हो राग के, जैसे सुर से सुर मिले हो राग के, जैसे शोले मिल के बढ़े आग के। फिर से सुनिए, जैसे सुर से सुर मिले हो राग के, जैसे शोले मिल के है आग के। ये जिंदगी का राज है, मिल के चलो। ये जिंदगी का राज है, मिल के चलो। मिल के चलो, मिल के चलो, मिल के चलो, चलो भाई। आज दिल की रंजिशें मिटा के आओ। आज दिल की रंजिशें मिटा के आओ। आज भेदभाव सब भुला के आओ। आजादी से है प्यार, जिन्हें देश से है प्रेम। आजादी से है प्यार, जिन्हें देश से है प्रेम। कदम कदम से और दिल से दिल मिला के आओ। दूसरा अंतरा, जैसे सुर से सुर मिले हो राग के, जैसे शोले मिल के बढ़े आग के। जिस तरह चराग से जले चराग, वैसे चलो भेद तेरा मेरा त्याग के। मिल के चलो, मिल के चलो, मिल के चलो। अब श्री कानु घोष इस गीत की धुन आपको सुनाएंगे।
1: प्यारे बच्चों, एक गीत मैं और मेरे साथी श्री फारूक पहले गाकर सुनाएंगे। तुम सब उसी धुन में गाओगे। एक गीत आलाप से आरंभ होता है, अब ध्यान लगाकर सुनो।

अभी आप सुन रहे थे सामुदायिक शिक्षा गान पाठ के अंतर्गत हिंदी भाषा पाठ, बोलते ये वक्त की आवाज़ है मिलके चलो। गीतकार थे प्रेम धवन। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: यही विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि जो समाज अपने शिक्षकों का सम्मान करता है वो सही मायनों में प्रगतिशील समाज होता है।
1: हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे

0: भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित ना हो।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक अग्रिम पंक्ति के राष्ट्र निर्माता हैं।
0: द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर हमारे देशवासी उनके प्रति एवं समस्त शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। जो समाज शिक्षकों का सम्मान करता है वो समाज सही अर्थ में प्रगतिशील होता है। शिक्षक के बीच आकर मेरे अंदर विद्यमान विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही जीवंत हो जाता है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए 27 राज्यों 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से चुने गए 48 स्कूल शिक्षकों को ये पुरस्कार दिए गए। उन्होंने उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। इनमें केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों के 12, राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 5 तथा पॉलिटेक्निक के 4 शिक्षक और संकाय सदस्य शामिल हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में देशभर के शिक्षकों को उनकी निस्वार्थ सेवा और भारत के भविष्य को आकार देने में उनके योगदान के लिए नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में मुलाकात की झलकियां साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि शिक्षकों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर विद्यार्थी के भीतर का बचपन जीवंत रहे। इसके लिए शिक्षकों को अपने भीतर के बच्चे को भी जीवित रखना होगा। श्री मोदी ने बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन समय की आदत पर चिंता जताई।
2: एक विषय है स्क्रीन टाइम, अब ये एक प्रकार का एडिक्शन है। मेरे मन में एक विचार आता है, या तो वो बच्चा खेल कूद के अंदर बहुत रुचि लेने लग जाएगा। फिर खेल कूद मतलब वो वीडियो गेम नहीं, मैंने एक्चुअली मैदान में वो खेलना, तो धीरे धीरे वो उसमें से बाहर आ सकते। और ऐसे में क्रिएटिविटी की तरफ हम बच्चों को जितना ज्यादा जोड़ेंगे, और हमने ऐसे कुछ न कुछ कार्यक्रमों को आदत बनानी चाहिए।
1: प्रधानमंत्री ने नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे पर भी चिंता व्यक्त की।
2: ड्रग्स का मामला बड़े शहरों में या यूनिवर्सिटी में रहा सा नहीं, पता ही नहीं किसी को क्या है, कोई आकर के दे देता है। क्या उस संबंध में लगातार आज के जो आप टीचर्स हैं, क्या अवेयरनेस उसके कारण क्या भय है? प्रकार से मैं पूरे शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए, और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते।
1: प्रधानमंत्री ने स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता का भी उल्लेख किया।
2: मैं काशी का सांसद हूँ, तो मैंने वहाँ एक अभियान लिया ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का, और मुझे खुशी है कि इन दिनों महिलाएं सामने से आकर के अपने विषय में चेकअप करा, पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। दूसरा एक अच्छा अनुभव आया, अभी तो एक दिन में मैक्सिमम लोगों का चेकिंग करने का ग्रीनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने रजिस्टर किया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए बच्चों को कक्षा से बाहर ले जाने और उन्हें वास्तविक जीवन के कौशल तथा विभिन्न कार्यों से जोड़ने के महत्व पर जोर दिया। गृह मंत्री अमित शाह, शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिक्षक दिवस के अवसर पर देशवासियों और शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि शिक्षक पीढ़ियों से विद्यार्थियों को ज्ञान की राह दिखा रहे हैं और देश की निरंतर प्रगति में योगदान दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक वीडियो संदेश में कहा कि शिक्षक ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास के साथ छात्रों के भविष्य को सशक्त बनाते हैं।
3: इन शिक्षकों ने अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग तरीकों से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। किसी ने शिक्षण में नया प्रयोग किया है, किसी ने तकनीक का प्रभावी उपयोग किया है, किसी ने वंचित और कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के लिए काम किया, तो किसी ने विज्ञान, खेल, कला और कौशल के माध्यम से विद्यार्थियों की प्रतिभा को आगे बढ़ाने का काम किया है।
1: ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट

0: www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे समारोह को संबोधित भी करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। यहां वाणिज्य, अर्थशास्त्र और प्रबंधन की पढ़ाई होती है। कॉलेज की स्थापना 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का मंच कल शुरू हो गया। शिखर सम्मेलन के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां और सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं। आज मोटर कारकेट का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक मार्गों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। 22 से 28 सितंबर तक चलने वाले इस सत्र में वे भारत का पक्ष रखेंगे। ये उच्च स्तरीय सत्र ऐसे समय हो रहा है जब दुनिया कई भू राजनीतिक संघर्षों और बढ़ते आर्थिक दबावों का सामना कर रही है। हॉर्मुस जलडमरू मध्य में व्यवधान के कारण खाद्य और ईंधन की बढ़ती कीमतें भी चिंता का विषय बनी हुई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित त्रिशूली बाजार क्षेत्र से 5 वर्षीय बच्चे सहित 3 और भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। इससे शरणार्थियों की कुल संख्या 169 हो गई है। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं, वहीं 1907 भारतीय चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास इन शरणार्थियों को हवाई मार्ग से वापस लाने में सहायता कर रहा है। श्री जायसवाल ने कहा कि तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र में कोई भी भारतीय यात्री फंसा हुआ नहीं है। प्रवक्ता ने बताया कि 26 अगस्त को विनाशकारी बाढ़ के बाद से भारत ने नेपाल को लगभग 95 टन राहत सामग्री भेजी है। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार सहायता जारी रखेगा। आने वाले दिनों में भारत नेपाल सरकार के अनुरोध पर अधिक फोरेंसिक किट, बेली ब्रिज और अतिरिक्त सामग्री भेजने की योजना बना रहा है। बेली ब्रिज पूर्व निर्मित और मॉड्यूलर स्टील पुल होता है, जिसे कम समय में और बिना भारी मशीनों के आसानी से जोड़ा या स्थापित किया जा सकता है। इस बीच नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1344 हो गई है। खोज और बचाव अभियान जारी है। लगभग 5000 लोग अभी भी लापता हैं। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने तेलंगाना में एक महिला मंत्री को हटाए जाने को अन्यायपूर्ण बताया है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में डॉ त्रिवेदी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की चुप्पी पर सवाल उठाया। झारखंड में प्रश्न पत्र लीक का उल्लेख करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि ये सिर्फ प्रश्न पत्र लीक नहीं बल्कि प्रश्न पत्रों की लूट थी।
3: जो कुछ झारखंड में तथ्य प्रकाश में आया है उसने यह साफ किया है कि ये पेपर लीक नहीं बल्कि पेपर लूट है, और इस लूट की छूट कौन दे रहा है ये कम से कम राहुल गांधी जी को बताना चाहिए। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि जितने भी राजनीतिक दल दिल्ली में परीक्षा के विषय को लेकर दहाड़ और चिंगाड़ रहे थे, झारखंड के मुद्दे के ऊपर 3 बंदर हो गए हैं।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषय की पुनर्परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। अंग्रेजी की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। वाणिज्य की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। इन तीनों विषयों की परीक्षा पेपर में कुछ गलतियों की शिकायतों के बाद दोबारा आयोजित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। बिहार में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। लगातार नदियों के उफान पर रहने से नए क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा है। एक रिपोर्ट।
4: बिहार में गंगा, गंडक, कोसी समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। नदियों में उफान

0: से 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। पटना समेत 14 जिलों में हालात गंभीर बने हुए हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार पटना में गंगा नदी खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर ऊपर बह रही है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि इसके गांधी घाट गेज स्थल पर नया उच्च जल स्तर सृजित होने की आशंका है। इसके चलते नदी के प्रवाह क्षेत्र विशेषकर दियारा क्षेत्रों में दबाव बढ़ सकता है। विभाग ने संबंधित जिलों को आपदा के मद्देनजर सभी जरूरी एहतियाती कदम उठाने के देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज राष्ट्रीय राजधानी के अलग अलग हिस्सों में हल्की से तेज बारिश हुई। और अब बात खेलों की। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी आज शेंजन में। मेंस डबल्स सेमीफाइनल में मलेशियाई जोड़ी नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी कियोंग से खेलेगी। भारतीय जोड़ी ने कल क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रूप और एंडर्स स्कारूप रास्मुसेन को हराया था। एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच दुबई में रात 8 बजे से खेला जाएगा। महाराष्ट्र में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ा दही हांडी उत्सव आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: मुंबई और आसपास के जिलों में भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ा पारंपरिक उत्सव दही हांडी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस आयोजन में युवा प्रतिभागी मानव पिरामिड बनाकर ऊंचाई पर लटके दही, दूध या मक्खन से भरी मटकी फोड़ते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 1,60,000 गोविंदाओं के बीमा कवरेज की व्यवस्था भी की है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विकसित भारत का सपना शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से ही साकार होगा। उन्होंने 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने की अपील की। प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव अभियान जारी। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को 95 टन राहत सामग्री भेजी और अधिक राहत सामग्री के साथ बिलीब्रिज भेजे जाएंगे। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज शाम सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशियाई जोड़ी से होगा। और टी20 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज रात भारत और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत।

किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में अभी आपने सुना ये गाना। फिल्म का नाम था खुद्दार और इस गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत दिया था राजेश रोशन ने। और आइए अब सुनते हैं फिल्म कामचोर का ये गाना। इस गाने को स्वर दिए हैं किशोर कुमार और अलका याग्निक ने।

आशा भोसले और विनोद राठौर की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म बाजीगर का ये गीत। संगीत दिया था अनु मलिक ने। और आइए अब सुनते हैं मन्ना डे और लता मंगेशकर के युगल सरों में ये गाना। फिल्म का नाम है सत्यम शिवम सुंदरम। गीत लिखा है पंडित नरेंद्र शर्मा ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

जगजीत सिंह की आवाज़ में अभी आपने सुनी ये गज़ल, और इसी के साथ ही हमारा आज का सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

श्रोताओं, हम आपको एक बार फिर याद दिला दें, संध्या 7:30 पर हम आपको सुनवाएंगे महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत भारत बनाम पाकिस्तान के मध्य खेले जाने वाले पहले क्रिकेट मैच का दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से आंखों देखा हाल। मैच का आंखों देखा हाल आप मैच की समाप्ति तक सुन सकेंगे।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3 बजे हैं। हमारी ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। संध्या 5:30 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय शाम के 5:30 हुए हैं। इस मीटर पर हमारी दूसरी सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: जिसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, गिरकर भी हंसना फिर उठना सिखाया, दुनिया की ठोकरों से पहले ही हर मुश्किल से लड़ना सिखाया, किताबों से पहले जिसने जिंदगी का पाठ पढ़ाया, बिना किसी डिग्री के जिसने मुझे इंसान बनाया, पहला कदम माँ सिखाती है, फिर उम्र भर उसके लेसन दोहराती रहती है, वो पहली मेरी टीचर ही नहीं, मेरी हर जीत की वजह है। नमस्कार श्रोताओ, युववाणी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं हूँ आपके साथ इस कार्यक्रम में खुशबू। साथियों, गुरु का योगदान हमारे जीवन में अनमोल होता है। इस शिक्षक दिवस पर हम आपके ज्ञान और समर्पण को सम्मानित करते हैं। शिक्षक दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज है 5 सितंबर। आज का दिन हम सभी के लिए बहुत विशेष है। हम हर साल इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ये दिन भारत के महान शिक्षाविद, दार्शनिक और देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में

हम मनाते हैं। जब वो राष्ट्रपति बने थे तब उनकी कुछ छात्रों ने उनका जन्मदिन मनाने की इच्छा जताई। इस पर उन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन अलग से मनाने के बजाय यदि इस दिन को देश के सभी शिक्षकों के सम्मान में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो मुझे बेहद खुशी होगी। और तभी से ये दिन हमारी गुरुओं को समर्पित हो गया। साथियों, साधारण शब्दों में कहें तो माता पिता हमें जीवन देते हैं, लेकिन शिक्षक उस जीवन को सही दिशा और आकार देते हैं। एक शिक्षक सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं देता, बल्कि हमें अच्छा इंसान बनना, सही गलत में फर्क करना और जीवन की हर मुश्किल को डटकर सामना करना सिखाता है। आज का ये दिन हमारे उन सभी गुरुओं के प्रति कृतज्ञता और आभार व्यक्त करने का दिन है जो बिना किसी स्वार्थ के हमारे भविष्य को संवारने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। तो आइए हम सब मिलकर अपने सभी गुरुओं का आदर करें और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लें। एक बार फिर से आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, ये रही हमारी आज की बात और अब चलते हैं हम कुछ संगीत की दुनिया में और सुनवाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

साथियों, इस प्यारी सी गज़ल के बाद अब बात कर लेते हैं आज की बात के क्रम में। एक दिवस आज और भी है, आज है इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी यानी अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस। जी हाँ साथियों, अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस प्रतिवर्ष 5 सितंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को, गैर सरकारी संगठनों और हितधारकों को स्वयं सेवा और परोपकारी गतिविधियों के माध्यम से दूसरों की मदद करने के लिए जागरूक करना और एकजुट करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2012 में आधिकारिक तौर पर 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस के रूप में घोषित किया गया। इस तारीख का चयन मदर टेरेसा की पुण्यतिथि के सम्मान में किया गया था। मदर टेरेसा ने अपना पूरा जीवन गरीबी, बीमारी और अनाथ बच्चों की सेवा में समर्पित कर दिया। साथियों, दान का महत्व, दान केवल धन या भौतिक वस्तुओं का वितरण नहीं है, ये करुणा, सहानुभूति और मानवीय संवेदना का प्रतीक है। दान के माध्यम से समाज के वंचित वर्गों को भोजन, वस्त्र और आश्रय जैसी बुनियादी आवश्यकताएं उपलब्ध कराई जाती हैं। वित्तीय सहायता और स्वयं सेवा से गरीब बच्चों को शिक्षा और मरीजों को उचित चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त होती हैं। किसी जरूरतमंद की मदद करने से व्यक्ति को आत्मसंतोष और आंतरिक खुशी का अनुभव भी होता है। ये समाज में अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम करने में बहुत बड़ी भूमिका भी निभाता है। किसी वृद्धाश्रम, अनाथालय या सामाजिक संस्था में जाकर अपना समय आप जरूर दें। रक्तदान और अंगदान भी आप कर सकते हैं। किसी का जीवन बचाने के लिए रक्तदान या अंगदान का आप संकल्प भी जरूर लें। निर्धन बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना और कोई कौशल सिखाना, ये भी आप कर सकते हैं। वस्तुओं का दान दे सकते हैं, जैसे अपने पुराने कपड़े, किताबें, खिलौने। जरूरतमंदों को देना भी दान में ही आता है। अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस हमें ये सिखाता है और ये याद दिलाता है कि हमारा एक छोटा सा प्रयास किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। दान की भावना केवल एक दिन तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसे हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा भी होना चाहिए। आइए इस दिन ये संकल्प लें कि हम अपनी क्षमता के अनुसार समाज के कल्याण में सदैव योगदान देंगे। साथियों, ये तो हमारी आज की क्रम में बात रही दान दिवस की, और अब चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुनवाते हैं आपको सुखविंदर सिंह की आवाज में ये गीत।

साथियों, हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, कुछ बातों को वक्त पर छोड़ देना ही बेहतर होता है। जो आपको समझना नहीं चाहते उनसे क्या लड़ना, कभी-कभी खामोशी ही सबसे खूबसूरत जवाब होती है। गुस्सा पल भर का होता है और शांति उम्र भर की। जो अपने मन को शांत रखना सीख गया, समझो उसने ज़िंदगी को जीना सीख लिया। इन्हीं कुछ बातों के साथ अब कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। नमस्कार।

अभी युवा श्रोता अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युववाणी FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत संभव है। शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि जो समाज अपने शिक्षकों का सम्मान करता है वही सही मायने में प्रगतिशील समाज है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉप आउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है।
1: हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्शों को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। हमारे देश में प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट 12 वर्ष पहले लगभग 4.5% था। अब ये ड्रॉप आउट रेट नहीं के बराबर है। ये उपलब्धि शिक्षकों के प्रयासों से संभव हो सकी है। इस राष्ट्रीय सफलता के लिए मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत को विश्व की कौशल राजधानी के रूप में स्थापित करना और साथ ही ज्ञान शक्ति बनना देश की प्राथमिकता है। इस अवसर पर 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से चुने गए 48 स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों तथा संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन समय की आदत पर चिंता जताई। उन्होंने नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे पर भी चिंता व्यक्त की।
2: ड्रग्स का मामला बड़े शहरों में या यूनिवर्सिटी में रहा सा नहीं, पता ही नहीं किसी को क्या है, कोई आकर के दे देता है। क्या उस संबंध में लगातार आज के जो आप टीचर्स हैं, क्या अवेयरनेस उसके कारण क्या भय है? प्रकार से मैं पूरी शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते।
0: सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कानून, न्याय और विधिक शिक्षा पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने की घोषणा की। ये व्याख्यान श्रृंखला कानून, न्याय और समाज से संबंधित महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों पर संवाद और विचारों के आदान प्रदान के लिए नियमित मंच प्रदान करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत शिलालेखों और समुद्री व्यापार से लेकर गणित तक अपनी विरासत का अध्ययन करने और उसे दोबारा प्राप्त करने में पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ है। नई दिल्ली में वार्षिक इतिहास पुरस्कार समारोह और डॉ एस एल भैरप्पा स्मृति व्याख्यान में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत अब आत्मनिर्भर है और अपनी विरासत को समझने के लिए अब किसी और की अनुमति का इंतजार नहीं करता। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने सेवा नियमों को कर्मचारियों और उनके परिवारों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया। डॉ सिंह ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय सेवा फोरम की सीएसएस शील्ड पहल का शुभारंभ करते हुए कहा कि ये पहल कार्मिक मंत्रालय के उस व्यापक प्रयास के अनुरूप है।

0: जिसके तहत सरकारी सेवा प्रणालियों को कर्मचारियों और उनके परिवारों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाया जा रहा है। त्रिपुरा में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। शुरुआती चरण में प्रशिक्षण और योजना तैयार करने का काम होगा। घर घर सत्यापन 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक किया जाएगा। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1344 हो गई है। प्रभावित 8 जिलों में बचाव अभियान जारी है, जबकि लगभग 5000 लोग अब भी लापता हैं। अब तक 13000 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज शाम सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैन वी क्योंग से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

शाम 7:30 पर आप सुनेंगे महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत भारत बनाम पाकिस्तान के मध्य खेले जाने वाले पहले क्रिकेट मैच का दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से आंखों देखा हाल। इस कार्यक्रम को हम अनुप्रसारित करेंगे दिल्ली केंद्र से।

दिल्ली केंद्र से ही आप आनंद लेंगे राष्ट्रीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती का। समय याद रखिएगा, रात 9:30।

कार्यक्रम ब्रज साहित्य लेकर आएंगे आपके लिए शाम 6:15 पर। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत नंदोत्सव का प्रसंग। कथाकार होंगे धर्मवीर अज्ञानी।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी आप सुनेंगे शाम 6:50 पर। इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम करेंगे लखनऊ केंद्र से। संध्या वंदन ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:30 पर। संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम सुहानी शाम 7:31 पर। 8:00 आप सुनिएगा फिल्म संगीत।

एक ही फिल्म से ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8:30 पर। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे गुप्त फिल्म के कुछ गीत।

पर। कुछ देशभक्ति रचनाएं आप सुनेंगे रात 8:20 पर और शाम 6:10 पर।

ये था आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है संवेद स्वरों में देश गान।

0: अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वरों में देशभक्ति परक रचना। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत नंदोत्सव का प्रसंग। कथाकार हैं धर्मवीर अज्ञानी।
3: ओ

सुचिरलंकृत श्री सुखदेव जी स्वामी कह में हैं, हे परीक्षित, नंद बाबा बड़े मनस्वी और उदार स्वभाव के बारे हैं। पुत्र जन्म है वे पे, बिन को हृदय आनंद ते भर गयो। नंद बाबा ने विलक्षण आनंद में भर के स्नान कियो और पवित्र है के सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहन लिए। वाचित्वा स्वस्तैनम जात कर्मात्मजस्य वही कारयामाश विधवत पितृदेवार्चनम तथा। फिर वेद पाठी ब्राह्मणन को बुलवाए के स्वस्ति वाचन के संगई पुत्र को जात कर्म संस्कार करवायो, या के संगई संग देवता और पितरगणन की हु विधि विधान सो पूजा करवाई। नंद बाबा ने ब्राह्मणन को वस्त्र आभूषण सो सजाए के 2,00,000 गाय दान में दीनी है। रतन और सुनहरे वस्त्रन सो ढके भय तिल के 7 पर्वत हु दान किए। संस्कारन के द्वारा ही गर्भ शुद्धि हुए है, ये दिखाएवे के ताई अनेक दृष्टांत दिए गए हैं। जैसे समय सो नूतन जल अशुद्ध भूमि, स्नान सो शरीर आदि की शुद्धि, प्रक्षालन सो वस्त्र आदि की शुद्धि, संस्कारन सो गर्भ आदि की शुद्धि हुए है, तपस्या करवे सो इंद्रिय आदि की शुद्धि हुए है, यज्ञ करवे ते ब्राह्मण आदि की शुद्धि बताई है, दान करवे ते धन धान्य की शुद्धि हुए है और संतोष ते मन आदि द्रव्य शुद्ध होमे हैं। परंतु आत्मशुद्धि तो आत्मज्ञान के ही द्वारा संभव है। वह समय ब्राह्मण सूत मागध और बंदी जन आशीर्वाद देवे और स्तुति करवे।

लगे, गायक जन गीत गावन लगे, भेरी और दुंदुभी बार बार बजवे लगी, ब्रजमंडल के सिगरे घर द्वार बाहर और भीतर सों झाड़ बुहार दिए गए, उनमें सुगंधित जल को छिड़काव कियो गयो, उन्हें चित्र विचित्र ध्वजा पताका फूलन की माला रंग रंगीले वस्त्र

रंग रंगीले वस्त्र और पल्लवन की वंदवारन सो सजायो गयो। गाय बैल और बछरन के अंगन में हल्दी और तेल को लेप कर दियो गयो। गेरु आदि धातुन सो मोर पंख पुष्पहार नवल वस्त्र स्वर्ण जंजीरन सो सजायो गयो। हे परीक्षित सिगरे ग्वालवाल बहुमूल्य वस्त्र अंगरखा आभूषण और पगड़ी पहन पहन के हाथन में अनेक उपहार ले ले के बाबा नंद के द्वारे पे आए हैं। यशोदा जी के पुत्र भयो है जे सुन के गोपीन को भारी आनंद भयो। सिगरी गोपी भांत भांत के श्रृंगार करके आई हैं। गोपीन के मुख कमल बड़े ही शोभायमान लग रहे हैं। उनके मुख पे लगी भई कुमकुम केसर के समान लगे है। उनके नितंब बड़े बड़े हते। वे भेंट की सामग्री ले ले के जल्दी जल्दी यशोदा जी के द्वार पे चली आई। चलते समय बिन के पयोधर हिलते जामे। गोपीन के कानन में चमकती भई मणिन के कुंडल झिलमिलाए रहे हते। गले में सुवर्ण के हार हमेल जगमगा में हैं। या प्रकार नंद बाबा के घर जाती युवतीन की शोभा अवर्णनीय है। गोपीन के हाथन में जड़ाऊ कंगन की चमक को तो कहवो ही काहे। कानन में हिलते कुंडल और पयोधर गोपीन को स्वर्ग की अप्सरान सोहू अधिक मस्त चालबारी दिखा में है। नंद बाबा के द्वार पहुँच के चिरंजीवी होय चिरंजीवी होय भगवान या की रक्षा करे। शिशु को या प्रकार आशीष देती भई सब लोगन पे हल्दी तेल मिलो भयो पानी फेंकती जाती और ऊंची आवाज में मंगल गान हूँ गामती भई नृत्य कर कर के लाला की बलैयाँ लेती। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत के स्वामी हैं। उनके ऐश्वर्य माधुर्य बात्सल्य सब अनंत हैं। प्रभु जब बाबा नंद के ब्रज में प्रकट भये तब बिन के जन्म को महान उत्सव मनायो गयो। वह समय बड़े बड़े विचित्र मंगलमय बाजे बजाए गए आनंद में मतवारे। गोपगण एक दूसरे के ऊपर पानी दूध दही माखन फेंकवे लगे। आपस में मुखन सो मक्खन को पोतवे लगे। या प्रकार माखन फेंक फेंक के नंदोत्सव मनायो गयो। नंद राय जी स्वभाव सो ही परम उदार और मनस्वी हते। नंद बाबा ने गोप ग्वारियन को अनेक आभूषण और गौदान दे दई। सूत मागद बंधी इत्यादि नाचवे गायवे वारे और दूसरे गुणीजन उनके मोह की मांगी वस्तु दे के उनको सत्कार कियो। या सबको करवे को लक्ष्य बाबा नंद को केवल भगवान विष्णु को प्रसन्न करनो ही हो। मेरे या नवजात शिशु को सब प्रकार मंगल होय। नंद बाबा के अभिनंदन करवे पे परम सुंदर सौभाग्यवती रोहिणी जी दिव्य वस्त्र माला कुंडल आदि आभूषण सो सुसज्जित है के गृह स्वामिनी की तरह आयवे जायवे वारे इनको स्वागत करती भई इधर उधर विचर रही है। हे परीक्षित वाई दिन सो ब्रजमंडल में अब रिद्धि सिद्धि आप ही अटखेलियां करन लगी और भगवान श्री कृष्ण के निवास के कारण पूरो ब्रजधाम लक्ष्मी जी को क्रीड़ा स्थल बन गए हो।

0: गोकुल नाचत गोपी ग्वाल महा छब देखन गोकुल जइए। उड़त अबीर गुलाल गोपाल पे दूध दही सौ गोकुल नहिए। या छवि कोने जनेनन देखन जन्म करोरो न गोकुल रहिए।
1: या प्रकार गोकुल में भारी आनंद के संग पूरे ब्रजवासी ने लाला को जन्मोत्सव मनायो और जय जयकार करवे लगे। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जवानन को हाथी घोड़ा बूढ़ेन को पाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोकुल में पूरे दिन लूट भई माल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। देखवे कु देव आए झांकी कमाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
2: अभी आप सुन रहे थे ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम। आज आपने आनंद लिया श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत नंदोत्सव के प्रसंग। कथाकार थे धर्मवीर अज्ञानी। आइए अब सुनते हैं ब्रज लोकगीत।

आए के ब्रज बैकुंठ सब है बिसारो, तज बैकुंठ नयो बैकुंठ स्वयं श्री जी ने यहाँ रच डारो। तज के उदासी मेरे ब्रजवासी भजन करो मैं करूं इशारो। कोई न जाने महामहिमा ब्रज की महिमा कोई ब्रज जन जाने। कही तो अनेक अनु कही न गई ब्रज महिमा कोई ब्रज जन पहचाने। ब्रज जन्म बिना ब्रज बसवो करो ब्रज राज मिले बिनु अपनी ही ठाने। महिमा है जानी गुणी जन बोई ब्रज में बस के ब्रज राज की माने।

घनश्याम शर्मा के स्वर में आप सुन रहे थे ब्रजलोक गीत। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संध्या वंदन।

अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में आपने सुना चारधाम फिल्म का ये गीत। कार्यक्रम का अगला फिल्मी भजन हम आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल की ही आवाज़ में। फिल्म का नाम है शिव महिमा।

गीत गाता चल, स्वर था आरती मुखर्जी का। इसी के साथ संध्या वंदन कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे संध्या वंदन कार्यक्रम FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कृषि एवं किसान

कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम करेंगे लखनऊ केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: पंचो जय हिंद।
1: हिंद। अभिषेक भैया,
0: हाँ पुनीता बहनी,
1: भैया देखो, अपने पर्यावरण में संतुलन बनाए रखे के खातिर हमका फसलन के साथे साथ अपने खेत के रिमेड़न पे या कोनो खाली पड़ी जगह हो ऊपर और पेड़ पौधा उनके साथे साथ हमका लगावे के हैं, जिकी खातिर वे पर्यावरण के साथे साथ हमार आमदनी बढ़ा सके।
0: बिल्कुल सही बात कहो बहनी। देखो हम जब बिरवा अपने मेड़े पर लगाए दी थे तो उससे का होते जो मेड़ होते वह कटत ना हो कि माटी खराब ना होते, और दूसर जो तुम कहो तो रुपये पैसा कुछ मिल जाते तो हमारी सब किसान पंचन बद आमदनी के रू साधन नीक बन जाते।
1: और अभिषेक भैया, पहले रहा है जैसे हमारे सबके पास तमाम खेत जमीन होत रहा है, खेती योग्य जोन है, तमाम भूमि होत रहा है, मुला अब जो है जोत अपन कम होत जा रही है, जी की खातिर अगर हम कही कि अलग से हम बाग लगा देवे या अलग से नहीं हम अनाज उत्पादन कर लेवे तो वो थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। लेकिन अगर हम खाली फसल उत्पादित करवे, बिरवा बिरुख ना हुई है तब वो भैया काम न चली, तो इसके लिए जरूरी है कि अपने पर्यावरण में संतुलन बना रहे।
0: बिल्कुल सही बात दीदी आप बता रही हो, और देखो इमा कुछ हमका सबका अलग तेने करे जरूरत नहीं होते, और बहनी सरकारों इके साथ में यहाँ सब्सिडी देत है, बिरवा उपलब्ध करावत है कि अगर कृषि वानिकी आप खेती पाती के काम के साथ में यहाँ कह रहे हो तो उनके खातिर सब्सिडी देते है, और बिरवा उपलब्ध करावत है कि आप बिरवा लगाए कि यहाँ कृषि वानिकी अपने खेती पाती में यहाँ शामिल करो।
1: देखो हमने सबके खेती पाती के काम के खातिर हमका सबका तमाम तरह के जानकारी के आवश्यकता होते, तो भैया सुन ली जाए आज की खबरें।
2: उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण अब खेती से लेकर कारोबार तक दिखाई दे रहा है। योगी सरकार की विभिन्न योजनाओं और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से प्रदेश की 82 लाख से अधिक महिला किसान आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं। प्रदेश में 10,58,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह संचालित हैं, जिनसे बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इन समूहों के माध्यम से महिलाओं को कृषि, पशुपालन, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण और छोटे कारोबार से जोड़ा जा रहा है। सरकार की ओर से महिलाओं को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और बाजार उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जा रहा है। इसका असर यह है कि महिलाएं खेती और घरेलू कामकाज के साथ साथ अपनी आय बढ़ाने के लिए नए उद्यम शुरू कर रही हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए 2,510 उचित दर की दुकानें भी आवंटित की गई हैं। इस तरह उत्तर प्रदेश में ग्रामीण महिलाएं परिवार की आय बढ़ाने के साथ साथ गांवों की अर्थव्यवस्था और प्रदेश के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
3: अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: पुतला बोल रहे?
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब?
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहा,
4: परंतु सभी

0: डालें?
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
0: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
0: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: प्रीता बहनी, तो रही आज के लिए खबरें और अब बारी है आज के लिए बातें सुने के। आज के लिए बातन में यह है दुधारू पशुओं में बाझपन कारण और निवारण, इसके बारे में है बता रहे हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार त्रिपाठी भैया, तो सुना जाए आज के लिए बातें।
5: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, खेती के साथ साथ जहां पशुपालन आप कर रहे हैं वहां कुछ समस्याएं आती हैं, जैसे पशुओं में बाझपन की समस्या, इसके कारण क्या है और इसका निवारण कैसे हो, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश से पूर्व संयुक्त निदेशक पशु प्रजनन डॉक्टर पीके त्रिपाठी साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये पशुओं में बाझपन है क्या?
6: पशुपालक बहनों एवं भाइयों नमस्कार। ये बाझपन होता क्या है, पहले तो ये पशुपालक समझ लें, जो पशु प्रौढ़ हो जाते हैं लेकिन गर्मी पर नहीं आते हैं, गर्मी पर आते हैं तो वो कंसीव नहीं कर पाते हैं या बार बार बच्चा फेंक देते हैं, कुछ स्थायी बाझपन होते हैं जिसे बंधता कहते हैं। ये उसी जगह पर होता है जहां पर बच्चेदानी उनकी डेवलप नहीं होती है या उनके जो अंडाशय जो है अंडाशय नहीं होता है और भी अनुवांशिक कमियां होती हैं जिसके कारण होता है। अब प्रश्न उठता है कि बाझपन जो है जिसे अस्थायी बाझपन कहते हैं वो हो कैसे जाता है
4: जी?
6: पशुपालक बहनों भाइयों, आपने देखा होगा कि संतुलित आहार एक ऐसा आहार है जिसमें कि प्रोटीन की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट और वसा की मात्रा एक संतुलित होती है। कभी कभी प्रोटीन की कमी के कारण या कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण भी बाझपन हो जाता है। 70% बाझपन तो केवल खनिज लवणों की कमी से होता है,
5: यानी कुपोषण के चलते।
6: कुपोषण, और जब ये कमी होती है तो कुपोषण होगा, तो जिसके कारण पशु आप देख तो रहे हैं कि ऊपर से बहुत ही मोटा तंदुरुस्त है लेकिन अंदर से अंदरूनी तौर से वो कमजोर है, वो बच्चा नहीं दे पा रहा है। और जब हम इसको पूरा कर देते हैं तो पशु फिर से गाभिन होने के लायक हो जाता है। दूसरा कारण एक और है, कभी कभी होता क्या है कि एक पशु ब्या गया और ब्याने के बाद अगर वो 60 से 90 दिन पर गर्मी पर नहीं आया है तो ये भी बाझपन का कारण है। अब इसके पीछे क्या है कि बच्चेदानी के अंदर हो सकता है कि संक्रमण हो सकता है कभी कभी ये रुक जाती है उसको निकलवाने में हो, ये 2-3 कारण है
5: संक्रमण के चलते।
6: संक्रमण के कारण, और इसमें कभी कभी होता क्या है कि वो पशु दूध तो दे रहा है लेकिन हम उसको खाना नहीं दे रहे हैं तो उससे कमजोर हो जाता है। तो ब्याने के बाद अगर कमजोरी हो गई है तब भी बाझपन हो जाएगा।
5: डॉक्टर साहब, कभी कभी जैसे गाभिन हुआ जानवर और 2-3 महीना बाद पता चला कि संक्रामक गर्भपात हो गया।
6: हाँ, ऐसा है कि बाझपन का मुख्य कारण तो संक्रमण नहीं है लेकिन यह संक्रमण जैसे अंदर ब्रुसेलोसिस का संक्रामक गर्भपात का जो एक कारण है वो अगर अंदर रह गया तो 3 महीने पर वो अपना बच्चा फेंक देगा। विप्रोसिस, जिसके कारण ये भी संक्रामक रोग है, जिसके कारण 7-8 महीने पर बच्चा फेंक देगा, जिसको हम
5: स्थाई बाझपन है।
6: स्थाई है और जिसको कि हम सही कर सकते हैं। अब एक और तीसरा और कारण है ये हार्मोनल डिसबैलेंस। हार्मोन जो है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ये बनता है, जब इसका डिसबैलेंस हो जाएगा उस समय भी पशु जो है बच्चा फेंक देता है या गर्मी पर नहीं आता है। और चौथा जो बहुत ही जबरदस्त कारण है वो ये है मैनेजमेंट प्रबंधन, कि हमने हीट पर आई है और हमने समय से उसको गाभिन नहीं करवाया। पशुपालक भाइयों एक और चीज देखें कि 12 से 18 घंटे पर
5: हाँ
6: अगर उसको गाभिन करवा दिए चाहे सांड करवा या उसका कृत्रिम गर्भाधान करवा। दूसरा कारण ये है जो हमारा सीमेन है वीर्य है वो उतना गुणवत्ता वाला नहीं है, तो इसमें भी जब वो नहीं होगा तो फिर हम कहेंगे कि बाझपन हो गया। एक और है, गर्मी बीत चुकी है और गर्मी के समय में जब कभी गर्मी का या सर्दी का स्ट्रेस हो जाता है, तनाव हो जाता है, इसमें भी बाझपन की समस्या होती है।
5: डॉक्टर साहब, पशुओं में बाझपन की जो समस्या है उसके कारण पर आपने बहुत कुछ बताया, अब ये बताएं कि इसका निवारण हो कैसे?
6: अब जैसा कि मैंने पहली चीज बताई कि उसको संतुलित आहार दें, संतुलित आहार में प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दें। अब प्रोटीन कैसे हुआ, दाल की चूनी हो गई इसमें प्रोटीन है। दूसरा है कि कई ऐसे दालें जो हैं या दूसरे मक्के हैं उसके ऊपर वाला तो इसमें भी प्रोटीन, या सोयाबीन का मील जो होता है जिसमें प्रोटीन है, एक तो इसको बढ़ा दें। दूसरा खनिज लवण, जैसा देखा गया है कि गांव में अक्सर खनिज लवण नहीं देते हैं, तो अगर उसको 50 ग्राम खनिज लवण रोज

0: देना शुरू कर दें, छोटे से लेके बड़े जानवर, छोटा जो जानवर है उसको तो आप कम देंगे, जो बड़े जानवर हैं
1: गाय और भैंस,
0: गाय भैंस उसमें आप 50 ग्राम कम से कम, और जहां पर विकट समस्या होती है वहां पर तो हमारा जो पर्सनल अनुभव है 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर अगर आप बढ़ा दें 10 दिन तक और उसके बाद फिर 50 ग्राम आप कर दें तो निश्चित है कि वो पशु गर्मी पर आ जाता है। अब यहीं पर भी एक और है प्रश्न उठता है कि अगर हमने मिनरल मिक्सचर खनिज लवण दिया तो पशुओं के गर्मी पर तो आ जाएगा, रुकने के भी चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, एक तो ये है। दूसरा, जब कभी पशु ब्याए तो उस समय बच्चेदानी को साफ करने की औषधियां भी देनी चाहिए
1: ताकि उसके कचरा साफ हो जाए,
0: कचरा पूरा साफ हो जाए, बचे ना। और तीसरा एक और निवारण है जिसमें कि पशुओं को ठीक तरह से साफ जगह पर रखना, अब सफाई है नहीं और हमने उसकी एआई करवा दी तो उसमें भी गंदगी जा सकती है,
1: यानी प्रबंधन मत,
0: प्रबंधन तो बहुत ही, माने आप ये 70% खाना और 30% प्रबंधन, जिसमें कि सीमेन हुआ, वीर हुआ और या उसका सांड हुआ या दूसरी चीजें हुई वो इसमें आ जाती है।
1: डॉक्टर साहब, प्रबंधन की बात हो रही है तो आहार व्यवस्था भी महत्वपूर्ण है, खनिज लवण के साथ साथ सूखा चारा, हरा चारा भी
0: निश्चित। अब आपको एक छोटा सा टुटका मैं बता दूं कि गेहूं आप लोगों के घर में होता है, जहां कहीं पर बांझपन की समस्या हो पाव भर गेहूं को आप पानी में भिगो दें और उसका जब अंकुरण हो जाए तो उसको देना शुरू कर दें,
1: यानी जवारा गेहूं का,
0: जवारा गेहूं वो 15 दिन तक लगातार आप दें मिनरल मिक्सचर खनिज लवण के साथ, तो जितनी भी समस्याएं घरेलू चीज है, क्योंकि ये जवारा गेहूं से उसके अंदर की प्रोटीन की बढ़ जाएगी, ऊर्जा बढ़ जाएगी
1: और विटामिन ई,
0: विटामिन ई बढ़ जाएगा, जैसा आप जानते हैं कि ए बी डी ई ये बहुत आवश्यकता है तो ये बढ़ जाएगा। आपको बाहर से इंजेक्शन लगवाने की, जैसे कि कहते हैं कि इंजेक्शन लगवा लें, तो इंजेक्शन इन विटामिन का होता है, इंजेक्शन जो है इन मिनरल्स का, इन खनिज लवण का होता है, तो अगर आप इस तरह से अपने घर में करें तो निश्चित है कि कारण और निवारण दोनों हो जाएगा।
1: डॉक्टर साहब, जहां समस्या आती है कि जानवर कंसीव कर रहा है और उसके बाद गर्भपात हो जाता है, तो ऐसी अवस्था में पशुपालक भाई करें क्या?
0: जहां पर इस तरह के गर्भपात होते हैं तो वहां पर तो एक तो पहले कि डॉक्टर से चेक करवाना है कि क्या कारण है, क्यों गर्भपात, क्योंकि गर्भपात होने के कारण भी बहुत है। अगर जानवर बहुत तेज भागा उसमें कभी या गिर गया या एक्सीडेंट हुआ तो उसमें गर्भपात के कारण हो सकते हैं, तो एक तो ये देखें। दूसरा, इसमें डॉक्टर के पास जाकर के कंसल्टेंसी, कभी कभी होता क्या है कि 3 महीने पर गर्भपात हो गया और हमने सोच लिया कि ये तो ब्रुसेलोसिस या संक्रामक गर्भपात का कारण है, जबकि वो नहीं है, दूसरा और भी कारण है, जैसे कि बहुत ज्यादा गर्मी हुई उसमें भी गर्भपात हो जाता है गर्मी के सीजन में,
1: और जलवायु परिवर्तन,
0: जलवायु परिवर्तन बहुत जरूरी है कि जलवायु परिवर्तन हुआ उस समय भी गर्भपात का, कभी कभी ये खुरपका मुंहपका बीमारी होती है उसमें भी गर्भपात हो जाता है, तो ये सब कारण को जान करके तभी हम आगे बढ़े। और अगर 2-3 बार हो रहा है तो निश्चित आप समझिए कि ब्रुसेलोसिस संक्रामक गर्भपात की बीमारी है, जिसकी की जांच
1: राजकीय
0: पशु चिकित्सालय वहां पर आप कहें तो वहां से जांच का भी इंतजाम हो जाता है।
1: डॉक्टर साहब, पशुपालक भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे पशुओं में बांझपन, कारण और निवारण के बारे में, अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: पशुपालक बहनों भाइयों, मेरा मोबाइल नंबर है 94-15-15-28-98 94-15-15-28-98 94-15-15-28-98।
1: डॉक्टर पीके त्रिपाठी साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और पशुओं में बांझपन है क्या, इसके कारण क्या है और इसका निवारण कैसे हो, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभिषेक भैया,
3: हाँ बहनी,
2: चारों तरफ रिमझिम गिरती फुहारें और सब तरफ लहलहाते हुए धान के खेत, और वहम भैया अगर हरी हरी चुनरिया रंगाई दिन जाए तो भैया सब जने एक्के में मिल जाए,
3: बिल्कुल मजा आ जाए बहनी।
2: है ना, तो सुना जाए भैया यू लोकगीत, मोरी चुनरी रंगाई दो, स्वर है अनुज श्रीवास्तव और ममता सक्सेना का।

0: वाह बहनी, का बढ़िया गीत सुनाओ, सब पंचन का बड़ा निक लाग हुई, कहते ने हमका तो बहुत निक लाग है। तो हमू जान रहे कि पंच भैया जो सुन रहे हुए है ना,
1: हाँ?
0: एकदम गदगदाई हुई है
1: बिल्कुल
0: ने ने?
1: भैया।
0: तो अब देखो यो गीत तो सुनाए हो, अब फिर से अपने बीच के कोई किसान जोन अपनी खेती पाती में नए नए तकनीक का इस्तेमाल करके खेती पाती करत हैं, वह में के बीच में अपने पास आवत हैं, अपन जानकारी देते हैं, अपन अनुभव बतावत हैं, जिसे और किसान पंच भैया सीख लेते हैं।
1: तो अभिषेक भैया,

0: के किसान हैं रामकिशोर वर्मा भैया, जो उन बता रहे हैं औषधीय फसलों की खेती के बारे में।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आइए आज आपको ले चलते हैं सीतापुर जनपद के रामपुर मथुरा ब्लॉक के दबिंदापुर गांव, जहां औषधि फसलों की खेती के लाल रामकिशोर वर्मा भैया टेलीफोन लाइन पर हैं। रामकिशोर भैया नमस्कार। रामकिशोर भैया, आप औषधि फसलों की खेती के लिए जाने जाते हैं, ये बताएं कि कौन कौन सी फसल इस समय आपके खेत में है?
2: डॉक्टर साहब, इतने समय मंदसौड़ी, जलरंभी और थोड़ा जुरेली भी है।
1: और बकोपा?
2: बकोपा और जलरंभी जिसे बोलते हैं।
1: अच्छा, जल ब्राह्मी। तो
2: डॉक्टर साहब, जलरंभी
1: कितना कितना रकबा है आपका?
2: मंदसौड़ी का एक 5 एकड़ रकबा है डॉक्टर साहब, और जलरंभी जिसे बकोपा कहते हैं उसका 2 एकड़ रकबा है।
1: तो आज हम बकोपा उत्पादन के बारे में बात करेंगे कि इसकी शुरुआत हुई कब से?
2: बकोपा की शुरुआत डॉक्टर हमारे यहाँ हम 3 वर्षों से कर रहे हैं।
1: तो कहीं से प्रेरणा आपको मिली होगी?
2: आप मंदसौड़ी की खेती करते तो जो मंदसौड़ी की खेती डॉक्टर ने करवाया डॉक्टर साहब जी के पास में रहते हैं, तो उन्होंने जलबंदी के लिए वहां बताया कि ये आप खेती करिए, इसको नीचे खेती कर सकते हैं।
1: तो बकोपा की बुआई या रोपाई के पहले से लेकर के जल ब्राह्मी यानी बकोपा की रोपाई के पहले खेत की तैयारी से लेकर के और कटाई तक कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम करते हैं?
2: इसमें डॉक्टर साहब, जुलाई के महीने में बुआई सबसे बेहतर होती है, और उसकी बुआई धान जैसे खेत तैयार करके पानी में फिर जो है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके बिछेर दिया जाता है खेत में, उसके बाद झाड़ी से दिया जाता है।
1: यानी सकर्स पूरे खेत में बिछा दिए जाते हैं?
2: जी, सकर्स नहीं, ऊपर का जो हर्ब होता है।
1: अच्छा,
2: जो ऊपरी हिस्सा होता है उसी को काट करके फिर खेत में बिछेर देते हैं।
1: तो जमाव कितने दिन में हो जाता है?
2: जमाव तुरंत बोने के दूसरे दिन से ही उसकी बढ़वार शुरू हो जाती है।
1: उसके बाद?
2: उसके बाद फिर 1 हफ्ते में उसको जैसे खाद और पानी जो देना है, फिर बीच में निराई करना होता है, तो जो खरपतवार आते हैं और लेबरों द्वारा जो है खरपतवार निकाले जाते हैं।
1: तो फसल की भूख कैसे मिटाते हैं, कब मिटाते हैं, कितना मिटाते हैं?
2: फसल को डॉक्टर साहब सबसे ज्यादा पानी की जरूरत है इसको
1: जी,
2: उसके बाद में भी खाद देते हैं और आवश्यकता अनुसार नीम की खली या सरसों की खली भी दे देते हैं।
1: अच्छा, बीच बीच में
2: जी।
1: तो फिर इसके अलावा सिंचाई की व्यवस्था रखते हैं बराबर?
2: सिंचाई लगभग हफ्ते में 2 बार या 3 बार भी हो जाती है, जैसे बारिश में तो सिंचाई नहीं करना पड़ता है।
1: हाँ, तो पहली कटाई करते कब है?
2: पहली कटाई जैसे हम जुलाई के महीने में बुआई की है, तो पहली कटाई अक्टूबर या नवंबर के महीने में आएगी।
1: और उसके बाद कितने दिन के अंतराल पर?
2: फिर मार्च में आएगी, और मार्च के बाद कटाई आती है।
1: अच्छा, साल में 3 कटाई होती है। बकोपा उत्पादन में और कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम करते हैं पूरे साल आप?
2: पूरे साल में इसको खरपतवार से नियंत्रण करना, इसे लेबरों द्वारा खरपतवार निकालते हैं, उसके बाद कटाई से लेकर सुखाई तक ध्यान देना जरूरी है।
1: जो आप बकोपा यानी जल ब्राह्मी पैदा करते हैं उसको बेचते कहाँ है?
2: उसको जो हमारे चंपला वाले व्यापारी हैं, जैसे डाबर वाले हैं और कई कंपनियों के एजेंट जो आते हैं हमारे यहाँ लेकर जाते हैं।
1: हाँ, तो एकड़ में बात करें कि जो जल ब्राह्मी है यानी बकोपा उत्पादन आप कर रहे हैं 2 एकड़, उसमें लागत कितना गिरती है, उत्पादन कितना तक ले लेते हैं और आपका मुनाफा होता कितना है?
2: 1 एकड़ में पैदावार की बात करें तो 25 से 30 क्विंटल सूखी हर्ब एक कटाई में निकल जाती है।
1: पूरे साल में
2: एक कटाई में?
1: अच्छा, एक कटाई में
2: जी। और 3 कटाई की बात करें तो लगभग 70 से 80 क्विंटल 90 क्विंटल तक आ जाती है एक साल में।
1: और भाव क्या मिलता है आपको?
2: भाव इस बात 40 रुपए से 50 रुपए किलो तक रहता है।
1: तो कुल बचत कितनी होती है आपकी एकड़ में?
2: 1.5 लाख रुपए बचत हो जाती है, और लगभग 2 लाख रुपए से कम ही लगभग 1,80,000 के आसपास तीनों कटाइयों में खर्च आ जाता है। कटाई और जो हमारा खाद और पानी और लेबर सब कुल।
1: चूंकि पिछले कई सालों से लगातार आप औषधि फसलों की खेती कर रहे हैं।

0: तो कहीं से आपको प्रेरणा मिली होगी, कहीं से आपको सीख मिली होगी।
1: की खेती करते थे, तो उस जो डॉक्टर साहब हमारे यहाँ आते थे उन्होंने ही इसके बारे में बताया था, तो पहले थोड़ी एरिया से शुरू करे थे जी, फिर उसके बाद ही हमको लाभ मिला तो धीरे धीरे इसको हम बढ़ाना शुरू कर दिए।
0: सीमैप संस्थान से भी कुछ मदद मिलती है?
1: सीमेंट संस्थान से मदद मिलती है, जैसे ट्रेनिंग वगैरह है, जेलमिल की खेती ये करते हैं, वो सीमेंट के सहयोग से भी हमको लाभ मिला है।
0: जो अब तक का आपका तजुर्बा है औषधि फसलों की खेती का, उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
1: और किसान भाइयों बहनों को हम यही बताना चाहते हैं कि जो आम तो खेती हो रही है धान गेहूँ गन्ना जैसे, उसकी अपेक्षा औषधि एवं सघन फसलें बहुत ही लाभदायक है,
0: जी,
1: खेती का सौदा कम होता है लाभ अधिक होता है।
0: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: जी हमारा मोबाइल नंबर 94 52 57 9452386357, 92 52 38 57।
0: चलते चलते और क्या कहना चाहेंगे अपनी सफलता की कहानी के बारे में?
1: अब हम जो अब जब से औषधि खेती करना शुरू किए हैं तब से हमारा तो विकास हुआ ही है, साथ में जो हमारे खेत में 15 लेबर काम करते हैं उनका भी विकास हुआ है। तो हम सभी किसान भाइयों बहनों से यही कहना चाहेंगे कि जो परंपरा खेती खेती है इसको छोड़ करके औषधि एवं सघन फसलों की खेती अपनाएं।
0: राम किशोर भैया, आज आपसे इतनी अच्छी बातचीत हुई कि आप औषधि फसलों में मंडूकपर्णी और जल ब्राह्मी की खेती कर रहे हैं और प्रति इकाई क्षेत्र में आपको अच्छी आमदनी हो रही है, आप खुशहाल हैं। आज कार्यक्रम में इतनी अच्छी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रधानमंत्री किसान

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: अभिषेक भैया।
4: हाँ बहनी।
3: भैया हमारे सबका कार्यक्रम अपने पंच बहन के यहाँ कई स्वागत है या इके बारे में हम कुछ और बतावा चाहते हैं, हमसे पंचन से कुछ जानना चाहते हैं, हाँ। तो इके खातिर लिख लें हमारा पता,
4: हाँ।
3: तो भैया पता है कार्यक्रम किसान वाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन कोड है 226001।
4: तो भाई ना यू तो हमारा पता है जिसे पंच भैया जोन है चिट्ठी पाती लिख सकते हैं। मुलाई के साथ में जोन पंच भैया हमका ईमेल करा चाहते हैं तो वो हमारे ईमेल आईडी लिख लें। ईमेल आईडी है farmandhome@gmail.com।
3: तो भैया यू तो रहा अपने कार्यक्रम का पता और अब अपने कार्यक्रम का समय ही समाप्त हो रहा है। तो सब पंचन से लीन जाए आज्ञा।
4: जय हिंद।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
2: महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार तुम ईश्वर

0: ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं कर सकते जब तक स्वयं में विश्वास न कर लो। एपीजे अब्दुल कलाम का कथन है, लक्ष्य के प्रति एकाग्र समर्पण लक्ष्य को पाने का एकमात्र साधन है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: pacar. मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर उत्तर प्रदेश के 5 शिक्षकों समेत देश के 69 शिक्षकों को किया सम्मानित। कहा, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से साकार होगा विकसित भारत का सपना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 81 शिक्षकों का किया सम्मान। कहा, उत्कृष्टता और नवाचार को लेकर प्रतिस्पर्धा, आगे बढ़ाएं शिक्षक। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्राविधिक शिक्षा अध्यापन परीक्षा 2025 कल। राज्य के 6 जिलों में 2 पालियों में होगी परीक्षा। और प्रदेश के 24 जिले बाढ़ से प्रभावित। मुख्यमंत्री ने वाराणसी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश के 3 शिक्षकों समेत देश के 48 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होने वाले प्रदेश के शिक्षकों में गाजियाबाद की रेणु त्रिपाठी, कौशाम्बी की शालिनी कुशवाहा और बलिया के डॉक्टर इफ्तखार खान शामिल हैं। कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। इस श्रेणी में बीएचयू के प्रोफेसर आशुतोष मोहन और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर शंकर प्रसाद रथ को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए ही विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जो समाज अपने शिक्षकों का सम्मान करता है वह सही मायनों में प्रगतिशील समाज होता है।
1: हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित ना हो।
0: राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होने पर बलिया के डॉक्टर इफ्तखार खान ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि पुरस्कार मिलने के बाद छात्रों को और बेहतर मार्गदर्शन देने की ऊर्जा मिली है।
2: मैंने नवाचार शिक्षा पे ज्यादा बल दिया, न कि कॉपी कराने पे, और आज पुरस्कार मिलने से बहुत खुशी हो रही है। लेकिन साथ ही अभी कहेंगे, पुरस्कार मिलने के बाद और जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले शिक्षकों के साथ बातचीत की। इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि शिक्षकों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर विद्यार्थी के भीतर का बचपन जीवंत रहे। प्रधानमंत्री ने बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन समय पर चिंता जताई। उन्होंने स्क्रीन की लत कम करने के लिए खेलकूद, बाहरी गतिविधियों और रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा देने का सुझाव दिया।
3: एक विषय है स्क्रीन टाइम, अब ये एक प्रकार का एडिक्शन है। मेरे मन में एक विचार आता है, या तो वो बच्चा खेलकूद के अंदर बहुत रुचि लेने लग जाएगा। खेलकूद मतलब वो वीडियो गेम नहीं, एक्चुअली मैदान में वो खेलना, तो धीरे धीरे वो उसमें से बाहर आ सकता। और ऐसे में क्रिएटिविटी की तरफ हम बच्चों को जितना ज्यादा जोड़ेंगे, और हमने ऐसे कुछ न कुछ कार्यक्रमों को आदत बनानी चाहिए।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में 81 शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार और मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने शिक्षकों से उत्कृष्टता और नवाचार को लेकर प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्कूलों में पर्याप्त संसाधन और शिक्षकों के कल्याण को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया है।
4: जो टीचर टैलेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन को हमने जोड़ा, ये केवल ट्रिपल टी तक सीमित नहीं था। इसमें शिक्षक का सम्मान है, इसमें विद्यार्थी की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। और इसी कार्य को ध्यान में रखकर हम लोगों ने विद्यालयों में वे संसाधन उपलब्ध करवाए जिन संसाधनों का अभाव दशकों से हमारा ये शिक्षक समुदाय महसूस करता था। आपने देखा होगा 2017 में हमारे शिक्षा मित्रों का मानदेय था मात्र 3,000 रुपये, आज मिलता है 18,000 रुपये। अनुदेशकों का मानते अब 17,000 रुपया हुआ, लेकिन साथ साथ 5,00,000 का कैशलेस की स्वास्थ्य की सुविधा भी उन्हें दी गई है। राज्य

0: स्तरीय पुरस्कार प्राप्त इन शिक्षकों को आजीवन उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में प्रतिवर्ष 4000 किलोमीटर की निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। साथ ही इनकी सेवानिवृत्ति की सीमा भी 2 वर्ष बढ़ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनने के बाद पहली बार लखनऊ पहुंचे। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के विकास को रफ्तार दी है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्राविधिक शिक्षा अध्यापन परीक्षा 2025 कल 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा लखनऊ समेत राज्य के 6 जनपदों में होगी। परीक्षा के लिए प्रयागराज में 25, मेरठ में 33, कानपुर में 28 और गोरखपुर में 44 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा को नकलविहीन और शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 19 विभिन्न विषयों के व्याख्याता पदों के लिए होने वाली परीक्षा में परीक्षार्थियों को केंद्र पर 1 घंटे पहले पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषय की पुनर्परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। अंग्रेजी की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक होगी। वाणिज्य की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक होगी। समाजशास्त्र की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक होगी। इन तीनों विषयों की परीक्षा पेपर में कुछ गलतियों की शिकायतों के बाद दोबारा आयोजित की जा रही है। प्रदेश में भारी बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण वर्तमान में 24 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में वरुणा नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ राहत शिविर में पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और राहत सामग्री बांटी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार इस आपदा में पीड़ितों के साथ है। उन्होंने कहा कि सभी संवेदनशील क्षेत्रों में प्रशासन की ओर से राहत कार्य जारी हैं। बारिश और बाढ़ के कारण जनहानि, पशुहानि और मकानों को हुई क्षति का आकलन कर मुआवजे का वितरण किया जा रहा है।
1: आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर आज मैं स्वयं यहाँ पर आया हूँ वाराणसी में इस क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए। यहाँ पर बचाव के लिए 48 नाव, एनडीआरएफ, पीएसी और जल पुलिस की टीम भी 24 घंटे उन क्षेत्रों में सक्रिय की गई है। बाढ़ आएगी तो बीमारी भी आएगी, उसके बचाव के लिए मेडिकल के शिविर लगाए जा रहे हैं। जिनके पास आयुष्मान के कार्ड नहीं है वहाँ उन्हें आयुष्मान के कार्ड भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और फ्री में दवा भी उपलब्ध करवाई जा रही है।
0: राज्य की कई नदियां अब भी उफान पर हैं। बदायूं, गाजीपुर और बलिया में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं लखीमपुर खीरी और बाराबंकी में शारदा तथा अयोध्या और तुर्तीपार बलिया में घाघरा नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान के पार पहुंच गया है। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का जलस्तर घटने के बाद जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने बाढ़ के बाद जमा मलबे और गंदगी की सफाई कराने, पेयजल के लिए टैंकरों की व्यवस्था करने और विद्युत आपूर्ति बहाल करने के निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
2: मंदाकिनी की रिकॉर्ड बाढ़ ने रामघाट समेत तपोभूमि के कई इलाकों में भारी तबाही मचाई है। 7 दिन तक खतरे के निशान से ऊपर बहने के बाद नदी का जल स्तर घटा तो नुकसान की तस्वीर सामने आई। रामघाट में तुलसी मंदिर क्षतिग्रस्त हुआ। करीब 100 मीटर सड़क और लगभग 170 विद्युत पोल बाढ़ की चपेट में आए। फुट ओवर ब्रिज की एलईडी, पब्लिक एड्रेस सिस्टम और कैमरे भी बह गए। कई मठ मंदिरों और धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचा है। बाढ़ से जिले के 36 गांव प्रभावित हुए हैं और करीब 500 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्रशासन द्वारा सफाई, राहत और मरम्मत कार्य लगातार जारी है। अजय प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, चित्रकूट।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर उत्तर प्रदेश के 5 शिक्षकों समेत देश के 69 शिक्षकों को किया सम्मानित। कहा, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से साकार होगा विकसित भारत का सपना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 81 शिक्षकों का किया सम्मान। कहा, उत्कृष्टता और नवाचार को लेकर

0: प्रतिस्पर्धा, आगे बढ़ाएं शिक्षक। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्राविधिक शिक्षा अध्यापन परीक्षा 2025 कल, राज्य के 6 जिलों में 2 पालियों में होगी परीक्षा। और प्रदेश के 24 जिले बाढ़ से प्रभावित, मुख्यमंत्री ने वाराणसी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण, पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RBI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षा।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी।

किसी ने शिक्षक से पूछा, क्या करते हो आप? शिक्षक का सुंदर जवाब सुनिए। सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, और मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्ज खलिश, अरे मैं तो कच्ची ईंटों से ताज बनाता हूँ। इन्हीं कुछ पंक्तियों के साथ स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम शाम सुहानी में, और आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र खुशबू। शिक्षक दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं।

श्रोताओं, आपके संदेश हमें मिल रहे हैं और सबसे पहला संदेश हमने लिया है सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ का। अगला संदेश हमें मिला है आप सभी का करनाल से सुधीर, नूतन, किरण, मीनाक्षी। और अगला संदेश हमें मिला है आपका कलानौर से नरेंद्र, किरण, नितिन और मयंक शर्मा का। अगला संदेश हमने लिया है पंजाब से गुरदर्शन, लाल चलोत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद पोत्रा और गुरशबद का। ये संदेश हमने लिया है लाडली जी चौबे और रिमझिम इनके साथ हैं सक्षम चौबे। इन सभी का संदेश हमें मिला है लखनऊ मध्य प्रदेश से रामलाल, चंद्रवंशी, कृष्णा, काजल, मीनाक्षी, दिलीप और इनका संदेश हमें मिला है आकली दीवान मध्य प्रदेश से। ले लेते हैं अगला संदेश। ये संदेश हमें मिला है किसी भी गीत की फरमाइश इन्होंने लिखी है अनिल बुराड़े, उषा, अनुश्री, धनुश्री, पाड़र कवड़ा से इन्होंने हमें संदेश लिखा है। शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन, सुरेखा, शुभम, अक्षय। ये संदेश हमने लिया है अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा रामेकर, दिलीप, अक्षय, रुद्रा रामेकर। मगनपुर धनबाद रोड से बेबी मुस्कान, आलम राही, अली राही, लड्डू और सभी परिवार के सदस्य यशोदा। और अगला संदेश हमने लिया है आप सभी का। आप हैं सोनाली दुबे, मोनिका तिवारी, रानू मैडम, जबलपुर।

किशोर कुमार, लता मंगेशकर के स्वरों में आपने सुना आंधी फिल्म का गीत। और अब ले लेते हैं अगले संदेश। ये संदेश हमें मिला है लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से, कमलकांत मरावी, प्रमिला, नेहा, पुष्पराज और ऋषभ मरावी का। अगला संदेश ले लेते हैं सरधना मेरठ से, इनका संदेश हमें मिला है अनिल जैन, जैन साहब, संयम मुस्कान, मास्टर जीवीएम और

और अगला संदेश हमने लिया है हनुमानगढ़ राजस्थान से रजाक मोहम्मद, सामिम इमरान और इरफान खान का। ये संदेश हमें मिला है अकोला से अमोल इंगले, अर्चना सर्वेश, अधीरा और राजवी, इनके साथ समस्त परिवार हमसे जुड़ा है। और अगला संदेश हमने लिया है गंज डुंडवारा से एम फारूक शेख, शमा परवीन, साइमा फारूक, सरफराज, गुल फराज और बेबी मुस्कान। सुन लेते हैं आप सबकी फरमाइश का अगला गीत।

मोहम्मद अजीज की आवाज में आप सुन रहे थे स्वर्ग फिल्म का ये गीत। और अब ले लेते हैं आप सभी के संदेश। ये संदेश हमें मिला है आरती कुमारी आराध्या विजय सुरलकर महाराष्ट्र से। इन्होंने ये संदेश हमें लिखा है। मलकापुर से संजय और उषा पाटिल हमसे जुड़े हैं। अगले श्रोता हैं महाराष्ट्र से सोपान आड़ोकार पीएस नवारकर और मोहन करागले। ये संदेश हमारे पास आया है महाराष्ट्र से विजय शेगोकार गुरुजी जय श्री शेगोकार ऋषिकेश रेणुका उमाली से उद्धव और अनूप कुमार विजय सुरलकर रतनमाला सुरलकर ओम भैया आरती। इन सभी का संदेश हमें मिला है मोताला महाराष्ट्र से। अगला संदेश हम ले लेते हैं छत्तीसगढ़ से धनतेरगी से भागवत वर्मा शांति लीलावती विनीता और रुद्र वर्मा हमसे जुड़े हैं। किसी भी गीत की फरमाइश इन्होंने लिखी है। गंज डुंडवारा से एम खलीफ कुरैशी नुसरत बेगम एजाद कुरैशी बेबी हरीबा। ये संदेश हमारे पास आया है आप सभी का। आप हैं विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से सोपान तायड़े पीएस नवारकर वसंतराज भोजने महाराष्ट्र से। इन्होंने हमें संदेश लिखा है। जलालाबाद वेस्ट से

सुरेश गगनेजा, पूनम विशाल, दिशानी, निमित आहूजा। अगले पसंद करता है चंडीगढ़ से सतीश और विमला अनेजा। ये संदेश हमें मिला है कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता का पिपरिया से। चौखुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहद परवीन अब्बासी, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य हमसे जुड़े हुए हैं। उत्तम कुमार भगत, श्वेता, किसु, तासु, अर्णव, सत्यम, आनंद का ये मैसेज हमें मिला है झारखंड से। पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत हमसे जुड़े हैं। पटेल जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, देवी किशन, भावना, मानस और कनिका पटेल, किसी भी गीत की फरमाइश इन्होंने हमें लिखी है मोटका माफी जिला खंडवा से। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोल, निखिल कांगड़ा, तन्वी और अंकित कांगड़ा हमसे जुड़े हैं। नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवारकर, निर्मला, विशाल नवारकर हमसे जुड़े हैं। मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण, सोपान, आशीष हमसे जुड़े हैं। अगला संदेश प्रजापति मोनू प्रजापति, राजेंद्र, हरिश्चंद पुनिया, हनुमानगढ़ से जगदीश चंद्र प्रजापति, ये सभी हमसे जुड़े हैं किसी भी गीत की फरमाइश करते हुए। नांदेड़ से नारायण गायकवाड़, दयानंद, ओमकार और साई गायकवाड़ हमसे जुड़े हैं। अगले पसंदकर्ता श्रोता हैं खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मारकंडे, संजय, बेबी किट्टू, ये फरमाइश हमें भेजी है नबी हसन अब्बासी, शहनाज, नवेद, सुहेल, अनम, यशफ, रसीद वारसी, किदवई नगर, सिद्धपुरा टाउन से, जुबैर अली खान, सबीहा अंजुमन खान। चंडीगढ़ से शेफाली, शेफी, डेविस, विमला और सतीश अनेजा का मैसेज आया है। हिमाचल से हर्ष, विनय, विनीत और रोजस। डी अशोक कुम्भार, अविका, जीविका, सानू कुम्भार, अर्चना कुम्भार हमसे जुड़े हैं। श्री रामपुर से कोयते बस्ती पूनावले से अजय सोनवले, करिश्मा, अविका, साइना सोनवले हमसे जुड़े हैं किसी भी गीत की फरमाइश करते हुए। अगला मैसेज आया है मोहाली पंजाब से बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा का। सुन लेते हैं आप सबकी पसंद का अगला नगमा।

लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना पत्थर के सनम फिल्म का ये गीत। और अब ले लेते हैं आपके संदेश। तो ये संदेश हमने लिया है किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव, भानुप्रिया, कीर्ति भारती, वर्षा सुमन, देवाश्री, मेघा राशि और माधुरी किरण। अगला संदेश हमें मिला है अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली समर्थ और कार्तिकी कटनकर का। अगला संदेश गंज डुलवारा से आया है मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजिश, दानिश, अमन आफरीदी और राधा नामदेव। किसी भी गीत की इन्होंने फरमाइश हमें लिख भेजी है। दंतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र और नौखे लाल हमसे जुड़े हैं। ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, इन सभी का मैसेज आया है। नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से, गाजीपुर से प्रतीक, रोशनी और प्रांजल राय का संदेश हमें मिला है। गंज डुनवारा से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। अगले पसंद करने वाले श्रोता हैं नादुरा महाराष्ट्र से के हिवराले और साधना हिवराले, सबा अंसारी, शकील अंसारी, हिना अंसारी, बुशरा, गुलिस्ता, नंदनी, अंजलि, इन सभी का मैसेज हमें मिला है मथुरा से। अगले पसंद करता है मध्य प्रदेश उज्जैन से, इन्होंने हमें संदेश लिखा है भिरुलाल वाकतरिया धाकड़, भोला प्रवीण रियांश और प्रतीक वाकतरिया, बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजन और मयंक भाटिया हमसे जुड़े हैं सब्जी मंडी झज्जर से। अगला संदेश कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण, कपिल, कुणाल मेहरा का हमें मिला है दादरी गेट भिवानी से। ये संदेश बिट्टू भाटिया, रीटा, रजत, मयंक किसी भी गीत के लिए इन्होंने हमें फरमाइश लिख भेजी है। सैयद आलम हाशमी, गुलनाज, सलमा, असद, अरहाम और समस्त हाशमी परिवार हमसे जुड़ा है अजमेर शरीफ से।

अरविंद कुमार, गुड़िया, भव्या, निवेश, नियति, इन सभी का मैसेज हमें मिला है बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से। तो श्रोताओं, इसी के साथ शाम सुहानी कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शाम सुहानी FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

अमाल मलिक और अरिजीत सिंह की आवाज़ों में आपने सुना एयरलिस्ट फिल्म का ये गीत। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं नीरज श्रीधर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है 40-84।

40-84, अभी आपने सुना इस फिल्म का गीत। गायक कलाकार थे नीरज श्रीधर। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए अब सुनते हैं संवेद स्वरों में देश गान।

अभी आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में देशभक्ति परक रचना FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

गुप्त द हिडन ट्रुथ। जी हाँ, 1997 की एक ब्लॉकबस्टर हिंदी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन राजीव रॉय ने किया। ये अपने समय की सबसे बेहतरीन और यादगार मर्डर मिस्ट्री फिल्मों में से एक मानी जाती है। रिलीजिंग का साल था 1997। निर्देशक थे राजीव रॉय। मुख्य कलाकार भूमिका में नजर आए बॉबी देओल यानी साहिल सिन्हा, काजोल यानी कि ईशा दीवान, मनीषा कोइराला, शीतल चौधरी, परेश रावल और ओमपुरी। संगीत दिया बीजू शाह ने।

कहानी साहिल सिन्हा यानी बॉबी देओल के इर्द गिर्द घूमती है, जिसके सौतेले पिता जयसिंह सिन्हा की अचानक हत्या हो जाती है। हत्या का शक साहिल पर आता है क्योंकि हत्या से ठीक पहले उसका अपने पिता के साथ झगड़ा हुआ। पुलिस अधिकारी ऊधम सिंह यानी कि ओमपुरी साहिल को गिरफ्तार कर लेते हैं।

साहिल खुद को निर्दोष साबित करने और असली कातिल को ढूंढने के लिए जेल से भाग जाता है। इस सफर में उसकी बचपन की दोस्त ईशा और शीतल उसकी मदद कर

होती हैं। फिल्म के अंत में जो ट्विस्ट आता है उसने दर्शकों को हैरान कर दिया, क्योंकि कातिल वही इंसान निकलता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की। जी हाँ, काजोल का नेगेटिव रोल, काजोल ने इस फिल्म में मुख्य विलेन की भूमिका निभाई। वो फिल्म फेयर बेस्ट विलेन अवार्ड जीतने वाली पहली अभिनेत्री बनी थी।

अलका याग्निक और कुमार सानू के स्वरों में आपने सुना गुप्त फिल्म का ये गीत। इसी के साथ एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म थी गुप्त। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में सुने जा सकते हैं। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

अनिश्चितता के बीच 7.8% की जीडीपी वृद्धि भारत की आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के विद्यार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भावी पीढ़ी के उद्यमियों और वैज्ञानिकों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करने में शिक्षकों की भूमिका पर बल दिया। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित जल विद्युत परियोजना की सुरंगों में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत और नेपाल का संयुक्त अभियान जारी। महाराष्ट्र के मेलशेत और पेच बाघ अभयारण्य गिद्धों के लिए

0: सबसे सफल पुनर्वास स्थल बना। उत्तरी उत्तर पूर्वी राज्यों, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, बिहार, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में सोमवार तक तेज बारिश के आसार। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की 7.8% की तिमाही वृद्धि आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत अवरोध से नीतिगत गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में SRCC के शताब्दी समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि SRCC ने वर्षों से छात्रों की कई पीढ़ियों को सीखने, आगे बढ़ने और समाज में बदलाव लाने का अवसर दिया है।
1: जब कोई इंसान 100 वर्ष जीता है तो उसे अनुभवों का सागर माना जाता है, और जब कोई संस्थान 100 वर्ष का होता है तो वो उपलब्धियों और प्रेरणाओं का महासागर हो जाता है। अपनी 100 वर्षों की इस यात्रा में SRCC ने पीढ़ियों को गढ़ा है, उन्हें उज्जवल भविष्य से जोड़ा है। जो आए उन्होंने पढ़ा और जो निकले वो गढ़े हुए निकले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 14 करोड़ भारतीय मिलकर भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे। इससे पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने अपने भाषण में SRCC द्वारा वर्षों से उच्च स्तर बनाए रखने की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा कि वैश्विक बाजार में कुशल मानव संसाधनों की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री ने इसे युवा आबादी के लिए एक अवसर बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SRCC के शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली मेट्रो से गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षकों को सर्वोच्च सम्मान दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे भारत को सीखने और नेतृत्व करने में मदद करते हैं। शिक्षक दिवस पर आज एक लेख साझा करते हुए उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करना, उनकी जिज्ञासा को जगाना, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना और उनकी तर्क शक्ति तथा निर्णय क्षमता को निखारना शिक्षण के सबसे उपयोगी और फलदायी आयामों में से है। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रेरणा दायक शिक्षा से ही उद्यमियों, वैज्ञानिकों और रचनात्मक कलाकारों की पीढ़ियां तैयार की जा सकती हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉप आउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है।
2: हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्शों को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। हमारे देश में प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट 12 वर्ष पहले लगभग 4.5% था, अब ये ड्रॉप आउट रेट नहीं के बराबर है। ये उपलब्धि शिक्षकों के प्रयासों से संभव हो सकी है। इस राष्ट्रीय सफलता के लिए मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि भारत को विश्व की कौशल राजधानी के रूप में स्थापित करना और साथ ही ज्ञान शक्ति बनना देश की प्राथमिकता है।
2: चुने गए सुयोग्यों प्रशिक्षकों के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है। देश के विकास में एकेडमिक एक्सीलेंस, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत अधिक महत्व है। भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने के साथ साथ स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित करना हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता में से शामिल।
0: राष्ट्रपति ने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा को आगे बढ़ाने में सावित्री बाई फुले की महत्वपूर्ण भूमिका को भी याद कर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने स्कूली शिक्षा को शिक्षा प्रणाली का आधार बताया।
2: ज्ञान और कौशल तो कभी भी प्राप्त किया जा सकता, परंतु बचपन में ही सदाचार की शिक्षा देना अधिक प्रभावी सिद्ध होता है। आरंभिक कक्षा में बच्चों के बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक विकास पर निष्ठापूर्वक ध्यान देकर हमारे शिक्षक अच्छे विद्यार्थियों और कर्तव्यनिष्ठा नागरिकों की भावी पीढ़ियां तैयार करते हैं।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षकों का ये दायित्व है कि वे कुछ विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों में आत्म

0: विश्वास जगाएं।
1: कुछ विद्यार्थी गांव के किसी सामान्य स्कूल से शहर के बड़े स्कूल में आते हैं और थोड़ा असहज हो जाते हैं। कुछ विद्यार्थी स्वभाव से ही संकुचित होते हैं। कुछ विद्यार्थी में बहुत प्रतिभा होती है लेकिन उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। ऐसे सभी विद्यार्थी जो किसी कारण से कोई भी कमी महसूस करते हैं उनमें आत्मविश्वास जगाना और उन्हें आगे बढ़ाना शिक्षकों का विशेष दायित्व होना चाहिए।
0: समारोह में 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों के 48 चयनित स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों तथा संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कानून, न्याय और विधिक शिक्षा पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने की घोषणा की। ये व्याख्यान श्रृंखला कानून, न्याय और समाज से संबंधित महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों पर संवाद और विचारों के आदान प्रदान के लिए नियमित मंच प्रदान करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और नेपाल के बचाव दल का चिली में सुरंग में बचाव अभियान जारी है और सुरंग के भीतर से भारी मलबा, पानी तथा कीचड़ हटाया जा रहा है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने आज बताया कि बचाव अभियान को सुगम बनाने के लिए पास के स्याफ रुबेसी से सुरंग के प्रवेश द्वार तक एक पहुंच मार्ग का निर्माण भी चल रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास हिमस्खलन के कारण अचानक बाढ़ आई। इस आपदा ने उत्तरी और मध्य नेपाल में व्यापक तबाही मचाई जिससे घर, सड़कें, पुल और जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हुई। इस बीच विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1344 हो गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज स्वस्थ असहमति और विचार विमर्श की संस्कृति के महत्व पर जोर दिया। नई दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ब्रिक्स के सदस्य देशों और सहयोगी देशों के प्रतिनिधि मंडलों को संबोधित किया। एक रिपोर्ट।
5: न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उचित न्याय सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने याद दिलाया कि नालंदा विश्वविद्यालय एक समय में सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक केंद्र हुआ करता था, जहां विश्व भर के विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को बिना किसी भेदभाव या बाधा के प्रवेश दिया जाता था। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स को भी जीवंत नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाना चाहिए। मध्यस्थता पर एक सत्र के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने मध्यस्थता संस्थानों के बीच सहयोग को मजबूत करने, पेशेवर प्रशिक्षण, बहुभाषी क्षमता और न्यायाधीशों, मध्यस्थों, वकीलों और व्यवसायों के बीच संवाद को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि संवाद कायम रह सके, व्यापार जारी रह सके और ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच विश्वास बढ़ सके। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत शिलालेखों और समुद्री व्यापार से लेकर गणित तक अपनी विरासत का अध्ययन करने और उसे दोबारा प्राप्त करने में पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ है। नई दिल्ली में वार्षिक

0: इतिहास पुरस्कार समारोह और डॉ एस एल भैरप्पा स्मृति व्याख्यान में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत अब आत्मनिर्भर है।
1: इंडिया टुडे इज सेल्फ अश्योर्ड।
2: हमने इस मामले में किसी और की अनुमति का इंतजार करना छोड़ दिया है और अब हम अपनी विरासत का अध्ययन खुद कर रहे हैं। हम शिलालेखों को पढ़ रहे हैं, अपने समुद्री व्यापार के इतिहास को समझ रहे हैं और गणित के जरिए कहानियों को पूरी प्रसन्नता और सटीकता के साथ सामने ला रहे हैं।
1: टेलिंग दीज स्टोरीज विद रियल प्लेजर।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ एआई तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के मेलघाट और पेंच बाघ अभयारण्य बंदी प्रजनित गिद्धों के पुनर्वास के लिए भारत के सबसे सफल स्थलों के रूप में उभरे हैं, जहां जीवित रहने की उत्साहजनक दर दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने सोमवार तक पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उधर बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन प्रभावित है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने आज सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैन वी क्यूंग को 21-16, 18-21, 21-11 से हरा दिया। और महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पाकिस्तान ने 13 ओवर में 7 विकेट पर 45 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया, वैश्विक अनिश्चितता के बीच 7.8% की GDP वृद्धि भारत की आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के विद्यार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भावी पीढ़ी के उद्यमियों और वैज्ञानिकों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करने में शिक्षकों की भूमिका पर बल दिया। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित जल विद्युत परियोजना की सुरंगों में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत और नेपाल का संयुक्त अभियान जारी। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reiterates 7.8% GDP growth amid global uncertainty reflects India's economic strength. Addresses SRCC students in New Delhi. President Draupadi Murmu stresses teachers' role in nurturing independent thinkers to create future entrepreneurs and scientists. India and Nepal continue joint operation to rescue people trapped inside hydropower project tunnels in Nepal hit by flash floods.

सुखविंदर सिंह की आवाज में आपने सुना तेरे नाम फिल्म का ये गीत। कार्यक्रम का अंतिम गीत हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और अलका याग्निक के युगल स्वरों में। फिल्म का नाम है ये दिल आशिकाना।

ये दिल आशिकाना। इसी गीत के साथ सुहानी तराने कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

पृथ्वी और अन्य जीव जगत का जीवन दुख का दूसरा नाम है। अन्य जीवों के दुख उसकी अपनी परिधि से बाहर होते हैं, परंतु व्यक्ति के अधिकांश दुख उसके अपने ओढ़े हुए होते हैं। ईर्ष्या, क्रोध, भय,

0: कामनाएं, लालच, लालसा हर जीव के हृदय में स्थायी घर बनाकर रहते हैं। बड़े से बड़ा धनवान भी दुखों के इन मूल कारणों से बच नहीं सका है। कहने को ये सब विकार हैं, पर सांसारिक जीवन के लिए स्वीकार हैं। हर कोई जोगी या जोगिन बन नहीं सकता, पर हाँ, अगर कोई इन पीड़ाओं की साफ बयानी कर दे तो ये दुख कम हो जाते हैं। कहते हैं ना, दुख अगर किसी को बता दिया जाए तो आधा रह जाता है, और अगर उसमें दूसरे का दुख भी शामिल कर लिया जाए तो उसके बदले महज सुख ही नहीं मिलता, पद्म विभूषण, ज्ञानपीठ सरीखे बड़े पुरस्कार भी मिलते हैं। जी हाँ, छायावाद की प्रमुख लेखिका महादेवी वर्मा ने इस जीवन को दुख का सागर बताते हुए उस सत्य को पूरे सबूतों के साथ व्याख्यायित किया है। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। आइए महादेवी वर्मा के सुख दुख के इस संगम को विस्तृत रूप से समझने की चेष्टा करते हैं। वरिष्ठ लेखिका और दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की अध्यक्ष वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर सुधा सिंह से।
1: महादेवी को दुख इतना अन्यतम और प्यारा नहीं था। कह सकते हैं कि महादेवी के जीवन में दुख था, लेकिन दुख के पहले सुख की अनुभूतियां थी, और उन सुखद अनुभूतियों को सामाजिक जीवन में टकराहट की स्थिति में दिखाई देने के कारण महादेवी ने दुख को गले लगाया था, और यह दुख उनका केवल निजी दुख नहीं रह गया था बल्कि सार्वभौम दुख था, और स्त्री के संदर्भ से देखें तो समस्त स्त्री जाति का दुख था। महादेवी जितनी मुखर गद्य के क्षेत्र में श्रृंखला की कड़ियां नामक पुस्तक में होती हैं और स्त्री के तथा समाज के जीवन पर, सामाजिक संरचना पर जिस तरह से टिप्पणी करती हैं, वहां से यह सूत्र प्राप्त किया जा सकता है कि महादेवी की रचनाओं में दुख का जो झीना आवरण है वह किन कारणों से है। क्या वे कारण महादेवी द्वारा स्वयं निर्मित किए हुए थे, अथवा समाज की संरचना में ही कहीं न कहीं कोई दोष था और उस दोष के आधार के रूप में वे टिके हुए थे। एक उनकी कविता है, और इस पूरी कविता में दुख और दुख की व्याप्ति, साथ ही साथ सुख और सुख की कीमत, यह झीने तौर पर दिखाई देती है। इस कविता में महादेवी अपने जीवन के स्वप्निल संसार में एक युवा किशोरी आंखें खोलती है और उसकी परिणति एक दुखात्मक पृष्ठभूमि में होती है। उस पूरी कहानी को महादेवी ने निजी और सार्वजनिक दोनों स्तर पर साझा किया है। बांच ली मैंने व्यथा की बिन लिखी पाती नयन में, मिट गए पद चिन्ह जिन पर हार छालों ने लिखी थी, खो गए संकल्प जिन पर राख सपनों की बिछी थी। आज जिस आलोक ने सबको मुखर चित्रित किया है, जल उठा वह कौन सा दीपक बिना बाती नयन में। बांच ली मैंने व्यथा की बिन लिखी पाती नयन में। यह कैसी व्यथा थी और किसकी व्यथा थी जिसको बिन लिखे ही महादेवी ने किसी अन्य की आंखों में बांच लिया था। और आगे एक और कविता में कहती हैं, नयन की नीलम तुला पर मोतियों से प्यार तोला, कर रहा व्यापार कब से मृत्यु से यह प्राण भोला, साध हे तुम बन सघनतम सुरंग अब गुंठन उठा, गिन आंसुओं की रेख लेते। ये कविता एक तरफ अपने प्रिय को संबोधित है कि साध हे तुम, प्रिय को प्रिय नहीं कह रही, साध कह रही है। साध यानी साधना का संसार यानी इच्छा। महादेवी की कविता में साध, स्वप्न, शून्य, क्षितिज जैसे शब्द बार बार आए हैं, और साध की जो कीमत होती है यानी इच्छा रखने की, भाव रखने की, सामाजिक संबंधों के संदर्भ में सहज ही स्त्री के पक्ष से देखा जा सकता है कि वह कीमत कितनी भारी होती है, और महादेवी के लिए वह साध फिर एक सपना बन जाता है। लेकिन उस सपने को लेकर वे आगे बढ़ती हैं और कहती हैं, आंसू का तन विद्युत का मन, प्राणों में वरदानों का प्रण, धीर पदों से छोड़ चले घर, दुख पाथेय संभाले। महादेवी ने दुख को अपना पाथेय बना लिया, और जब वो सुकुमार थी, कोमल थी, उनके भीतर रमणीय भाव था और वे चाहती थी कि उनको सुख मिले, जैसे हर स्त्री की इच्छा होती है,

0: और सुख ऐसा ना हो कि अपने सुख से किसी को दुख हो। तो महादेवी इस तरह का सुख चाहती थी। वे साफ कहती हैं, इन ललचाई पलकों पर पहरा था जब व्रीड़ा का, साम्राज्य मुझे दे डाला उस चितवन ने पीड़ा का। उस सोने के सपने को देखे कितने दिन बीते, आंखों के कोश हुए हैं मोती बरसाकर रीते। अब आप देखिए यह जो भाव है कि वह सोने सा सपना कब का था, युवावस्था का, किशोरावस्था का, जब महादेवी सामाजिक संबंधों और संरचनाओं को, जो घर के बाहर के समाज में व्याप्त था, उसको उस तरह से नहीं समझ पाई थी, और तब उन्होंने वह सुनहरा सोने जैसा स्वप्न देखा था। लेकिन उस सोने जैसे सपने को देखे हुए भी युग बीत गए और अब दुख का कोश भी मोती बरसा बरसा कर रीता हुआ है। इस दुख की व्याप्ति हो गई है। यह दुख निजी दुख से अब संसार के दुख के लिए सन्नद्ध कर चुका है और सांसारिक दुखों का एक बड़ा कारण समाज में स्त्री की स्थिति है, जिस पर महादेवी की निगाह रही है। क्या अनुनय में, मनुहारों में, क्या आंसू में, उद्गारों में, आवाहन में, अभिसारों में, जब मैंने अपने प्राणों में प्रिय की छांह छिपा ली। मैंने तो अपने प्रिय की छांह को, यानी अपने लिए सुख के भाव को, अपने भीतर ही समाहित कर लिया है। तो अब क्या अनुनय और क्या मनुहार, क्या आंसू और क्या उद्गार, क्या आवाहन और क्या अभिसार। अब मेरा सुख तो मेरे भीतर है और इसलिए मैं अब जो कुछ कहती हूँ संसार उसके बदले मुझे मतवाली कहता है। और महादेवी ने अपनी एक कविता के बंद में स्वयं को अपने सुनेपन की मैं हूँ रानी मतवाली ये कहा है। और एक जगह और कहती हैं, भावे क्या अली अस्थिर मधुदिन, दो दिन का मृदु मधुकर गुंजन, पल भर का यह मधु मद वितरण, चिर वसंत है मेरे इस पतझर की डाली डाली, क्यों जग कहता मतवाली। संसार के लिए तो एक उलाहना है ही कि तुम मुझे मतवाली क्यों कहते हो, मैंने तो अपने पतझर की डाली डाली को ही वसंत का भाव दे दिया है, इसलिए मैं तो किसी से कुछ मांगती नहीं हूँ, मैंने तो अपने कष्ट को अपने लिए स्वयं चुना है और न मुझे इसके लिए किसी से कोई इच्छा है, न प्रतिदान की अभिलाषा है। तो कहती हैं कि अब मेरे लिए अगर कोई संदेश है तो वो और क्या हो सकता है, अब कहो संदेश है क्या, अब कहो संदेश है क्या, और ज्वाल विशेष है क्या, अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश है क्या, एक इंगित के लिए शतबार प्राण मचल चुका है, अब कहो संदेश है क्या और ज्वाल विशेष है क्या। वे कहती हैं कि मेरी कोई इच्छा इस संसार से कुछ प्राप्त करने की नहीं है, जब इच्छा नहीं है तो दुख का कारण नहीं है, आगे कौन सा चंदन चांदनी का देश है जिसका मुझे कोई दर्शन करवा सकता है या प्राप्ति करवा सकता है। तो इसलिए कहती हैं, पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। एक जगह और कहती हैं कि क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव ये मेरा मिटने का अधिकार। ये जो मर्त्य लोक है इसके बंधन से मुक्ति मैं नहीं चाहती, इसके दुखों से मुक्ति मैं नहीं चाहती, क्योंकि जब तक दुख समाप्त नहीं होते महादेवी का कार्यभार भी समाप्त नहीं होता। और ध्यान रखिएगा कि ये दुख महादेवी को क्यों है, ये तब तक पाठक को, श्रोताओं को समझ नहीं आ सकता जब तक वे न समझें कि महादेवी का यह दुख केवल मनुष्य मात्र होने का दुख नहीं है, देह धरे को दंड नहीं है। महादेवी देह धरने को यानी संसार में आने को दंड नहीं मानती, देह से उन्हें अनुराग है, प्यार है। लेकिन वो कहती हैं, स्मित बनकर नाच रहा है अपना लघु सुख अधरों पर, अभिनय करता पलकों में अपना दुख आंसू बनकर। सुख दुख की कैसी सुंदर अभिव्यक्ति है, इसे हम सहज ही यहाँ देख सकते हैं कि सुख है वह स्मित लाता है चेहरे पर, लेकिन दुख पीछा नहीं छोड़ता, वह भी साथ साथ आता है, वह अभिनय करता है पलकों में अपना दुख आंसू बनकर। इस तरह से सुख दुखात्मक जो भाव है महादेवी के यहाँ, वह युग्म रूप से साथ साथ चलते रहते हैं और कई बार बाइनरी अपोजिशन भी बनाते हैं, जब वे ही शब्द जो सुखात्मक भावों के लिए आते हैं कहीं कहीं दुखात्मक और बंजर अर्थों को ध्वनित करने लगते हैं। कि मैं दिन को ढूंढ रही हूँ, देखिए कितना बड़ा कंट्राडिक्शन है, मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उजियाली में, मन मांग रहा है मेरा सिकता हीरक प्याली में। हीरे के प्याले में सिकता की मांग हो रही है और महादेवी दिन के उजियाले में जुगनू को ढूंढ रही है। दोनों ही विरोधी स्थिति है, विरोधाभासी स्थिति है। और क्यों महादेवी की कविताओं में इस तरह की विरोधाभासी स्थितियों का वर्णन है? दुख स्थायी भाव की तरह दिखाई देता है, लेकिन दरअसल दुख के साथ उसके पृष्ठभूमि में सुख का एक गहरा झीना सोता भी बहता चलता है।
1: वो कहते हैं महादेवी तुम क्या लिखते हो, तुम ये सब क्या भूल जलूल।

0: बात देखते हो, सीधे बात देखो, लिखने आती नहीं थी उस समय भी नहीं आती थी। अब तो उसको शायद एमए पढ़ता विद्यार्थी, लेकिन तब तो आठवें दर्जे में पढ़ने वाले व्यक्ति की रचना थी, परंतु उसमें साफ बात नहीं कही है। और फिर उसके बाद थोड़ा दर्शन भी आया और भाव में संयम भी आया, भाषा भी दूसरी ही, निर्जा में जाके गीत का तत्व आ गया मुझे और मैंने मानव दिशा भी पा ली है। कभी कभी आश्चर्य होता है कि उस समय मैंने कैसे लिखा होगा। ये
1: है महादेवी, और महादेवी की कविता में अभिव्यक्त दुख का गागर और सुख का सागर।
2: वरिष्ठ लेखिका और दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की अध्यक्ष वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर सुधा सिंह ने ठीक ही कहा है कि महादेवी वर्मा की कविताएं भले दुख से जन्मी हो मगर सुख दामन की तरह हरदम साथ चलता रहा और वो दुख नीर बनकर सुख के एक बड़े सागर में विलीन हो गया और साहित्य को संवेदनाओं के अनेक धरातल दे गया। अगर रचनाकार अपनी बात को तमाम हकीकियों से जोड़ते हुए समाज के सामने रखता है तो उसके परिणाम सदियों तक सचेत और आंदोलित करते हैं। दुष्यंत कुमार भी एक ऐसे ही रचनाकार रहे हैं। अपने बोझ से झुककर दोहरे हो चुके पसीने से तर बतर मेहनतकश इंसान के बेहद बदरंग चेहरे को बेहद खूबसूरती से उभारती उनकी गजलों ने जो बरगद खड़ा किया उसके साये में धूप का कोई कतरा आज तक कहीं नजर नहीं आता। व्यवस्था के विरुद्ध इस सजग विद्रोह ने ही हिंदी गजल की मजबूत बुनियाद रखी। 27 सितंबर को उनके जन्म दिवस पर उन्हें उन्हीं के स्वर में कहे इस शेर से याद कर सकते हैं।
3: हर सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, हर किसी का पांव घुटनों तक सना।
2: अनेक विवादों के बीच दुष्यंत कुमार ने अपनी भाषा, अपने कहन और अपनी बहर से हिंदी जगत को जो नया आकाश दिया वो बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल है। सुनते हैं एक बातचीत, दुष्यंत कुमार, अपनी बहर, सबकी गजल। प्रतिभागी हैं वरिष्ठ कवि, समीक्षक और प्राध्यापक डॉक्टर शिव नारायण और वरिष्ठ गजलकार और समीक्षक श्री मंगल नसीम।
4: दुष्यंत दोस्तों एक ऐसा नाम है जो हिंदी गजल और उर्दू गजल के बीच में एक पुल बनाता है। उनकी एक किताब है गजल के ऊपर, साये में धूप, जिसमें तकरीबन 54 गजलें संग्रहित हैं और उन्होंने जीवन के हर हिस्से पे लिखा है। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ, या हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब मैं चाहता हूँ कि आप कुछ कहें दुष्यंत जी के बारे में।
5: बहुत बहुत आभार आपका मंगल जी, आपने बहुत अच्छी परिचय दिया उनके बारे में। गजल तो मुख्यतः उर्दू फारसी की विधा है
4: जी,
5: लेकिन उस विधा को फॉर्मेट को लेकर हिंदी में उन्होंने जितना काम किया
4: जी,
5: कहना चाहिए कि हिंदी का जो मिजाज था प्रतिरोध, अपने समय के प्रतिरोध को उन्होंने उस गजल से जोड़ दिया
4: जी।
5: और हिंदी में गजल की परंपरा यूं तो बहुत पुरानी रही है
4: जी।
5: जितने बड़े बड़े कवि हुए सबने गजलें कही हैं, वो निराला हो, पुरानी अगर हम चले जाएं तो कबीर तक, यहाँ तक कि जितने प्रगतिशील कवि हुए उन सबने भी गजलें कही। अब शमशेर बहादुर सिंह हो, केदार जी हो, यहाँ तक कि अभी हाल में उनका निधन हुआ रामदास मिश्र जी, उन्होंने भी गजलों में बहुत काम किया। लेकिन सन 70-75 के बीच दुष्यंत कुमार जब गजल लेकर आए, अच्छा गजलों को उन्होंने अपने जीवन के, एक तो ईश्वर ने यूं ही उनको बहुत कम समय दिया
4: जी,
5: लेकिन अंतिम समय में गजलें वो कह रहे थे
4: जी।
5: और उन्होंने जो समकालीन हिंदी कविता का मिजाज था लगभग उसी मिजाज और तेवर के साथ वो हिंदी गजलों में आए
4: जी।
5: और जैसे वो कहते हैं कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ, एकदम आम फहम भाषा में जिसे एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है, उन्होंने गजलों को उससे जोड़ दिया और जितने शेर कहे, जितनी गजलें उन्होंने कही, उसे लोगों ने अपने समय के साथ जोड़कर देखा, व्यवस्था के खिलाफ देखा, और वह जो उनका प्रतिरोध था वो हिंदी गजल की मुख्य आवाज बनी।

0: दरअसल क्या है डॉक्टर साहब, गजल का जो लुगती मानी, जो डिक्शनरी, जो
1: बिल्कुल
0: शब्द कोश का मतलब है गजल का, उसमें
1: जी
0: वो है औरत से बातचीत करना।
1: बिल्कुल बिल्कुल, गुफ्तगु।
0: अब इस बात को भी मैं समझता हूँ कि ठीक से नहीं लिया गया, औरत से बातचीत करना, इसका क्या मतलब? तो इसको सपाट रूप से ले लिया गया, और तब के शायरों ने, औरत से बातचीत करना, तेरी जुल्फें बहुत खूबसूरत हैं, तेरी आंखें बड़ी सुंदर हैं, तेरी पाजेब की झंका। लेकिन अब से कोई 25-30 साल पहले से आप हम देखें तो बहुत से कंटेंट उसमें शामिल हुए हैं गजल में जो श्रृंगार से अलग हैं।
1: ये आपने बहुत अच्छी बात कही नसीम जी। और जितने बड़े बड़े शायर, हालांकि तरक्की पसंद शायरों की कमी नहीं है
0: जी,
1: जिन्होंने मजदूरों की जबान को जो है और लोगों की जबान को भी जो है गजलों में लाया
0: जी,
1: लेकिन उर्दू गजल जो है वो पर्याय हो गया मोहब्बत के गुफ्तगू के लिए, श्रृंगार के लिए वो। लेकिन श्रृंगार तो संयोग पक्ष भी होता है, वियोग पक्ष भी होता है
0: जी, बिल्कुल।
1: पर दुष्यंत जिस समय हुए वो उबाल का समय था
0: जी, बिल्कुल।
1: लोग संतरस्त थे उस समय एक व्यवस्था से, और उसमें वो कोई परिवर्तन चाहते थे
0: जी।
1: इसलिए जब मतलब दुष्यंत कहते हैं उस समय, वो अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुमलाने लगे हैं, तो लोगों ने ऐसे नाजुक शेरों को भी जो है व्यवस्था परिवर्तन से जोड़ कर देखा। और बहुत सारे लोग प्रतिरोध का अर्थ विरोध समझते हैं
0: जी,
1: पर प्रतिरोध का जो वास्तविक अर्थ होता है वह होता है अपनी बातों को कह लेने की जिद।
0: जी,
1: ऐसा लगता है कि उनकी गजलों को पढ़ते हुए कि वक्त ने उनको अपने लिए जो है चुना कि तुम शेर कहो, तुम गजलें हमारे लिए कहो, और जो परिस्थितियां थी उसको उन्होंने आम आदमी के जबान पर ला दिया।
0: जो एक रक्षा वाला भी समझता,
1: रक्षा वाला भी समझ सकता है,
0: और एक प्रोफेसर भी समझता,
1: एक प्रोफेसर भी समझ सकता।
0: ये समझिए कि उनके जो प्रतीक और इस्तारे थे वो भी अलग थे। तू किसी रेल सी गुजरती है,
1: हाँ,
0: मैं किसी पुल सा थरथराता, अपने आप को पहचानना और दूसरे को और समझ के उसको शेर में ढालना।

0: देखिए, ये हमेशा याद रखना पड़ेगा कि दुष्यंत के व्यक्तित्व, शायराना व्यक्तित्व का जो संगठन है वो परिमल से हुआ
1: जी।
0: इलाहाबाद में उन्होंने पढ़ाई की थी और वो रहने वाले थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, तो ये जो टोन है उनके कहन कौशल का, ये इन दोनों जगहों का प्रभाव उस पर दिखाई पड़ता है
1: जी। जी,
2: दुष्यंत कुमार जन्मे भले राजपुर नवादा बिजनौर में हो, शिक्षा इलाहाबाद में प्राप्त की हो और कार्य क्षेत्र आकाशवाणी दिल्ली और भोपाल रहा हो, पर उनकी भाषा में समूचे भारत की महक है। उनकी गजल का माध्यम भले हिंदी रहा हो, मगर उर्दू जगत को भी उनकी भाषा अपनी सी लगी और खड़ी बोली वालों को भी। कुछ शब्द उन्होंने अपने भी गढ़े जो मुहावरे बनकर आज हिंदी के परचम को पूरी जगत में लहरा रहे हैं। हिंदी भाषा को आगे लाने में साहित्यकारों का ये योगदान सोने के अक्षरों में लिखा हुआ है। सुनते हैं एक वार्ता, हिंदी भाषा राजकाज से कामकाज तक। वार्ताकार हैं भाषा विशेषज्ञ डॉक्टर गणेश शंकर श्रीवास्तव।
3: किसी भी साहित्य के विकास में भाव, संवेदना, कथ्य और शिल्प

इन सबसे अधिक भाषा का योगदान रहता है। वह भाषा मातृभाषा भी हो सकती है और अनुवादित भी हो सकती है। अपनी भाषा के दर्द, पीड़ा, संवेदना और पक्ष ज्यादा हितकर इसलिए माने जाते हैं। आज भारतेंदु, निराला, प्रेमचंद, महादेवी, पंत, जयशंकर प्रसाद, बच्चन आदि की बदौलत हिंदी भाषा वैश्विक स्तर पर मान सम्मान को प्राप्त कर पा रही है और लगभग 145 देशों में अध्ययन अध्यापन का माध्यम बनी हुई है। साल का सितंबर महीना अस्तित्व में है और सरकारी महकमों में फाइलें हिंदी में रंगे जाने की कवायद जारी है। हम हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत सरकार और उसके अधीन संगठनों में हिंदी की कई वर्कशॉप आयोजित कर प्रतिभागियों को सरल हिंदी का सरकारी कामकाज में प्रयोग कैसे करें के गुर सिखाए जा रहे हैं। सीख तो लोग रहे ही हैं और हर साल सीखते हैं, लेकिन सवाल यह है कि उनका प्रयोग वर्ष पर्यंत करते हैं अथवा हिंदी पखवाड़े या सितंबर माह तक ही यह जागरूकता रहती है। गौरतलब है कि हमारा कानून सरकारी दफ्तरों में हिंदी के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संगठन के चीफ या उच्चाधिकारी को सौंपता है। साथ ही राजभाषा से संबंधित कार्यों में सहयोग, मार्गदर्शन एवं मॉनिटरिंग के लिए राजभाषा अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। यदि इस ढांचे पर हम गौर फरमाएं तो पाते हैं कि हिंदी को लागू करने के लिए दो स्तरों पर प्रतिबद्धता अनिवार्य है। पहला वह जो राजभाषा क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है, यानी कि संगठन का प्रमुख उच्चाधिकारी या मुख्य प्रबंधक इत्यादि, और दूसरे वे जिन्हें हम मुख्य रूप से हिंदी ऑफिसर या हिंदी के अन्य पदाधिकारियों के रूप में जानते हैं। एक तीसरा पक्ष उन कार्मिकों का है जो व्यवहारिक रूप से हिंदी का कार्य करते हैं। यदि सरकारी कार्यालयों की व्यवहारिक स्थितियों का अवलोकन करें तो यह तथ्य निकल कर आता है कि जहां उच्चाधिकारी या संगठन के प्रमुख के रूप में हिंदी के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी का प्रश्न है, वहां हमें उस संस्थान के प्रमुख की व्यक्तिगत अभिरुचियों और मिजाज की ओर ताकना पड़ता है। यदि संगठन का प्रमुख हिंदी भाषा के प्रति कुछ रचनात्मक लगाव रखता है तो वह इसके लिए प्रयास करता है, अन्यथा अधिकतर का रुख हिंदी के प्रति उपेक्षित ही रहता है। दुर्भाग्य की स्थिति तो तब बनती है जब ऐसे पदों पर हिंदी भाषी क्षेत्रों के ही लोग आसीन होते हैं, परंतु अपनी अंग्रेजियत की मानसिकता से वे मुक्त नहीं हो पाते। इसमें से कुछ अपने संगठनों में हिंदी को प्रोत्साहन की बात करते भी हैं, तो उनकी निगाह गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों पर गड़ी रहती है। हमें यह मानना होगा कि हिंदी का विकास तब तक नहीं होगा जब तक हम उसकी सेवा निस्वार्थ रूप से अपना पुनीत कर्तव्य समझकर न करें। यह समझना आवश्यक है कि राजभाषा हिंदी का प्रयोग केवल हिंदी अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक सरकारी अधिकारी और कर्मचारी का दायित्व है। यह भी देखना होगा कि हिंदी अधिकारियों को भी केवल अनुवाद की भूमिका तक सीमित न रखकर प्रशासनिक एवं राजभाषा संबंधी कार्यों में पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए। हिंदी कार्यशालाएं भी केवल औपचारिकता न बने, बल्कि नोट शीट, पत्र, टिप्पणियां और कार्यालयी आदेश सरल एवं स्पष्ट हिंदी में तैयार करने का व्यवहारिक प्रशिक्षण दें। साथ ही सरकारी हिंदी को कठिन और कृत्रिम बनाने के बजाय सरल, सहज एवं प्रचलित हिंदी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यह भी प्रायः देखा गया है कि हम अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करते हैं, जबकि आवश्यकता इस बात की है कि जो भी नीतिगत दस्तावेज बने वो मूलतः हिंदी में बने और बाद में उनका अंग्रेजी में अनुवाद हो, तब निश्चित रूप से राजभाषा हिंदी के स्वर्णिम दिन प्रारंभ होंगे। अंततः हिंदी के प्रयोग को अतिरिक्त बोझ या दंडात्मक व्यवस्था के रूप में नहीं, बल्कि सहज और जनोन्मुख प्रशासन के माध्यम के रूप में देखा जाना चाहिए। जब वरिष्ठ अधिकारी नेतृत्व करेंगे, हिंदी अधिकारी प्रभावी मार्गदर्शन देंगे और प्रत्येक कर्मचारी इसे अपनी जिम्मेदारी समझेगा, तभी राजभाषा का वास्तविक और प्रभावी क्रियान्वयन संभव होगा। हिंदी के राजकीय प्रयोग की दृष्टि से कार्य क्षेत्र स्वाभाविक रूप से सबसे मजबूत आधार प्रस्तुत करता है। इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। वहीं खा क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब तथा चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। वर्ष 2024-25 के वार्षिक कार्यक्रम में का क्षेत्र से हिंदी में मूल पत्राचार के लिए अत्यंत ऊंचे लक्ष्य निर्धारित किए गए। का से का क्षेत्र में 100%, खा क्षेत्र को 100% तथा गा क्षेत्र को 100% तक हिंदी में पत्राचार का लक्ष्य रखा गया। खा क्षेत्र के लिए भी का क्षेत्र को 90% और गा

0: क्षेत्र को 90% हिंदी पत्राचार का लक्ष्य निर्धारित था। हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में देने का लक्ष्य दोनों क्षेत्रों के लिए 100% तथा हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य का क्षेत्र में 75% और खा क्षेत्र में 50% था। हिंदी के राजकीय प्रयोग की तस्वीर को केवल का और खा क्षेत्रों की उपलब्धियों से नहीं आंका जा सकता। गा क्षेत्र में भी हिंदी का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। राजभाषा विभाग के उपलब्ध सरकारी आंकड़ों में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के गा क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार का प्रतिशत कहीं 20-30% के आसपास है, तो कहीं 40-50% से ऊपर और कुछ मामलों में 60-70% से भी अधिक दर्ज किया गया है। उदाहरण के लिए विभिन्न मंत्रालयों के आंकड़ों में गांव क्षेत्र में हिंदी पत्राचार 62%, 69% और 77% तक दर्ज हुआ है। यह स्थिति बताती है कि गांव क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग अब केवल प्रतीकात्मक नहीं रह गया है, यह अनेक कार्यालयों में हिंदी पत्राचार, टिप्पण और अन्य कार्यालयीन कार्यों में उसका प्रयोग हो रहा है। फिर भी गांव क्षेत्र में एकरूपता नहीं है, कहीं हिंदी का प्रयोग अपेक्षाकृत मजबूत है तो कहीं अभी अंग्रेजी का वर्चस्व अधिक है। इसलिए हिंदी को राजभाषा से कामकाज की भाषा बनाने की अगली महत्वपूर्ण चुनौती गांव क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग को और व्यापक, सहज तथा नियमित बनाना है। यह आवश्यक है कि राजभाषा के प्रति हम सिर्फ एक औपचारिक दृष्टिकोण न रखते हुए अपितु उसे अपना कर्तव्य बोध मानकर उसके क्रियान्वयन का प्रयास अपने कार्यालयों में करें, तो निश्चित रूप से वह दिन दूर नहीं जब वास्तविक रूप से राजभाषा हिंदी हमारे सरकारी कामकाज में 100% रूप से व्यवहारिक धरातल पर उतर आएगी।
1: अगर अपनी भाषा है तो संस्कृति भी अपनी होगी, संस्कार भी अपने होंगे, दोस्त भी अपने होंगे, समाज भी अपना होगा और देश तो सदा अपना रहेगा ही रहेगा, अखंड और हर दृष्टि से मजबूत भी होगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी कहा था, हिंदी भाषा देश की संस्कृति, एकता और भावनाओं को आपस में जोड़ने का सबसे बड़ा माध्यम है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शमसुर रहमान फारूकी, विष्णु खरे और बाल शौरी रेड्डी आदि सभी ने अपने साहित्य से अपनी भाषा और संस्कृति के विकास में अमिट योगदान दिया। इन सबको नमन करते हुए आपसे यहीं विदा लेते हैं। वाचन स्वर नीलम मलकानिया, प्रस्तुति सहयोग वंदना, आलेख और प्रस्तुति राम अवतार पैरवा की।

अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती। इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण हमने किया दिल्ली केंद्र से FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। तो श्रोताओं, अब आपको लिए चलते हैं महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत भारत बनाम पाकिस्तान के मध्य खेले जाने वाले पहले क्रिकेट मैच का दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से आंखों देखा हाल जानने के लिए।

0: a record which they would never have imagined would happen today. All out for 55, and a bit of a strain for the bowler Fatima, the physiotherapist, coming out with the analgesic spray, which is also called as the magic spray. But he's be time to just have a look and a post-mortem of the things with my Hindi colleague Dharmendramani Rajesh. 27 without loss, no doubt there were a couple of missed chances in the beginning, but thereafter once Shefali Verma got the breakthrough, there was nothing really to write home about for the Pakistan batters. It's really been a display which they will never like to think about. They will like to forget this day very quickly indeed, the Pakistan team. But I think the credit should go to the Indian bowlers, Sri Charni, Dipti Sharma, Pratika Rawal, who bowled exceedingly well. And I thought the Pakistan batters too should take some blame for the display in their batting. 55, this definitely was not a wicket where a team could be shot out for 55. It was a combination of good bowling and some lackluster batting by the Pakistan team that led to their downfall.
1: Yeah, Pakistan ki ballebazon ne puri tarah se aatmasamarpan kar diya Bharat ki gendbazon ke samne, gair zimmedarana strokes lagaye jiski wajah se unko is tarah se nuksan uthana pada aur sirf 55 run tak pahunch saki Pakistan ki team. Dusri taraf agar Pakistan ki gendbazi ki baat karte hain to akeli ladai इस समय पाकिस्तान की कप्तान की तरफ से लड़ी जा रही है फातिमा सना ने. तीनों के तीनों विकेट अभी तक भारत के झटके हैं. हालांकि थोड़ी सी फिटनेस की समस्या उनको आई है, फिजियो मैदान पर आई थी, अब मैदान से बाहर जा चुकी हैं और एक बार फिर से इस अधूरे ओवर को पूरा करने के लिए तैयार फातिमा.
0: सो हियर इज फातिमा नाउ आफ्टर बीइंग अटेंडेड टू बाय द फिजियोथेरेपिस्ट इनटू हरमनप्रीत, एंड दिस टाइम हरमनप्रीत कैन डू नो मोर देन टू पुश द बॉल बैक अलोंग द ट्रैक, देयर इज नो रन. सो फातिमा सना, despite having scored zero when Pakistan batted, has been like a one-woman army for Pakistan. She has been paddling the boat all by herself, giving all 100%, showing the intent, and managed to pick up three wickets, three important wickets of Smriti Mandhana, Shefali Verma and Pratika Rawal, up to Harmanpreet now and Dipti Sharma to take India home with just 22 degrees of 85 balls, as the next one has been pushed on the offside, not for runs. 6 overs gone, we are done with the power play. 34 for 3 India in quest of that magical figure of 56.
1: So Bharat ne 34 run banaye hain ab tak 3 wicket ke nuksan par. Power play ke 6 overs ki samapti ho gayi hai aur in 6 overs mein Bharat ki taraf se चार चौके आए हैं और एक छक्का भी आया है. सादिया इकबाल ने इन पावर प्ले में तीन ओवरों की गेंदबाजी की पाकिस्तान के लिए, जिसमें 16 रन दिए और फातिमा सना एकमात्र सफल गेंदबाज पाकिस्तान की कप्तान. तीन ओवर 17 रन और तीनों की तीनों सफलताएं उन्हीं के खाते में. नए ओवर की शुरुआत होगी, दीप्ति शर्मा स्ट्राइक पर होंगी और पावर प्ले के बाद का पहला ओवर. नशारा संधु आ रही हैं गेंदबाजी के लिए. भारत का रन रेट अभी है 5.67 का, रिक्वायर्ड रन रेट 1.57 का. वैसे तो सिर्फ औपचारिकता दिखाई देती है इस मुकाबले में, लेकिन जिस तरह से फातिमा शना ने गेंदबाजी की उससे थोड़ा सा रोमांच ज़रूर इस एशिया कप के मैच में आया है. लेकिन भारत अभी भी इस मुकाबले में काफ़ी आगे है. दीप्ति शर्मा स्ट्राइक के लिए तैयार हो रही है. 84 गेंदों में 22 रन चाहिए. इस ओवर की पहली गेंद नशारा संधू की, ओवर द विकेट, पहली गेंद को लॉक किया है मिड विकेट के ऊपर से और यह चौका आता हुआ दीप्ति शर्मा के बल्ले से. पहला चौका दीप्ति शर्मा का और इस चौके के साथ उनका स्कोर बढ़ता हुआ 8, भारत का स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन 3 विकेट के नुकसान पर. इस चौके के जरिए दबाव भी हटाने में दीप्ति शर्मा कामयाब रही हैं भारतीय टीम के ऊपर से, जो तीन विकेट के एक के बाद एक पतन के बाद मानसिक दबाव की स्थिति भारतीय बैटिंग पर आई थी. इस चौके ने उसको काफ़ी कुछ हल्का किया होगा और नशारा संधु निश्चित रूप से दबाव में आई होंगी, क्योंकि उन्होंने गेंदबाजी की शुरुआत की और उनकी पहली ही गेंद पर यह शानदार स्ट्रोक लगाया है दीप्ति शर्मा ने. दूसरी गेंद करने के लिए तैयार। नशारा संधू इस गेंद को, जो बेहतर गेंद थी, बैकफुट पर जाकर खेला मिडॉन की तरफ, रन के लिए जाना चाहती थी लेकिन वो रन था नहीं वहां पर, अपने अपने कदमों को वापस क्रीज में खींचा। अगर भारत की तरफ से पाकिस्तान के साथ मुकाबलों की बात करें तो दुबई इंटर

इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में क्या वो आंकड़ा रहा है हम आपको बताएंगे। फिलहाल पहली बार इस ओवर में इस गेंद को स्वीप किया दीप्ति शर्मा ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ एक रन के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ भारत का 39 तीन विकेट के नुकसान पर। दीप्ति शर्मा 9 पर पहुंच गई हैं। तो हम बात कर रहे थे इस दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच लार्जेस्ट विक्ट्रीज विकेटों के लिहाज से, तो उसमें भारत ने 6 विकेट से जीत हासिल की थी और 7 गेंद रहते वो जीत हासिल की थी, 106 रन का लक्ष्य हासिल किया था। धन्यवाद प्रदीप कुमार तुम्बटे आपका इस अहम जानकारी के लिए और इस ओवर में अगली बार गेंदबाजी के लिए तैयार। इस गेंद को पैडल स्वीप किया है एक रन के लिए, तेजी के साथ भागी है, फील्डर भाग रही है उस गेंद के पीछे, जब तक गेंद को रोक पाए दूसरे के लिए भी पलटेंगी। हालांकि ये दूसरा रन थोड़ा सा जोखिम भरा हो सकता था, लेकिन अंत में आसानी के साथ कप्तान हरमनप्रीत कौर ने वो दूसरा रन भी पूरा किया और इन दो रनों के साथ भारत का स्कोर पहुंच गया 41 रन तीन विकेट के नुकसान पर। अब थोड़ी सी सजग भारतीय बल्लेबाजी अपने लक्ष्य की तरफ मजबूती से कदम बढ़ाती हुई, लक्ष्य अब बहुत दूर रह नहीं गया है भारत के लिए। ये साझेदारी 12 रन की हो चुकी है, 15 रन चाहिए भारत को और इस मैच को जीतने के लिए, ग्रुप ए में लगातार तीसरी जीत हासिल करने के लिए। ये गेंद फ्लाइटेड, मेडलिस्ट स्टंप पर सीधी रहती हुई गेंद, पैड

0: अब स्ट्राइक पर दीप्ति शर्मा, 13 गेंदों में 11 रन बनाकर खेल रही हैं। नशारा संधु के इस ओवर की दूसरी गेंद, पहली गेंद पर एक रन, दूसरी गेंद का सामना करेंगी दीप्ति। बैकफुट पर जाकर इस गेंद को खेला है, लॉन्ग ऑन पर फील्डर पीछे मौजूद हैं, एक रन और मिलेगा। एक एक रन के जरिए भारत अब जीत की मंजिल तक सुरक्षित तरीके से पहुंचना चाहता है। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच इससे पहले 7 मुकाबले, जिसमें से 6 भारत ने जीते, सिर्फ एक में पाकिस्तान को जीत मिली, और ये 8वां मुकाबला भी भारत के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस गेंद को लॉब किया है, इस बार हवा में, मिडॉन के सिर के ऊपर से 4 रन के लिए कप्तान हरमनप्रीत कौर ने। जैसे ही देखा कि गेंद पर फ्लाइट है, कदमों को बाहर निकाला और थोड़ी देर के लिए जान हलक में जरूर आई होगी, क्योंकि मिडॉन पर एक फील्डर मौजूद थी, उनसे बहुत दूर नहीं थी ये गेंद, हाथों के आसपास, उंगलियों के आसपास से निकलती हुई ये गेंद, कप्तान खुद वहां पर मौजूद थी, हालांकि गेंद को लपक नहीं सकी और 4 रन आया। इसके साथ ही भारत के 50 रन पूरे, 51-3 विकेट के नुकसान पर। अब चाहिए भारत को 5 रन, 69 गेंदें बाकी, इस ओवर में अभी 3 गेंदें बाकी। क्रीज से बाहर निकलकर इस गेंद को लॉब किया लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए, और इसके साथ ही भारत ने यह मुकाबला 7 विकेट से जीत लिया है। हरमनप्रीत कौर ने इस छक्के के साथ 18 रन पूरे कर लिए और भारत ने महिला एशिया कप 2020 2026 में अपनी लगातार 3री जीत के साथ सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इस जानकारी के साथ कि भारत ने पाकिस्तान के साथ दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में अपना ग्रुप ए का 3रा मैच 7 विकेट से जीत लिया है। मैं धर्मेंद्र मणि राजेश अपने साथी अंग्रेजी कमेंटेटर डॉक्टर मिलिंद टिपनेस के साथ साथ स्कोरर भागवत सिंह रावत, स्टैटिस्टिशियन प्रदीप कुमार तुम्बड़ के साथ आप सभी को आज इस तमाम आंखों देखा हाल के लिए शुक्रिया कहना चाहूँगा, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि भारतीय टीम ग्रुप ए में टॉप पर रही, उसने अपने तीनों के तीनों लीग के मुकाबले जीते और 3 जीत के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाई है। ग्रुप ए में भारत पहले स्थान पर रहा है। अब आपको लिए चलते हैं अपने खास कार्यक्रम प्लेयर ऑफ द मैच के लिए।
1: प्लेयर ऑफ द मैच,
2: वेलकम टू प्लेयर ऑफ द मैच, एंड व्हाट अ मैच इट वाज। द इंडियन क्रिकेट टीम हैज बीटन पाकिस्तान बाय 7 विकेट्स इन दुबई एंड अ कॉम्प्रिहेंसिव विन एट द एशिया कप। सेंसेशनल परफॉर्मेंस बाय द इंडियन विमेन। और आज हमारे साथ हैं मेघा, हु इज होस्टिंग द शो विद मी, एंड वी हैव सम स्पेशल गेस्ट लता कुमारी, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर, एंड सबी हुसैन इज ऑल्सो हियर, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। एंड मेघा, वी डिडंट थिंक दैट इंडिया वुड हैव इट सो ईजी, मगर कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस भी नहीं, ये कहते हैं सेंसेशनल परफॉर्मेंस आज हुई है हमारे इंडियन विमेन की।
3: Absolutely, coasting to a 7-wicket win, all 3 games, India managing to leave an impact and being very dominant. Latika, सबसे पहले तो काफी कम रन्स थे, पाकिस्तान ने जज्बा दिखाया दूसरी इनिंग्स में, लेकिन वो कभी काफी नहीं होने वाला था।
4: कभी काफी नहीं होने वाला था वो तो हम जरूर जानते हैं, लेकिन मुझे बड़ा इम्प्रेस किया पाकिस्तानी कप्तान फातिमा ने, जिस तरीके की फाइटिंग स्पिरिट उन्होंने इस मैच में दिखाई और फ्रंट से लीड करते हुए टीम को, जिस तरह गेंदबाजी उन्होंने की 3 ओवर में 17 रन देके, और जो टोटल जो 3 विकेट पाकिस्तान ले पाया वो उन्हीं की गेंदबाजी में आई, तो एक प्लेयर के नाते वो मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगा कि किस जो उन्होंने अपनी टीम के लिए कोशिश की वो एकदम कह सकते हैं कि अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है। बाकी पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने इतने रन नहीं दिए कि वो लड़ाई कर सके, तो इसी की वजह से ये जो एक आसान सी जीत है वो भारतीय खेमे में जरूर नजर आई आज।
2: एंड सभी, लतिका ने बहुत ही वैलिड चीज कही है कि फातिमा की परफॉर्मेंस ऐसे मैच में जहां पे स्पिनर्स ने डोमिनेट करा है, स्पिनर्स का पल्ला भारी था, मगर फातिमा सना ने आके एक कैप्टन, 24 ईयर्स ओल्ड की है पाकिस्तान की एक कैप्टन,

0: और 3 विकेट, 17 रन, 3 ओवर, क्वाइट अ गुड परफॉर्मेंस देयर बाय द पाकिस्तान स्किपर।
1: बिल्कुल, फातिमा सना की जितनी तारीफ करें उतना कम है, क्योंकि डिस्पाइट कि इतना है ना लो टोटल को है ना, मतलब कि एक पाकिस्तान डिफेंड करने की कोशिश कर रही थी, उसमें भी उन्होंने भारत के जो 3 बैटर्स हैं जो उनको आउट किया, और मतलब कि उन्होंने मतलब कि जहाँ पे हम स्पिन डोमिनेशन की बात कर रहे थे वहाँ पे उन्होंने, जिसे कहते हैं ना, शी वॉज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और 3 विकेट उन्होंने चटकाए। कुछ जैसे अगर हम फातिमा की बात करें तो उन्होंने 3 विकेट लिए, लेकिन जो पाकिस्तान है आज अपना 200 T20 इंटरनेशनल खेल रहा था, तो पाकिस्तान चाह रहा था कि इस ओकेजन को और अच्छा करे, जीतते, लेकिन बैटिंग उनकी बिल्कुल ही नहीं चली जहाँ पे, और हमारे इंडिया के जो स्पिन कॉम्बिनेशन है उन्होंने 9 विकेट निकाल दिए और पूरी तरीके से डोमिनेट किया। तो जब आपके स्कोर ही इतना नहीं था कि जिसको आप डिफेंड कर सके, उसमें भी फातिमा सना ने 3 विकेट निकाल कर ये दिखाने की कोशिश करी कि अगर उनके बैटर्स और अच्छा परफॉर्म कर पाते, कहीं ये स्कोर 100-120 प्लस होता तो एक फाइटिंग टोटल होता, एक है ना फाइट हो सकती थी, लेकिन 55 रन्स जहाँ पे बनाया था, 56 रन्स का टारगेट था, उसमें भी उन्होंने 3 विकेट निकाले। तो और जिस तरीके से हम देख भी रहे थे कि वो उनकी जो लाइन एंड लेंथ थी, जो रिदम थी, वो कहीं भी नहीं भटकी, मतलब 3ों विकेट देखिए आपने, ऐसा नहीं है कि वो कि कोई बैट्समैन की उस तरीके से कोई गलती रहे, बॉलिंग इतनी अच्छी थी, वो बॉलिंग इतनी सटीक थी, बॉलें इतनी तीनों अच्छी थी कि उन्होंने वो, जैसे कहते हैं ना, शी अर्न दोज विकेट्स। तो फातिमा सना ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, बट ये चीज़ रही कि टोटल इतना छोटा था डिफेंड करने के लिए कि वो भी कुछ मतलब कर नहीं पाए उस।
2: लतिका बतौर ऑलराउंडर खेलती हैं फातिमा सना, 2024 में पहली बार विश्व कप में कप्तानी की, वो जो जज्बा है उनका वो टाइम एंड अगेन हमें देखने को मिलता है, और जिस तरह से एज ए लीडर इतनी कम उम्र में वो अपनी टीम को लीड करती हैं, 3 गेंदों पे जो उन्हें विकेट्स मिले, पहली 2 गेंदे तो ऑफ कोर्स इनटू द विकेट और उसके बाद फुलर, लेकिन जितनी सटीक लाइन और लेंथ,
3: बिल्कुल देखिए, और ये सीखने वाली चीजें हैं, जब इस तरह का प्लेयर आपको एक मैच में दिखता है चाहे वो किसी भी टीम से खेल रहा हो, तो यंगस्टर्स के लिए काफी मोटिवेशनल चीजें होती हैं यहाँ पर कि उनकी गेंदबाजी किस तरीके से रही, चाहे भले ही टीम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई बल्लेबाजी में, लेकिन गेंदबाजी में उनके हाथ में क्या था, उन्होंने उस चीज को फोकस करते हुए लाइन लेंथ को अपना एक हथियार बना लिया, और उस लाइन लेंथ के चलते स्मृति मंदाना जैसी आपने बड़ी मछली फंसाई, वहां पर शेफाली वर्मा को आपने चलता किया, प्रतिका रावल को आपने बिल्कुल मौका नहीं दिया। तो बॉलिंग में अगर धार चाहिए आपको, किसी भी तरीके से परेशान करने वाली गेंदबाजी चाहिए, तो वो इस प्लेयर से आपको सीखना चाहिए किस जज्बे के साथ उन्होंने गेंदबाजी यहाँ पर की है।
0: 7 विकेट विन फॉर इंडिया, एंड हमने मैच से पहले बात करी थी सभी अबाउट द इंडियन मिडिल ऑर्डर बीइंग टेस्टेड, आज वो टेस्ट था, मगर आपको क्या लगता है ये इंडियन मिडिल ऑर्डर ने वो टेस्ट पास करा है या फेल करा है, क्योंकि आज ओपनर्स आपके चीपली डिसमिस हो गए, मगर चांस था प्रतिका रावल के लिए इम्पैक्ट करने का जो वो नहीं कर पाई।
1: प्रतिका रावल को देखिए, उनके लिए एक डिसअपॉइंटमेंट तो रहा ही, क्योंकि स्कोर भी इतना बड़ा नहीं था, चाहती तो वो कुछ जिसे कहते हैं ना कि बिफोर दी नॉकआउट में

0: स्कोर भी इतना बड़ा नहीं था, चाहती तो वो कुछ जैसे कहते हैं ना कि बिफोर दी नॉकआउट मैचेस, जो सेमीफाइनल में इंडिया है और हो सकता है कि फाइनल में भी जगह बनाए, तो उस पॉइंट से अगर देखें तो प्रतिका रावल अगर आज कुछ रन्स स्कोर करती तो थोड़ा सा उनमें कॉन्फिडेंस आता आगे के गेम के लिए, थोड़ा सा उनको खुद को ही अच्छा लगता। लेकिन आज फिर से अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ही चीपली डिसमिस हो गई, क्योंकि उसमें फातिमा सना की बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त थी, वो बॉल ही इतनी अच्छी थी कि वो बिल्कुल चकमा खा गई। और जहाँ तक मिडिल ऑर्डर की बात रही तो पास और फेल होने वाली बात इसलिए नहीं आई क्योंकि स्कोर ही इतना कम था। अगर थोड़ा सा भी स्कोर ज़्यादा होता तो जैसा आपने ठीक कहा कि 3 विकेट भारत के, जो जिसमें हमेशा से टॉप ऑर्डर पे वो भारत अपना जो डोमिनेट करता है पोजीशन को और हमेशा से टॉप ऑर्डर चला, आज वो कहीं ना कहीं दिखा कि पाकिस्तान के फातिमा सना के आगे वो बिखर गया या वो कमाल नहीं कर पाया। और फिर मिडिल ऑर्डर पर बात आ गई, लेकिन टारगेट इतना नहीं बढ़ा था तो कहीं ना कहीं हरमनप्रीत और दीप्ति जिन्होंने भारत को फाइनली जीत दिलाई और हरमनप्रीत ने वो एक लाजवाब 6 मार के वो जो डोमिनेंट विन जो दर्ज करी, तो वो उतना स्कोर नहीं था क्योंकि उनके बॉलों का भी कुशन था, रन रेट का भी कोई प्रेशर नहीं था, विकेट्स भी उनके हाथ में थे, तो सब चीज़ें ही भारत के पक्ष में चल रही थी। तो मिडिल ऑर्डर का रियल टेस्ट शायद मैं कहता हूँ कि सेमीफाइनल में आएगा, जब उनका वो श्रीलंका या बांग्लादेश में से वो अपोनेंट पता चलेगा। यही हालात अगर ऐसे किसी आगे सेमीफाइनल या फाइनल के मैच में होते हैं और भारत कोई 150 के आसपास चेस कर रहा है, तब वो पता चलेगा कि मिडिल ऑर्डर क्या वाकई में ही इतना जिसे कहते हैं वो प्रेशर ले सकता है कि अगर आपका टॉप ऑर्डर फेल हो जाए तो मिडिल ऑर्डर आपको दे सेल पास दैट शिप। तो देखना पड़ेगा, लेकिन आज की जब तक हम बात करें तो आज तो इंडिया की पाकिस्तान के ऊपर 15th जो विन है वो सेलिब्रेट करने का वक्त है, तो सेलिब्रेट किया जाए।
1: जी, 28 रनों की साझेदारी हुई हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा के बीच में लतिका, और दोनों ही काफी अनुभवी खिलाड़ी। मे बी जो लगातार वॉबल हम देखते आए हैं पहले 2 मैचेस में, उसके बाद शायद किसी तरह का कॉन्फिडेंस तो इस साझेदारी ने इंस्पायर किया होगा भारतीय टीम में।
2: देखिए, जिस तरीके की शुरुआत हुई, शेफाली ने कोशिश जरूर करी, लेकिन फातिमा की गेंद में एक इतनी अच्छी गेंद पड़ी, वहाँ पर वो आउट हुई। उसके बाद जिस तरीके से प्रतिका रावल आउट हुई, फिर स्मृति मंदाना, तो बहुत जल्दी जल्दी ये विकेट गिरे। और उसके बाद जब हरमनप्रीत वहाँ पर आती हैं और काफ़ी समय से, अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी समय से उनके बल्ले से हमने वो रन्स, वो कॉन्फिडेंस वो अभी तक देखा नहीं है मैचेस में, और दीप्ति के बल्ले से हमने ज़रूर देखा है। लेकिन मैं यहाँ पर हरमन की ये भी दाद दूंगी कि आपने इस लो स्कोरिंग मैच में किस तरीके से आपने एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वहाँ बल्लेबाजी की, जो आपको गेंदें मिली आउट ऑफ द पार्क करने की, उन पर आप खेले तो किसी शेल में नहीं गए। अदरवाइज अगर हमने पिछले मैचेस में देखा होगा तो वो इतना उभर के बल्लेबाजी करती हुई नहीं दिखाई दी। और प्रतिका रावल के लिए मैं ये कहूँगी कि बहुत अच्छा चांस उनको यहाँ पर मिला है एशिया कप में अपनी दावेदारी साबित करने के लिए कि आप T20 प्लेयर हैं, क्योंकि उनकी जिस तरीके की स्किल है, जिस तरीके की टेक्निक है, बहुत ही बढ़िया वो बल्लेबाज हैं, लेकिन क्या वो T20 में एडजस्ट कर पा रही हैं, क्या नहीं कर पा रही हैं। उसके साथ साथ आप फील्डिंग पे भी नज़र रखें कि आप टीम को कितना कंट्रीब्यूट यहाँ पर कर रही हैं अपने परफॉर्मेंस से। तो मुझे लगता है कि मैनेजमेंट ज़रूर बहुत सारी चीज़ों को सोच रहा होगा, और मैंने हमेशा देखा है कि हरमन है या मैनेजमेंट है, वो अपने प्लेयर्स को बैक करते हैं। तो यहाँ पर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एक प्लेयर के लिए कि वो किस तरीके से आगे इस एशिया कप को देखती है।
3: मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट महत्वपूर्ण बात है कि इंडिया 3 out of 3, 3 matches, 3 जीत, टॉप ऑफ द ग्रुप, और ग्रुप स्टेज से तो सेमीफाइनल्स में पहुंच गए हैं। इंडिया का सेमीफाइनल मैच थर्सडे 10 September को होगा, मगर अभी हमें नहीं पता इंडिया किसके खिलाफ खेलेगा, क्योंकि दूसरे ग्रुप में श्रीलंका के 4 points है, बांग्लादेश के 2 एंड UAE के 2। सो लग रहा है सभी एक बड़ा दावेदार बन सकता है इंडिया के लिए, और सेमीफाइनल में कठिन परीक्षा मिल सकती है हमारी इंडियन टीम को।
0: नहीं, बिल्कुल, देखिए आप जब सेमीफाइनल तक आप पहुंच गए तो 2 ही मैचेस हैं जो आपको चैंपियनशिप से सेपरेट कर रहे हैं, सेमीफाइनल फाइनल, तो ना वो थोड़ा सा है चिंता की बात, लेकिन होपफुली इंडिया इज़ अ वेल ऑयल्ड यूनिट और सेमीफाइनल और फाइनल में अच्छा करें।
1: जी बिल्कुल, और वेल ऑयल्ड यूनिट हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि ओवरऑल जो प्रदर्शन रहा है, बीच में वॉबल्स रहे लेकिन भारत ने उसे संभाला है। इस बीच वक्त हो चला है प्लेयर ऑफ द मैच कौन है ये जानने का, और दोनों कप्तानों को भी सुनने का।
4: सी एंड मिस इब्तिसाम अहमद अलकाबी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जाफसा सेल्स डीपी वर्ल्ड, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द डिग्निटरीज। इट्स टाइम नाउ टू इनवाइट द कैप्टन।

0: took women's cricket to the next level from Moga, Punjab, played her 150th T20 as captain, hit the winning runs, a trademark Harmanpreet Kaur, full-bodied six. Talk us through this milestone match.
1: Well, I'm grateful. I never thought I'll come that far. But all the people behind me who's been supporting, I'm really grateful and hopefully keep getting the support because I think without support, I'm nothing. And I'm grateful. And the entire team, sports staff, they've been outstanding. So, many more to come. Hopefully, just keep continue the good work.
0: Thank you very much. Many more to come indeed.
1: Thank you.
0: That was Harmanpreet Kaur, the winning captain. That concludes the post-match presentation.
2: Harmanpreet Kaur, 150th T20 International as captain. And what a way to mark that milestone for the Indian captain. Latika, dekha jaye to Harmanpreet ne jaise bola ki important to keep the standards high, ki no letting up. Teen matches hain, magar aap expect nahi karenge ki Indian team ki इतना अच्छा प्रदर्शन दिया है, मगर रिलैक्स करेंगे, अभी भी मोटिवेटेड रहेगी पूरी टीम।
3: बिल्कुल, देखिए कोई भी कंपटीशन होता है, आप वहाँ पर जीतने के लिए ही जाते हैं और जिस मोमेंटम को अभी तक भारतीय टीम ने बनाए रखा है तो उस चीज़ को वो ज़रूर इन्जॉय भी करेंगे, उससे मोटिवेटेड भी होंगे। और जो तीन मैचेस खेले हैं उनमें क्या लर्निंग्स रही हैं, क्या इम्प्रूवमेंट्स हैं, वो छोटे छोटे कौन से एरियाज़ हैं जिन पे अभी भी भारतीय टीम को एक चैम्पियन बनने के लिए काम करना है। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ों पे मैनेजमेंट भी ध्यान दे रहा होगा, कोचेज ध्यान दे रहे होंगे और खुद कप्तान जो है काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलती आई हैं इतने टाइम से, 150 मैचेस वो एज अ कप्तान खेल चुकी हैं, तो काफ़ी एक्सपीरियंस है। और मुझे लगता है कि ये बातचीत जरूर होती होगी सपोर्ट स्टाफ और एक कप्तान के बीच में।
4: और वहीं श्री चरणी, जिन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड बैक किया, 50 T20I विकेट्स के इतने पास खड़ी हैं, लेकिन जिस तरह का नॉनशलांस था, जिस तरह की मैच्योरिटी थी कि इन माइलस्टोन्स को उतना सीरियसली नहीं लेती, जो महत्वपूर्ण है वो टीम को जीत दिलाना।
5: बिल्कुल, देखिए श्री चरणी के सामने अभी बहुत लंबा करियर है और जिस तरीके की शुरुआत हुई है उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में वो वाकई काबिले तारीफ है। बहुत ही शॉर्ट स्पैन में उन्होंने एक अपनी अच्छी जगह बना ली है इंडिया के T20 सेटअप में, और जैसे कहते हैं कि शी इज़ जस्ट अ विकेट शाय ऑफ 50th T20 इंटरनेशनल विकेट, और इस साल की तो वो लीडिंग हमारी विकेट टेकर भी चल रही है। आई थिंक इससे पहले 30 उनके विकेट्स थे, आज की तीन विकेट्स के बाद 33 हो गए हैं। तो और वो वर्ल्ड की नंबर वन भी बॉलर है उस T20 रैंकिंग्स में। तो श्री चरणी जिस तरीके की ह्यूमिलिटी की हम बात कर रहे हैं कि अभी भी जिस तरीके से वो देखती हैं कि माइलस्टोन्स जो हैं वो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हैं, वो सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पे इंडिया को जीत दिलाने के लिए, अपनी बॉलिंग से अपने कैप्टन का जिसे कॉन्फिडेंस जीतने के लिए और अपनी कंट्री के लिए ना जो कहते हैं ना कि 100% देना। तो जिस तरीके का अभी देखिए वो एक जिस तरीके की मैच्योरिटी वो दिखा रही हैं और इट स्पीक्स वॉल्यूम ऑफ हर कैरेक्टर की उनको माइलस्टोन से या इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेटली उनका गोल है अपना अच्छा बॉलिंग परफॉर्मेंस देती रहे, टीम को जब उनकी ज़रूरत पड़े तब अपना 100% दें और टीम को जीत दिलाएं, और यही एक एक अच्छे प्लेयर की निशानी होती है। और जैसा कि हम इस पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में सुन भी रहे थे, हरमनप्रीत ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि ये टीम रूथलेस है, और जब कैप्टन कह रही है कि ये टीम रूथलेस है तो रूथलेस होने का मतलब यह है कि आपके हर प्लेयर को परफॉर्म करना पड़ेगा टू दी ऑप्टिमम लेवल। तो वही चीज़ है, श्री चरणी अपने जो कैप्टन हैं उनके उस जो कॉन्फिडेंस उन पर दिखा रही हैं वो उसको पूरा 100% दे रही हैं। तो ये वाकई बहुत अच्छी बात है कि श्री चरणी माइलस्टोन्स की तरफ नहीं देख रही हैं, अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टीम के लिए उनका 100% देना और कंट्री को जीत दिलाना, ये उनका जिसे कहते हैं ना दिस इज़ हर टारगेट।
2: जी हाँ, टारगेट है, स्टैंडर्ड्स हाई हैं और इंडिया की जीत का जश्न आज पूरी कंट्री मना रहा है। और हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, प्लीज़ अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए और बताइए आपके पास कोई सवाल है हमारे एक्सपर्ट्स के लिए, लतिका या सभी के लिए, या आप कोई विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं। हाँ जी बोलिए।
3: गुड इवनिंग। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय टीम जिस तरीके से अभी तक खेल रही है और जो कॉम्बिनेशंस भारतीय टीम के पास हैं अभी, तो उसी के साथ

0: जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ मुझे दिख नहीं रहा कि श्रीलंका के अगेंस्ट आप बहुत बड़े चेंजेस करने जाएंगे. आप ऑलरेडी प्रतिका रावल को वो चांसेस दे चुके हैं, आगे भी उसको इस सीरीज में देखना चाहेंगे कि वो कैसा कर रही हैं. हाँ, मिडिल ऑर्डर जरूर हमारा कोलैप्स हुआ है, कई जगह पे कोलैप्स हुआ है, लेकिन हरमनप्रीत जिस तरीके से अपना भरोसा दिखा रही है अपनी टीम की तरफ, तो मुझे लगता है कि श्रीलंका के अगेंस्ट भी हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे वहां पर, अगर श्रीलंका हमारे सामने सेमीफाइनल्स में आती है तो मुझे लगता है हम एक कॉम्बिनेशंस में हैं. शुरुआत बल्लेबाजी में अच्छी हो रही है, गेंदबाजी हमारी डोमिनेट कर रही है, तो इतना खतरा मुझे नजर नहीं आता. बट क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, और उस दिन किस तरीके से क्या डिसीजन मैनेजमेंट लेगा या सपोर्ट स्टाफ लेगा, तो वो चीज उसी दिन देखते हैं. और कौन सी टीम भारतीय टीम के सामने आएगी ये भी अभी तय होना बाकी है.
1: थैंक यू सो मच आपकी कॉल के लिए. प्लीज़ आप कॉल कर सकते हैं हमें 011-234-21084 या 85 पर. और एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, प्लीज़ इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को और बताइए क्या कहना चाहते हैं आप इंडिया की ये शानदार जीत पर. हाँ जी बोलिए. बिल्कुल, बॉलिंग तो शानदार हुई है, तो सेमीफाइनल्स के लिए क्या और लग रहा है ये सेंटिमेंट सभी सबके लिए हर कॉलर का है कि प्रतिका रावल की जगह किसी और को चांस देना चाहिए. आपको लगता है क्या इंडियन टीम मैनेजमेंट ऐसा स्टेप ले सकती है?
2: मुझे नहीं लगता है कि प्रतिका रावल को रिप्लेस किया जाएगा. ऑल्दो ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है और ये उनको भी लग रहा होगा. आज भी जिस तरीके से जब वो आउट हुई बहुत ही निराश निराश लग रही थी. हमने देखा देखा भी कि किस तरीके से उनका हम फेस रीड कर पा रहे थे कि बहुत ही है ना, मतलब उनको उनको खुद को मतलब अपने वो शॉट बॉल बहुत अच्छी थी ये मैं कहना चाहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि आज वो दिन था कि थोड़ा मतलब टारगेट भले ही छोटा था लेकिन कुछ स्कोर कर पाती, थोड़ा सा वो कुछ अपना बैटिंग आज अच्छी दिखा पाती. लेकिन मुझे नहीं लगता कि विनिंग कॉम्बिनेशन को बिगाड़ेगी टीम मैनेजमेंट या अमूल मजूमदार या बाकी जो लोग हैं वो इस तरीके का कोई ड्रास्टिक स्टेप लेंगे जहां पे वो प्रतिका रावल को ड्रॉप करे. हालांकि ये ज़रूर है क्योंकि टीम मैनेजमेंट उनसे बात ज़रूर करेगी, जानना चाहेगी कि क्या चीज़ है जो कि मतलब कि ऐसा कुछ उनको अफेक्ट कर रही है. बट देखिए, ये इंटरनेशनल क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव चलता ही रहता है, बट ऐसी ज़्यादा कोई वरी की बात नहीं है क्योंकि हमारी जो इंडियन टीम है उसमें सारी मैच विनर्स हैं. एक एक मैच की बात है, एक अच्छी नॉक की बात है, हो सकता है वो अगले मैच में वो नॉक आ जाए, तो ऐसे इतना ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है. और प्रतिका रावल ने अपने आप को प्रूव भी किया है, शी हैज़ बीन अ फाइन प्लेयर, और उन्होंने है ना टाइम एंड अगेन दिखाया भी है अपनी परफॉर्मेंस से कि वो काफ़ी अच्छी प्लेयर रही हैं और मतलब काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करती है टॉप ऑफ द ऑर्डर. तो मैं यही कहना चाहूँगा श्रोताओं से कि अभी इस तरह की कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, और टीम मैनेजमेंट भी मुझे नहीं लगता ऐसे कोई ड्रास्टिक डिसीजन लेगा. लेकिन हालांकि टीम मैनेजमेंट बात ज़रूर करना चाहेगा, बट आई थिंक इंडिया शुड गो हेड विद दिस विनिंग कॉम्बिनेशन, चाहे वो श्रीलंका हो या कोई एनी अदर टीम हो. और श्रीलंका तो वैसे भी डिफेंडिंग चैंपियन है, 2024 में उन्होंने ये एशिया कप जीता था, इंडिया ने 2022 में जीता था. तो इंडिया तो खेल रही है रिटेन करने के लिए, वापिस से रिगेन करने के लिए ये एशिया कप ट्रॉफी. तो प्रतिका रावल के ऊपर जो सवाल है वो यही है कि अभी विनिंग कॉम्बिनेशन को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, लेट हर गिव हर्स अ टाइम टू सेटल डाउन.
0: अगर मुझे लगता है अगर कोई चेंज हुआ तो मैं कमलिनी को यहाँ देखना चाहूँगी, क्योंकि एक यंगस्टर हैं और अच्छी ताकत भी रखती हैं, WPL में भी उन्होंने दिखाया है और डोमेस्टिक लेवल पे भी काफ़ी अच्छा उन्होंने खेला है. तो अगर कोई चेंज होता है तो मुझे लगता है कि ये चेंज होगा तो भारतीय टीम के लिए अच्छा होगा. एक राइट हैंड कॉम्बिनेशन भी आपके पास आता है वन डाउन पर, और वो किस तरीके से गेम को चलाएंगी वो भी देखना होगा, क्योंकि ऑफकोर्स प्रतिका रावल ने हमें वर्ल्ड कप में अपनी जो प्रतिभा है वो हमें दिखाई है कि वो किस लेवल के प्लेयर हैं. हाँ ठीक है, T20 में उनको इतना एक्सपोजर अभी तक मिला नहीं है, इतना एक्सपीरियंस उनके पास है नहीं. चोटिल वो हो गई थी जिसकी वजह से उनका WPL भी मिस हो गया था, उसके बाद काफ़ी जो मैचेस हैं उनके मिस हो गए थे. लेकिन कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होती है किसी ना किसी प्लेयर की, और ये एक अच्छी जगह है प्रतिका रावल के लिए भी कि आप किस तरीके से इन मैचेस को देखते हैं. कोई भी प्लेयर जो ग्राउंड में उतरता है खेलने के लिए उतरता है, वो अपने आप को दिखाने के लिए ही जाता है, चाहे वो बल्लेबाज हो, चाहे गेंदबाज हो, चाहे वो फील्डर हो. तो मुझे लगता है कि यहाँ मैनेजमेंट प्रतिका को जरूर यहाँ बैक करेगी. अगर कोई चेंज होता है तो मैं कमलिनी को वहां पर

0: देखना चाहूंगी।
1: Pratika unfortunately dropped two catches as well, but the only change that we've seen from the World Cup to the Asia Cup is Indian team backing its players. Now, moving ahead, tomorrow, that is 6th of September, there is Sri Lanka versus Bangladesh clash, aur usme sabhi humne dekha hai ki Chamari Attappattu, as always, shandar form mein hai, lekin batoor all-rounder, jis tarah se unhone contribute kiya hai, 48 unbeaten UAE ke khilaaf, aur uske baad Indonesia ke virudh 7-4.
2: नहीं बिल्कुल जी, कि चमारी अट्टापट्टू जो है वो एक श्रीलंका की टॉप परफॉर्मर है और हमेशा हम देखते भी आ रहे हैं काफ़ी टाइम से कि उन्होंने किस तरीके से श्रीलंका को है ना कई अच्छी जीत दिलाई हैं। कभी भी है ना टफ सिचुएशन हो वहाँ से भी है ना टीम को दी, शी हैज़ बीन एबल टू रिगल इट आउट टीम को। तो काफ़ी कल का मैच देखिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। श्रीलंका एक तो डिफेंडिंग चैम्पियन है और वो चाहेगी कि है ना कि वो एक अपनी ये लय बरकरार रखे और वो अपने इस क्राउन को डिफेंड कर सके एशिया कप के। वहीं बांग्लादेश भी एक अच्छी टीम है और वो भी एक प्रूवन परफॉर्मर है। तो चमारी अट्टापट्टू जो है वो अगेन शी विल बी अ वाइटल कॉग श्रीलंका की स्कीम ऑफ थिंग्स में और वो चाहेंगी कि अपनी जो जैसा आप बता रहे थे कि इंडोनेशिया के अगेंस्ट 7 विकेट्स बाकी 48 रन, तो वो चाहेंगे कि वो लय बनी रहे। लेकिन कल का मैच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और उसी से तय होगा कि इंडिया का नेक्स्ट सेमीफाइनल अपोनेंट कौन हो सकता है।
3: जी हाँ, और उसके बाद जो मैच होने वाला है 7 सितंबर को पाकिस्तान और हांगकांग चाइना का, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि लतिका अभी जो पोजीशन है टेबल में पाकिस्तान सेकंड पोजीशन में है, -0.569 का रन रेट है। थाईलैंड जो सारे मैच अपने खेल चुके हैं -2.05 और हांगकांग चाइना -3.57। तो पाकिस्तान को कुछ ज़्यादा ही कुछ ड्रामेटिक करना पड़ेगा कि वो सेमीफाइनल्स तक नहीं प्रवेश कर पाएं। तो आपको क्या लगता है कि हांगकांग ऐसा कुछ कर सकता है पाकिस्तान के साथ 7 सितंबर?
0: देखिए, मैं फिर से बोलूँगी, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और हमने देखा है कि हमारी भारतीय टीम भी कितनी लड़खड़ा रही थी इन टीम्स के सामने, इनकी गेंदबाजी के सामने। वहाँ पाकिस्तान ने जिस तरह की बल्लेबाजी आज की है काफ़ी निराशाजनक ज़रूर रही, लेकिन कोशिश पाकिस्तान भी यहाँ से करेगा कि हांगकांग के सामने अपनी दावेदारी बहुत ही मजबूत तरीके से रखे और वहाँ से अगर उन्होंने जीत हासिल करते हैं तो सेमीफाइनल में वो ऑलरेडी हैं। लेकिन अगर हांगकांग कुछ उलटफेर करेगा तो पाकिस्तान को देखना होगा कि फिर वो कहां पर स्टैंड करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये मैच इतना भी परेशान नहीं करेगा पाकिस्तान टीम।
1: और उसके बाद बांग्लादेश और यूएई आमने सामने होंगी। समीकरण सभी ऐसा बना हुआ है कि बांग्लादेश ऑब्वियसली इज इन विद द चांस एंड सो इज यूएई। और बांग्लादेश ने अभी तक कुल एक मुकाबला ही खेला है, लेकिन उनके गेंदबाजों ने, खास करके नहीदा और मारूफा ने, शानदार प्रदर्शन किया इंडोनेशिया के विरुद्ध।
2: जहाँ तक बांग्लादेश की बात करें तो देखिए कल का मैच इसलिए भी इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि श्रीलंका और बांग्लादेश दोनों ही देखना चाहेंगे थोड़ा सा कि सेमीफाइनल्स की जो रेस है, जो जिसमें है ना भारत ने तो अपनी जगह पक्की कर ही ली है, पाकिस्तान भी हांगकांग के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन जहाँ तक देखा जाए कि श्रीलंका और बांग्लादेश का, तो कल का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है और बांग्लादेश की तरफ से भी हम देखें तो है ना जो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस चल रही हैं, तो ये एक है ना कि ये एक अच्छा मुकाबला होने वाला है और यूएई के साथ भी बहुत अच्छा ही मुकाबला होगा बांग्लादेश का। तो ये जिसे कहते हैं कि सेमीफाइनल की रेस इज क्वाइट हॉटिंग अप, तो देखते हैं कि इंडिया का नेक्स्ट अपोनेंट क्या होता है और ये जो चार सेमीफाइनलिस्ट वो कौन आते हैं।
3: जी हाँ, और इंडियन टीम को वेल डिजर्व ब्रेक मिलने वाली है क्योंकि उनका अगला मैच होगा 10 सितंबर को थर्सडे को, उनका पहला सेमीफाइनल, और इंतजार रहेगा कि कौन होगा उनके सामने, श्रीलंका, बांग्लादेश या यूएई। एंड मेगा, व्हाट अ थ्रिलिंग मैच, और हमने सोचा नहीं था कि इंडिया कितनी इजीली ये मैच जीतेगी और क्या कैसे डोमिनेट करेगी। और आई थिंक आज टीचर्स डे मनाया जा रहा है पूरे देश में, तो इट्स अ गुड टीचर्स डे गिफ्ट फ्रॉम द इंडियन क्रिकेट टीम।
1: एब्सोल्युटली, अमोल मजुमदार वुड बी थ्रिल्ड विद द सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस दैट द इंडियन टीम केम अप विद। और हम भी काफ़ी जल्दी जा रहे हैं क्योंकि ये मुकाबला इतनी जल्दी समाप्त हो गया, बट शानदार प्रदर्शन भारतीय टीम की तरफ से, और हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे अपने एक्सपर्ट्स का जिन्होंने इतनी बारीकी से मैच को ऑब्जर्व किया और हमें अपना विश्लेषण दिया। थैंक यू टू यू एज वेल अभिनव, एंड वीड ऑल्सो लाइक टू एक्सप्रेस आर ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स द प्रोडक्शन टीम वर्किंग टायरलेसली बिहाइंड द सीन्स, वंदना भारद्वाज, स्वाति कपूर एंड माधवी तिवारी। Our producer is Shahnawaz Khan. Our technical team comprises Vinod Kumar, Anirudh Gupta, Nagendra Kumar Patel and Thrill.

0: Alok Gupta. With that, we sign off, but we'd be back with the two semi-finals and the finals. Until then, goodbye and take care from the entire team.
1: Player of the match.
2: अभी आप विमेंस एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए T20 क्रिकेट मैच पर आधारित

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में आपने सुना डॉन फिल्म का ये गीत। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर 7.8% की तिमाही वृद्धि आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत अवरोध से नीतिगत गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है। नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
1: दुनिया भारत को फ्रेजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि SRCC ने वर्षों से विद्यार्थियों की कई पीढ़ियों को सीखने, आगे बढ़ने और समाज में बदलाव लाने का अवसर दिया है।
1: जब कोई इंसान 100 वर्ष जीता है तो उसे अनुभवों का सागर माना जाता है, और जब कोई संस्थान 100 वर्ष का होता है तो वो उपलब्धियों और प्रेरणाओं का महासागर हो जाता है। अपनी 100 वर्षों की इस यात्रा में SRCC ने पीढ़ियों को गढ़ा है, उन्हें उज्जवल भविष्य से जोड़ा है। जो आए उन्होंने पढ़ा और जो निकले वो घड़े हुए निकले।
0: इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आज तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। प्रधानमंत्री समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली मेट्रो से पहुंचे थे। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉप

0: आउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है। समारोह में 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों के 48 चयनित स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों तथा संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने स्वस्थ असहमति और विचार विमर्श की संस्कृति के महत्व पर जोर दिया। नई दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ब्रिक्स के सदस्य देशों और सहयोगी देशों के प्रतिनिधि मंडलों को संबोधित किया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कानून, न्याय और विधिक शिक्षा पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने की भी घोषणा की। ये व्याख्यान श्रृंखला कानून, न्याय और समाज से संबंधित महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों पर संवाद और विचारों के आदान प्रदान के लिए एक नियमित मंच प्रदान करेगी। महाराष्ट्र के मेलघाट और पेंच बाघ अभयारण्य बंदी प्रजनित गिद्धों का पुनर्वास के लिए भारत के सबसे सफल स्थलों के रूप में उभरे हैं, जहां जीवित रहने की उत्साहजनक दर दर्ज की गई है। भारत और नेपाल के बचाव दल का चिली में सुरंग में बचाव अभियान जारी है और सुरंग के भीतर से भारी मलबा, पानी तथा कीचड़ हटाया जा रहा है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने आज बताया कि बचाव अभियान को सुगम बनाने के लिए पास के सियाफ रुबेसी से सुरंग के प्रवेश द्वार तक एक पहुंच मार्ग का निर्माण भी चल रहा है। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 56 रन का लक्ष्य रखा था। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में 3 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। बाएं हाथ की स्पिनर श्री चरनी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 रन देकर 3 विकेट लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Amrit Bhushan. Prime Minister Narendra Modi today said India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism. Addressing the gathering at the centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce, SRCC, in New Delhi, Mr. Modi said the world is watching India become the fastest growing major economy. Contrasting past struggles with today's achievements, the Prime Minister emphasized that terrorism has been defeated, with armed forces confidently striking enemies in their own homes and peace restored from Jammu and Kashmir to the northeast.
2: Duniya Bharat to fragile five bata rahi thi. आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है।
1: Presenting hard economic data to counter persistent critics, the Prime Minister shared that smartphone exports now exceed 2.5 lakh crore rupees, while domestic defense production has hit an all-time high of nearly 2 lakh crore rupees. Prime Minister said Sri Ram College of Commerce, SRCC, has given generations of students the opportunity to learn, grow and make a difference over the years. Mr. Modi said the college has distinguished itself over the years, making a mark for academic excellence. He termed the alumni of SRCC as very special and the OGs. The Prime Minister stated that former Finance Minister Arun Jaitley was an alumnus of SRCC. He said SRCC alumni have left their mark in every sector. Prime Minister Modi highlighted the profound significance of this 100-year milestone for both the college and the nation's education sector and paid tribute to founder Shriram and bowed to his enduring